मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं से आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 14.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर

0: रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरु मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य दो पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए, जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। आप प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए नीलम साहनी के स्वर में ये देशगान।

0: श्रोताओं, इसी भजन के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना बस यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विचार बिंदु में आज का आलेख आत्मचयन। संकलन और वाचन धरती प्रिया प्रजापति का है।
1: जीवन की यात्रा में हम अक्सर दूसरों की खुशियों, अपेक्षाओं और जरूरतों को पूरा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि स्वयं को भूल बैठते हैं। हम यह सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, उन्हें क्या अच्छा लगेगा और उनकी इच्छाओं को कैसे पूरा किया जाए। धीरे धीरे ये आदत हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब मन थक जाता है और भीतर से एक आवाज़ उठती है, क्या मैंने कभी खुद को चुना है? वास्तव में जिंदगी में औरों को छोड़कर खुद को चुनना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसम्मान और आत्म प्रेम का प्रतीक है। खुद को चुनने का अर्थ यह नहीं कि हम अपने परिवार, मित्रों या समाज से दूर हो जाएं। इसका अर्थ है कि हम अपनी भावनाओं, जरूरतों, सपनों और मानसिक शांति को भी उतना ही महत्व दें जितना दूसरों को देते हैं। यदि एक दीपक स्वयं ही बुझ जाए तो वह किसी और को प्रकाश कैसे देगा? उसी प्रकार यदि हम भीतर से टूटे हुए, थके हुए और दुखी हैं तो दूसरों की सहायता भी पूरी निष्ठा से नहीं कर पाएंगे। आज के समय में बहुत से लोग दूसरों को खुश रखने की कोशिश में अपना सुख खो देते हैं। वे हर बात पर समझौता करते हैं, अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं और अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं। शुरुआत में यह त्याग अच्छा लगता है लेकिन समय के साथ मन में खालीपन और पछतावा पैदा होने लगता है। इसीलिए यह समझना आवश्यक है कि स्वयं की उपेक्षा करके किसी को स्थायी खुशी नहीं दी जा सकती। खुद को चुनना हमें आत्मविश्वास सिखाता है। जब हम अपने निर्णयों पर भरोसा करना सीखते हैं तब जीवन की कठिनाइयों का सामना भी अधिक मजबूती से कर पाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को महत्व देता है वह दूसरों से सम्मान की अपेक्षा करने के बजाय पहले स्वयं का सम्मान करना सीखता है। यही आत्मसम्मान जीवन में सफलता और संतुलन का आधार बनता है। इस विषय में हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि ना कहना भी जीवन की एक कला है। हर बार दूसरों की इच्छा के अनुसार चलना आवश्यक नहीं है। यदि कोई बात हमारे मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान या भविष्य के लिए सही नहीं है तो उसे विनम्रता से अस्वीकार करना बिल्कुल उचित है। अपनी सीमाएं तय करना और उनका सम्मान करना खुद को चुनने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। खुद को चुनने का एक और अर्थ है अपने सपनों को महत्व देना। अक्सर लोग अपने लक्ष्य केवल इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरे क्या कहेंगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी वही आगे बढ़ पाए। यदि हम अपने सपनों के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो जीवन भर दूसरों के सपनों को पूरा करते रह जाएंगे। इसलिए अपने जीवन की दिशा तय करने का अधिकार स्वयं को देना चाहिए। इसके साथ ही खुद को चुनना आत्मस्वीकृति भी सिखाता है। हम सभी में कुछ कमियां और कुछ खूबियां होती हैं। पूर्णता की तलाश में स्वयं को दोष देना बंद करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी कमियों के साथ स्वयं को स्वीकार कर लेता है वह जीवन में अधिक

0: एक शांत और संतुष्ट रहता है। आत्मस्वीकृति हमें यह समझाती है कि हमारा मूल्य दूसरों की राय से नहीं बल्कि हमारे अपने दृष्टिकोण से तय होता है। अंततः जिंदगी में औरों को छोड़कर खुद को चुनना किसी के प्रति उदासीन होना नहीं बल्कि अपने अस्तित्व का सम्मान करना है। जब हम स्वयं से प्रेम करना, स्वयं को समय देना और अपने सपनों को महत्व देना सीख जाते हैं, तब हमारा जीवन अधिक सार्थक और संतुलित बन जाता है। याद रखिए, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता आपका अपने आप से होता है। यदि यह रिश्ता मजबूत है तो जीवन की हर चुनौती आसान लगने लगती है। इसलिए दूसरों की परवाह अवश्य करें लेकिन स्वयं को कभी ना भूलें, क्योंकि जब आप खुद को चुनना सीख जाते हैं तभी आप सच्चे मायने में जीना सीखते हैं। यही आत्मप्रेम, आत्मसम्मान और सुखी जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है।
1: कार्यक्रम विचार बिंदु, अभी आप सुन रहे थे मीडियम वेव और एफएम बैंड पर, ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। अब सुनिए श्री रामचरितमानस का गायन पाठ समूह स्वर में। संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन पाठ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम खेती की बात। सामयिक सुझाव का विषय है कीटनाशी दवा और सावधानी।
1: किसान भाइयों, हम फसलों में कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। यदि हम अच्छे से उपयोग करें तो यह हमारे लिए लाभदायक है। अगर कीटनाशक का असावधानी पूर्वक उपयोग किया गया तो वह बहुत ही खतरनाक होता है। कीटनाशक का उपयोग सावधानी पूर्वक किया जाए तो उपज में बढ़ोतरी होती है। सावधानी पूर्वक उपयोग के संबंधित कुछ बातें हैं, जैसे उचित चुनाव, भंडारण, मिलाने का तरीका, उपयोग आदि। किसान भाइयों, सावधानियों में सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है सही कीटनाशक का चुनाव। जब तक कीट आर्थिक क्षति स्तर तक न पहुंच जाए और कीट की पहचान न हो जाए, तब तक उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। उसी कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए जो विशेषज्ञ द्वारा बताया गया हो। कीटनाशक लेते समय हमको मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिए, जो कि जमता ना हो, मित्र कीटों को नुकसान न पहुंचाता हो, प्रतिरोधक पैदा न करता हो और गुणवत्ताशील पैक हो और महंगा भी न हो। किसान भाइयों, कीटनाशक के उचित रखरखाव में सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि कीटनाशक भी सुरक्षित होना चाहिए। और इससे संबंधित यदि हम बात करें भंडारण की, तो इसको रसोई घर में नहीं रखना चाहिए, बच्चों एवं आग से दूर रखना चाहिए, सुरक्षित छायादार और हवादार स्थान पर रखना चाहिए, जितना ज़रूरत हो उतना ही दुकान से लाना चाहिए और उसका जल्द उपयोग करना चाहिए। खाने की वस्तु के साथ नहीं रखना चाहिए। परिवार के सभी लोगों को उसकी जानकारी दे देनी चाहिए। समय समय पर उसका निरीक्षण करना चाहिए। पहले लाई गई दवाओं का उपयोग पहले करना चाहिए। सुनिश्चित कर लें कि बचा हुआ दवा उसी डब्बे में हो और अच्छी तरह से बंद हो। किसान भाइयों, सही दवाओं को खरीदने और उनके मिलाने की विधि में भी हमको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। दवाओं में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। कीटनाशक की निर्मित तिथि और अंतिम तिथि को ध्यान से देखना चाहिए। उपयोग से पहले स्वच्छ, उपयुक्त, सुरक्षा युक्त कपड़े पहनना चाहिए। तीव्र विषाक्त दवाओं को अकेले न डालें, बच्चों को उपयोग न करने दें। उपयोग के बाद दवाओं को खुला ना छोड़ें। दवाओं को बाहर खुले और हवादार स्थान में मिलाएं, नाप तौल कर ही दवा मिलाएं और बनाएं। काम करने वाले स्थान के पास खाने वाली चीज़ों को न रखें, न छुएं। दवाओं के उपयोग करते समय खाना पीना, धूम्रपान, चेहरे या आँखों को मलना सख्त मना है। स्प्रेयर में कभी भी मुंह से दवाओं को ना खींचें। जब भी आप दवाओं का छिड़काव कर रहे हों तो हवाएं पीछे से आगे की ओर आनी चाहिए। स्प्रेयर को अच्छी तरह से देख लें कि कहीं से रिसाव तो नहीं हो रहा है। अगर गलती से दवा शरीर पर लग गई है तो तुरंत पानी से धो लेना चाहिए। उपयोग के बाद यंत्रों

0: को सफाई से धोना चाहिए, बचे हुए दवाओं को सावधानी पूर्वक सुरक्षित स्थान पर डालना चाहिए। इन सब से बचने के लिए जितना उपयोग करना हो उतनी ही दवा लेनी चाहिए, जो एक दिन में खत्म हो जाए और बर्बादी से बच जाए। किसान भाइयों, उपयोग के बाद स्प्रेयर को उल्टा करके रख देना चाहिए जिससे दवा बाहर निकल जाए। उसके बाद 1/3 भाग पानी में पानी भरकर ढक्कन लगाकर हिलाना चाहिए। किसान भाई, कभी कभी हमारे साथ घटना भी हो जाती है। अगर मरीज इसको सूंघने या लेने से बेहोश हो रहा है तो उसको जल्द से जल्द 1-2 लीटर नमक का घोल देकर उसको उल्टी करवाना चाहिए। जल्द से जल्द त्वचा को साबुन पानी से धोना चाहिए। बालों एवं उंगलियों के बीच धोते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आंखों में चला गया हो तो तुरंत साफ पानी से धोना चाहिए। सबसे पहले मरीज को खुले हवादार स्थान में लाना चाहिए। अगर शरीर जैसे गले, सर, सीना या पेट सख्त कपड़ा पहना हो तो उसे तुरंत ढीला करना चाहिए। चलने के लिए मना करना चाहिए। अगर सांस लेने में कठिनाई हो तो कृत्रिम सांस देना चाहिए। मरीज के कपड़े अलग करके नहलाना चाहिए। मरीज को शांत एवं आराम एवं गर्म करके रखना चाहिए। उपचार करने से पहले चिकित्सक को उपयोग करने वाली कीटनाशक दवाओं की पूरी जानकारी देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, इस तरह से हम दवाओं का सावधानी पूर्वक उपयोग करेंगे तो हमारे साथ कोई घटना नहीं होगी और वो हमारे लिए सुरक्षित होगा और लाभदायक होगा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। प्रातः के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। सुबह 7:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम। जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा आप सुनेंगे आज सुबह 7:30 पर। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे मोर भुइयां छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। सुबह 9 बजे आप सुनेंगे बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर आप सुन सकेंगे सुबह 10 बजे, जिसे हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। दिन के 11:05 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं, आज दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे शीर्षक गीतों पर आधारित कार्यक्रम चयन। दोपहर 1:10 पर आप सुन सकेंगे शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन, जिसके अंतर्गत बातचीत होगी मोबाइल नहीं किताबों से दोस्ती विषय पर, साथ ही होगा आईनाक्रम और घर आंगन मेल। आज दोपहर 1:40 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। दोपहर 2:30 पर आप सुन सकेंगे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत कंधा। श्रोताओं, हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:20 पर आप सुन सकेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम गोधुली। शाम 7:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल आप सुन सकेंगे आज शाम 7:20 पर। साथ ही कार्यक्रम किसानवाणी आप सुन सकेंगे आज शाम 7:30 पर, जिसके अंतर्गत आज होगा हेलो किसानवाणी कार्यक्रम। श्रोताओं, आज रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे सोशल मीडिया की गूंज कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मनी टॉक और मंथन, जैसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का

कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुन सकेंगे आज रात्रि 10 बजे। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

0: श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 हुए हैं। अब सुनिए संस्कृत में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारत स्लोवाकिया देशयोः सम्बन्धः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्यानन्तरं श्रम, प्रवास, डिजिटल, तंत्रज्ञान, रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र 11 सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बन्धानां उन्नतिः सह विश्वासानां प्राथमिकतानां भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः यूरोपीय राष्ट्रस्य प्रथमायां यात्रायां श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ।
2: AI का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रेनी इत्यनेन स्लोवाकिया देशस्य सर्वोच्चं प्रशासकीय सम्मानं द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास इति प्रधानमन्त्रिणं श्रीमोदिनं प्रदत्तम्। श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपत्ये सर्वकाराय नागरिकेभ्यश्च विशिष्ट सम्मानाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः यात्रायाः तृतीये चरणे G7 शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं सम्प्राप्ष्यति। तस्य आगमनावधौ फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन औपचारिक रूपेण तस्य स्वागतं क्रियते। 50वें G7 शिखर सम्मेलनं ह्यः एवियन नगरे समारब्धम्, यत्र विश्वस्य प्रमुखानां अर्थव्यवस्थानां नेतारः प्रमुखेषु वैश्विक समाह्वानेषु विचार विनिमयं कुर्वन्ति। राष्ट्रपतिः मैक्रों वर्यः प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय समाह्वानान् निवारणाय संयुक्तरूपेण कार्याचरणस्य विषये कार्यरात्रिभोजस्य आयोजनम् अकरोत्। ततः पूर्वं सः अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प, यूके देशस्य प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्यादिभिः नेतृभिः सह G7 देशानां नेतॄणाम् औपचारिकरूपेण स्वागतं विहितवान्। यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला फोन डेर लेयेन, यूरोपीय परिषदः अध्यक्षः एंटोनियो कोस्टा च शिखर सम्मेलने भागं भजन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः ह्यः फ्रांस देशे मोनाको देशस्य राज्यमन्त्रिणा क्रिस्टोफ मिरमेंड, विदेश कार्य सहकार मन्त्रिणा इजाबेल बेरो आमादेई, वित्त अर्थव्यवस्था मन्त्रिणा फेडरिक कोटालोर्डा इत्येतैः सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीगोयलः अवदत् यत् द्वैपाक्षिकव्यापारं सुदृढं कर्तुं नूतनान् निवेशावसरान् अन्वेष्टुं भारत मोनाको देशयोः मध्ये उपवेशनम् आर्थिकसहकार

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए ये भुईहारी गीत फूलचंद राजवाड़े और साथियों के स्वरों में।

0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। अभी आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम में आप सुनिए ये सरगुजिया देवी भजन रामनंदन और साथियों के स्वरों में।

श्रोताओं, इस बाहर गीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल बस यहीं तक। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:15 हुए हैं। अब पेश है सुगम संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए मुमताज राशिद की लिखी ये गजल पंकज उदास की आवाज में।

0: आता है। लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम में अब पेश है इब्ने इंशा की लिखी ये गजल जगजीत सिंह की आवाज में।

श्रोताओं, इसी गजल के साथ सुगम संगीत कार्यक्रम बस यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं।

0: आप पेश है जनसंपर्क कार्यालय से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: संपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।

स्वागत है साथियों आप सभी का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा में। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका साथी अक्षय। स्वीकार कीजिए प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। श्रोताओं, जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। यह कार्यक्रम FM रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोट। सुनते रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोट, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। श्रोताओं, अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान के तहत 18 से 20 जून तक लगेंगे वृहद पंजीयन शिविर। केंद्र एवं राज्य शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने राजस्व अनुविभाग स्तर पर होगा विशेष आयोजन। नए पंजीयन, त्रुटि सुधार और समस्याओं के त्वरित निराकरण की मिलेगी सुविधा। जिला MCB माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में 18 जून से 20 जून 2026 तक 3 दिवसीय वृहद पंजीयन शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का उद्देश्य केंद्र एवं राज्य शासन की जन कल्याणकारी तथा हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना तथा पात्र हितग्राहियों का अधिकतम पंजीयन सुनिश्चित करना है। जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक राजस्व अनुविभाग स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जहां नागरिकों को विभिन्न योजनाओं के लिए नए पंजीयन अभिलेखों में त्रुटि सुधार तथा योजनाओं से संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शिविरों के सफल संचालन के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले सुनिए फिल्म घर का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत है RT परमन का।

श्रोताओं, अब बढ़ते हैं आज के अगले समाचार की ओर। जिला एमसीबी भगत सिंह चौक में 15 से 17 जून तक जनसंपर्क विभाग द्वारा होगा विशेष आयोजन। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में जनसंपर्क विभाग द्वारा 15 जून से 17 जून 2026 तक भगत सिंह चौक में 3 दिवसीय विशेष विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी के माध्यम से केंद्र एवं राज्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं, ऐतिहासिक उपलब्धियों तथा आम जन के जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तनों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। प्रदर्शनी का उद्देश्य शासन की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना तथा नागरिकों को विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक करना है। प्रदर्शनी में विगत 12 वर्षों के दौरान आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण, रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण विकास तथा डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय कार्यों को आकर्षक छायाचित्रों, प्रदर्शन पैनलों एवं जानकारी परक सामग्री के माध्यम से

प्रदर्शित किया जाएगा। श्रोताओं, अब बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। जिला एमसीबी, मत्स्य प्रजनन काल को देखते हुए 16 जून से 15 अगस्त तक रहेगा मत्स्याखेट प्रतिबंधित। मछलियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए घोषित किया गया बंद। उल्लंघन पर 25,000 रुपए तक जुर्माने का किया गया प्रावधान। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्षा ऋतु के दौरान मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन एवं वंश वृद्धि को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नदी मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3 की उपधारा 2 के अंतर्गत 16 जून 2026 से 15 अगस्त 2026 तक की अवधि को बंद ऋतु क्लोज सीजन घोषित किया जाता है। इस अवधि के दौरान प्रदेश के सभी नदी नाले जलाशयों तथा अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों में मत्स्याखेट का कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंध का उद्देश्य मछलियों के प्रजनन काल में उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना तथा मत्स्य संपदा का संरक्षण सुनिश्चित करना है, जिससे भविष्य में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हो सके। श्रोताओं, समाचारों में आगे बढ़ने से पहले सुनिए फिल्म दो रास्ते का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
1: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
0: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
1: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
0: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 07774230600। नंबर एक बार फिर 07774230600।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। श्रोताओं बढ़ते हैं आज के अगले समाचार की ओर। जिला सरगुजा कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समय सीमा की बैठक, संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों में प्रगति की हुई विस्तृत समीक्षा। सरगुजा कलेक्टर ने सोमवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक लेकर जिले में संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों में प्रगति की विस्तार पूर्वक समीक्षा की। बैठक में पूर्व में दिए गए निर्देशों पर प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सुशासन तिहार के प्राप्त आवेदनों को समय पर गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के दिए निर्देश। कलेक्टर ने सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मांग संबंधी आवेदनों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि मांग संबंधी सभी आवेदन जल्द से जल्द पूर्ण किए जाएं ताकि आमजन को समय पर लाभ मिल सके। बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित एवं निराकृत आवेदनों की विभागवार समीक्षा की गई। अधिकारियों से आवेदन निराकरण की स्थिति, प्रगति तथा शेष मामलों की जानकारी ली गई। समीक्षा के दौरान यह भी निर्देश दिए गए कि आवेदनों के निराकरण में किसी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब ना हो। अन्य प्राप्त शिकायतों को भी गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने कहा गया। सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा, समय सीमा में निराकरण के निर्देश। बैठक में सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों एवं लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के निराकरण में प्रगति विभाग की कार्यशैली दर्शाती है, इसलिए निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से निराकरण किया जाए। आमजन की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन शासन और जनता के बीच संवाद का

महत्वपूर्ण माध्यम है, इसलिए प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से परीक्षण कर संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही शिकायतकर्ताओं से संपर्क कर उनकी समस्या के निराकरण की पुष्टि करने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि यथासंभव L1 स्तर पर ही शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले सुनिए मुकेश की आवाज में फिल्म हिमालय की गोद में का ये गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, बढ़ते हैं आज के अगले समाचार की ओर। राष्ट्रीय राजमार्ग 130 के चौड़ीकरण हेतु प्रभावित क्षेत्रों में भूमि क्रय विक्रय एवं हस्तांतरण पर प्रतिबंध। अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 कटघोरा शिवनगर अंबिकापुर के उन्नयन एवं फोर लेन निर्माण के कार्य सुचारू एवं समय

जनपद क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में भूमि क्रय विक्रय हस्तांतरण खाता विभाजन एवं भूमि के व्यपवर्तन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के परियोजना निदेशक परियोजना कार्यान्वयन इकाई बिलासपुर द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार जिला सरगुजा अंतर्गत प्रस्तावित बाईपास रीअलाइनमेंट एवं मुख्य मार्ग चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रस्तावित है। भूमि अर्जन की कार्यवाही के दौरान निरंतर क्रय विक्रय नामांतरण एवं विभाजन से मुआवजा निर्धारण स्वामित्व सत्यापन तथा हिस्सेदारी निर्धारण में जटिलताएं उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम के अंत में अब सुनिए फिल्म आपकी पसंद क्षमा कीजिए फिल्म आपकी कसम का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। संगीतकार हैं RT बर्मन।

0: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
1: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
2: नमस्कार सरगुजा।
3: नमस्कार सरगुजा
2: कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 8 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
5: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
8: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों फ्रांस।
7: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR

0: उस हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर दिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जल मार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम या इसका प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक जहाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडो को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की

0: उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा। वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मॉनसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेकने सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के व्यों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के

0: राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी के साथ हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी।

0: कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला श्याम वर्मा के नमस्कार। संगवारी हो, मोर भुइया के ये अंक में बेरा बेरा में हमन अपन अंचल के वरिष्ठ साहित्यकार मन से आपके मुलाकात करवाथन। हमर संस्कृति हमर साहित्यकार ये क्रम में आज हमर पहुना है वरिष्ठ लोक साहित्यकार श्री सुरजीत नवदीप। आप मन ले गोठ बात करत हैं समीर शुक्ल।
1: लोक परंपरा, संस्कृति और साहित्य ये आपस में एक दूसरा से ऐसे मिलते हैं कि जिला अलग अलग देखे के मन नहीं हुआ है। या ये कहे जाए कि माटी में बगरे एक एक कण आपस में मिलके जिन चीज़ ला बनाते हैं वो हमार परंपरा होते, और परंपरा जब जुन्ना बखत ले चलत आते तो संस्कृति बन के और हमार आघू में आते, और संस्कृति ला जब कलम के ताकत मिलते और वो कागज में उतरते तो वो साहित्य के निर्माण होते। हमर छत्तीसगढ़ के भुइयां में बहुत तक ऐसे साहित्यकार बेटा मन होइन जिन मन यहाँ के भुइयां के प्रताप लगाइन लिखिन और जम्मो संगवारी मन तक अपन अपन हिसाब ले पहुँचाए के उद्यम ल करिन। हमर संस्कृति हमर साहित्यकार मोर भुइयां के एक ऐसे मंच जहाँ ऐसने छत्तीसगढ़ी साहित्यकार मन ला, या ये कह जाए कि छत्तीसगढ़ महतारी के साहित्यकार सपूत मनला हम यहाँ पहुनई करे बर बलाथन आमंत्रित करथन। और बड़ भाग है हमर कि आज ये मंच में हमर पहुना बन के आए हैं अंचल के वरिष्ठ लोक साहित्यकार श्री सुरजीत नवदीप जीवन। आप मन नवदीप जिला एक कवि के रूप में जानता हो, एक साहित्यकार के रूप में जानता हो, तो आज हम उनखर मल्ले गोट बात करबो। सुरजीत जी, आप मन के गाढ़ा गाढ़ा स्वागत है कार्यक्रम।
2: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सुरजीत जी, वैसे तो आप मन ला हमर संगवारी मन कवि के रूप में जानते हैं, आप मन के कविता सुनत आए हैं। सबले पहले हम आप मन ले जानना चाहबो कि आखिर ये लोक साहित्य का होते।
2: मैं पहले तो आप लोग बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये कार्यक्रम में मुला आमंत्रित करे हो आप, जेकर विचार और भाव हमार पूरा छत्तीसगढ़ वाला बन सुनी और जानी। आज हम याद करते हैं पिछला समय जब हमारे बड़े बड़े साहित्यकार मन रही ने, खास करके वो मन साहित्यकार मन याद करना चाहता हूँ, श्री द्वारका प्रसाद विप्र, कबीरनाथ जी कश्यप, सुंदरनाथ जी शर्मा। आज़ादी के आंदोलन के पहले जब ये कविता लिखिन देश की आज़ादी पर, तब ओकर और फिर सन 70 के आसपास सातवां दशक में आता कैसे परिवर्तन आ गए। लोक भाषा में रचना करे में जो आनंद एक रचनाकार ला मिलते वो दूसरा में आनंद नहीं मिल सके। काबर कि माँ के कोख से जन्म ले के बाद जब हम अपन महतारी के मुँह से हम ओकर बोली ला ओकर भाषा ला सुनथन तो ऐसे लगते जैसे अमृत बरसत। और वो भाषा ला सुन के धीरे धीरे करत करत वो अगर मुख ला देख देख के छोट कुल नहीं कहा अनुभव करते कि कुछ कुछ गोठियाते दाई या गोठियाते, और वो सुनत सुनत धीरे धीरे बड़े हो जाते।
1: संगवारी हो, सुरजीत नवदीप जी मन सियान हुआ थे, जुन्ना बखत ले छत्तीसगढ़ी लेखन मा यहाँ के सेवा करा थे, लेकिन नान्हे लैका के बात सुरजीत जी आप मन कर दो तो ये मन मा जाने की इच्छा हुआ थे कि आप मन के जन्म कहाँ हुए रहिस और आगु के जीवन
2: ये, कैसे ये बात बढ़िया पूछे आप मन। मोर जन्म पंजाब के पंजाब पाकिस्तान में हवे, अभी वहाँ एक जगह हवे मंडी भावलदीन, लाहौर से छठवा स्टेशन पर थे, वहाँ मोर जन्म हुईस। और जब ये देश के बंटवारा हुईस तब मोर उम्र 8-9 साल के रही, तब हम जब वहाँ से चले रवाना हुए

0: अच्छी तरह याद है कि हमारे 6 महीना हो रही से नवा घर बना रहे हैं, हमला वो घर छोड़ के भाग के आना पड़ी।
1: सुरजीत जी, हिंदुस्तान बहुत विशाल देश रहीस, ओखर हृदय स्थल में स्थित हमर छत्तीसगढ़। पंजाब ले चल के वो नान्हे लड़का 1948 के विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ कैसे पहुंचिस?
0: हम जब ये बंटवारा हो हम वहां से रवाना हो गए, अमृतसर होत, लुधियाना, पटियाला, जालंधर, मेरठ होत हो हमन जबलपुर आ गए। जबलपुर से घूमत घामत हमन इंदौर चले गए, इंदौर से फिर चले आए हमन रायपुर। अचानक काबर की हमार पिताजी बताइस कि हमार जो बाबा है वो है कंडेल में रहते। हमार बड़े पिताजी और मोर पिताजी ये तय करी कि हम नीचे चलबो और हमन सवेरे 4 बजे करीब करीब हम सरसोपुरी रेलवे स्टेशन में उतरे और वहाँ पता लगाए तो बताइए 6-7 किलोमीटर दूर यहाँ से कंडेल हावी बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव के गाँव जो आजादी के लड़ाई लड़ीस वो गाँव। तब हमला लोग बताई मोर पिताजी है एक तरफ मोर छोटे भाई ने बैठाइस और एक तरफ थोड़ बहुत जो सामान है से टेलर रख के हम मन ओकर पीछू पीछू कंडेल पहुंच गए। वहाँ एक साहू परिवार हम मल्ला सहारा दीस। एक बात जरूर मोला आज याद आते कि साहू परिवार है तन मन और धन से हमार परिवार के सेवा करी, अलग से किराया में घर ले दिन जहाँ हमार पिताजी बड़े पिताजी व्यापार करना शुरू करी। एक बात के जरूर प्रश्न हो सकते कि मैं यहाँ वहाँ आत हो गया हूँ, हमारे परिवार घरों आ गए, हम मन बिल्कुल छत्तीसगढ़ी नहीं जानत रहे। सवाल रही छत्तीसगढ़ी नहीं जानबो हमारे काम धंधा व्यापार कैसे चली। तब धीरे धीरे करके वो साहू परिवार के बच्चा मन से बड़े मन से हमारे माता पिता मन बातचीत करे धीरे धीरे तो हमारे बाबा मल्ला बताइस ये मल्ला तुम्हें छत्तीसगढ़ी बोले पर धीरे धीरे सिखाओ। हमारे माँ छत्तीसगढ़ी बोले बोल पूरा नहीं बोल सके अधूरा बोले और मैं बाजू में बैठ के सुनो पिताजी ला भी ऊ लाई। तब वो मैं जब भी रहा तब महू अपन धीरे धीरे कोई सामान भी खरीदे पर आए तो महू छत्तीसगढ़ी बोलो उगा मुझे सुनो और वही मेरे एक ठन गाँव हवे झरिया। मोर माँ बाप मन और साहू जी मन तय करें कि यह बच्चा ला स्कूल भेज दे जाए हम झरिया चल दे पढ़े बर जान 1.5-2 किलोमीटर दूर गाँव में। और वहाँ जब रास्ता में मैं जाऊँ और जब स्कूल पहुँच जाऊँ तब बच्चा मन सब मन छत्तीसगढ़ी में गोठिया तो मऊ कर मन साथ धीरे धीरे छत्तीसगढ़ी गोठियाना सीख गया।
1: सुरजीत जी, विभाजन के त्रासदी झेले वो नान्हे लड़का घूमत फिरत यहाँ ले होत वहाँ जात धीरे से पहुंचिस छत्तीसगढ़ के कंडेल में। कंडेल में पढ़े ला स्कूल पहुंचिस ये पूरा ओखर अनुभव वो नान्हे लड़का के मन में समवत जात है और जब वो लड़का बड़े होइस तो ये सब अनुभव मन ओला कौन से और रद्दा दिखाई।
0: जब वो गांव में चल दियो तो मोर माता पिता मन पंजाब में जब रही ने उमन पाठ करे सबरे साहब गुरुद्वारा में जाए गुरु ग्रंथ साहब के पाठ करे मैं भी सुनो कर मैं सच जाऊँ। जब उमन यहाँ छत्तीसगढ़ आ गए और कंडेल आ गए तो मोला एक ऐसे मौका और सुअवसर मिले कि हम श्रीवास्तव जी कंडेल के रविया जो देश के आजादी के लड़ाई में भाग ली और हमारे बड़े नेता हो गए और ऐसे बड़े नेता हो कि ओकर प्रयास के बाद धमतरी में गांव में 2 बार हमार महात्मा गांधी जी आई ओकर पूछिन कि आखिर ये आंदोलन चलिस कैसे कैसे करते हो आप कैसे आदमी मन जुड़ते तो सब कारण लो बताए जोड़े के तरीका ला बताई और आजादी के लड़ाई ला आखिरी तक लड़क रही से ऐसे रही से हमार श्रीवास्तव जी।
1: हमार देश आजाद हो गए ओखर बाद सुरजीत जी और आप मन नान्हे लड़का पढ़त पढ़त पढ़त अब और आगू बढ़िस जब तो ये पूरा उखर अनुभव जन नान्हेपन ले अब तक के रहीस है अब ओला कहीं ना कहीं तो उतारना रहीस
0: जी
1: और सबले अच्छे माध्यम रहीस साहित्य
0: जी
1: तो ओमे आप मन के पदार्पण होइस। लेकिन विशेष तौर पे मैं आप मन ले जानना चाहत हूँ कि छत्तीसगढ़ी लेखन कैसे प्रेरित होया आप मन।
0: मैं जब कंडेल से मोर घर वाला मन धमतरी भेज दी काबर की वहाँ हाई स्कूल नहीं रही झरिया में 4th तक रही से और धमतरी में हाई स्कूल रही से तो बोला पढ़े पर धमतरी भेजी और धमतरी जब भेजी तो मैं यहाँ पढ़ना शुरू कर छत्तीसगढ़ी मैं थोड़ थोड़ सीख गए हो बोलो स्कूल भी जाओ स्कूल में बोलो बातचीत करो और प्राय लगभग लगभग सब विद्यार्थी मन छत्तीसगढ़ी बोले पढ़ने वाला जतका रहते मन वे एक आनंद के बात रही से कि हमारे साथ जतका पढ़िया मन रही ने वो मन बोले मोर साथ मजाक करे काबर कि मैं जब बोलो छत्तीसगढ़ी तो पंजाबी के लहजा ओमे आ जाए तो मन कहा वो पंजाबी टूरल छेड़ो बोला सुनो

0: मोर कर कई जन भीड़ लगा के आ जाए और बोला चिढ़ाए कैसे का करत हन। तो मैं अब पंजाबी भाषा में लहजा में बोलो जैसे मैं बोल सकते हो हाँ खा बात हो ना तुम का कहना है तो मन हासे वो धीरे धीरे फिर सुधरत गिस। अब मन मन में फिर भाव आए कई बार कि मैं हाँ कई बार हमर वो गांव में छत्तीसगढ़ बनाए पर कई कार्यक्रम होए नाचा गम्मत होए ऊ में नाचा गम्मत में भी जब वो मन बातचीत करे छत्तीसगढ़ राज्य के बातचीत करे और बाहर के आना वाला नेता मन आए ऊ मन छत्तीसगढ़ की मांग करे मतलब याद आते छत्तीसगढ़ी के मांग कर प्यारे लाल ठाकुर साहब हमारे धमतरी में एक कार्यक्रम करी से जिला में गांधी चौक में बैठ के सामने बैठ कर बच्चा रहो तो सुनो वो अपने मन में भाव आई कि ये ला कविता में लिखे जा सकते ऐसे लिखे जा सकते।
1: ओ बखत जुन्ना जमाना में कुछ कविता जिन आप मन लिखे हो कुछ ऐसे सुरता आते कुछ एकात लाइन का लिखे रहे हो कुछ
0: यानी बोला सुरता आते कई ठन छोट छोट कविता लिखो काबर के जोड़ जब स्कूल हम जान तो बीच में तरिया पड़े और तरिया के थोड़ा से आगे में थाना और थाना के बाजू में वो गांधी चौक और वहां कार्यक्रम तो मोर दिमाग में वही घूमे ये कैसे लिखे जा सकते। तब मैं लिखे रहा एक ठन हवे थाना एक ठन गांधी चौक और गांधी जी के नारा मिलत हवे हमला तहू तो छत्तीसगढ़ जय बोल जय छत्तीसगढ़ ते बोल जय छत्तीसगढ़ जय बोल
1: कहा बात है कहा
0: ऐसे जब मैं फिर लिख दू एक ठन कार्यक्रम में हमार स्वर्गीय पवन दीवान जी आ रही से वो भाषण वासन दिन भाषण छत्तीसगढ़ में ऊपर जब वो गीत सुनाई छत्तीसगढ़ बन जा ते लगना ऐसे जब मैं सुनो तो मैं क्यों ऐसा तो मऊ लिख सकता हूँ थोड़ बहुत मैं हिंदी में भी लिखो छत्तीसगढ़ी में लिखो। एक दिन ऐसे भी मौका आई कि जब मैं यहाँ राज्य में गया एक गाँव एक कार्यक्रम में अपन घर के कार्यक्रम में हमारे रिश्तेदार वहाँ पहुँच गया है तो वहाँ जब वो कार्यक्रम खत्म हो गए तब मैं यहाँ पंडित जी का प्रणाम करके मैं क्यों मऊ छत्तीसगढ़ी में कुछ सुना सकतो का बोल सक ते पंजाबी लेकर का सुना मेरे ते का बोल बे ते तो वो हसीस ठाकर लगा तो मैं कुछ जानत नहीं रहो सब छत्तीसगढ़ में मानते मैं नहीं जानत रहो तो मेरा लौटा दी पर मोर मन में रही से कि जे छत्तीसगढ़ के ये गीत लगाते उससे मऊ गाँव धीरे धीरे मोर मुलाकात अचानक श्री परमार जी से होगी
1: नारायण लाल
0: परमार जी से जब इकल मन से हुई तब ये मन जब मुलाकात करते मन के साथ मन दोनों एक प्रोफेसर रिस एक जने शिक्षक रिस तब वो मुलाकात हुई तो गर्भवत से मैं पूछो कैसे करे जाए कैसे लिखते पूछो मैं यहाँ तो मुकिम साहब बोला गा के बताए परमार जी बोल के बताए हमारे एक गुरुदेव शिव प्रसाद जी पांडे हमला आठवीं में पढ़ाई हिंदी पढ़ाए मगर हिंदी पढ़ाते पर छत्तीसगढ़ी ज्यादा बोले और मैं छत्तीसगढ़ी बोले बोला ऐसे लगे ये बोली में ये भाषा में मिठास ज्यादा हवे बोला ऐसे लगे तो बोला कि मैं मीठ बानी ला गुरतुर ला का मैं कविता में लिख सकता हूँ ऐसे मन में मोर विचार आया बाद में धीरे धीरे मैं छत्तीसगढ़ी में भी कविता लिखना शुरू कर ऐसे
1: एक आठ कविता लिखा है जिन वो बखत के रहा है कुछ
0: हाँ वो समय जो कविता एक ठन लिखे रहो तेला बता दो मैं किसानी के दिन एक ठन कविता लिखे रहो जन बादर गरजत है भैया बादर गरजत है भैया किसानी के दिन आगे कार गाँव में रहे तो क्या करते बादर गरजत है भैया किसानी के दिन आगे चेत लगा के खेत जोतबो अब पानी के दिन आगे ऐसे तो सुखा डबरा तरिया मन नदिया लबालब भर जाही हरियर लुगरा के पहिन के जंगल रही रही के मुझपाही बादर है वरदानी आगे मितानी के दिन आगे भैया बादल गरजत है भैया किसानी के दिन आगे खेत बताबो बीजा बोवो खेत बताबो और बीजा बोवो नागर बैला ला धोबो नागर बैला ला फिर धोबो मेहनत के आगे दुनिया झुकते मेहनत के आगे दुनिया झुकते आलसी मन जिंदगी भर रुकते जुन्ना धान नंदागे भैया बादल गरजत है भैया किसाने के दिन आगे भैया
1: किसाने के दिन आगे क्या बात है। एक छत्तीसगढ़ी बोली इतना मिठास है में इतना गुरतुर बोली है। एक बार आप मन के लेखन जब आरंभ होइस चालू होइस तो ये लेखन कार्य और आगू कैसे बढ़िस बोला बताते हो।
0: मैं अब फिर कहा हुईस कि कवि सम्मेलन होने लगिस धीरे धीरे और जब लोग मतलब पता चलिस बोर एक लाभ ये मिलिस पंजाबी हुए के हिंदी तो ठीक है मगर वो छत्तीसगढ़ी में घलो कविता लिखते और मंच में सुनाते, तो ये मन अपन कवि स्वर में मोला ले जाना शुरू करे। अब मैं

0: छत्तीसगढ़ी कविता पढ़ो, हिंदी कविता पढ़ो, और कई बार तो हिंदी कविता जब पढ़ लो तो कहे नहीं छत्तीसगढ़ी कविता पढ़ो, तो छत्तीसगढ़ी कविता पढ़ो, संबंध सुने तो मैं नारा लगाए छत्तीसगढ़ी कविता सुनाओ, छत्तीसगढ़ी बोलो। और कारण मैं धीरे धीरे समझ गए हो कहा भर की मैं जब बोलो तो वे पंजाबी ट्यून आए तो आदमी मेरे को आनंद ले है ना, बोला अच्छा लगे कि चलो यही बहाना ले मोर बात तो पहुंचा थी। जाने अनजाने में छत्तीसगढ़ आंदोलन के एक ठन अंग मोह बन गयो, जाने अनजाने में। काबर कि उस समय मोले याद है कोदू राम दलित जी, श्री दानेश्वर शर्मा जी, हमार बसंत दीवान जी, रामेश्वर वैष्णव जी, ये सब मंच में आ चुके रही ने, लक्ष्मण मस्तूरिया जी ये सब मंच में आ चुके रही। अब नया वाला में वो सब मुकुंद कौशल मंच में आ चुके रही ने, ऐसे आई तब ये मन भी छत्तीसगढ़ी पढ़े साथ में हिंदी पढ़े कविता पढ़े, काबर की जनता के मांगनी से लोक साहित्य ला लोक तक पहुंचाए पर लोक भाषा का उपयोग करना बहुत जरूरी है, इससे चाहे वो बोली हो चाहे भाषा हो, मगर मगर आप अपन बात पहुंचाना है उकरे मन के भाषा में, जब आप गुठिया हो तो दिल में वो भाषा उतर जाते।
1: तो सुरजीत जी कवि मन के आप मन बात करे हो, बड़े बड़े कवि मन के बात करे हो, और संग में आप मन के कवि सम्मेलन मन में जाना होत रही से, अब वो छत्तीसगढ़ के वो मंच जिन मांग करत रही कि हम छत्तीसगढ़ी भाखा बोली में कुछ सुनना चाहत हन, तो एकाध औ कविता सुने के मन हुआ थे जिन मंच से हुंकार के रूप में आप मन छत्तीसगढ़ी संगवारी मन ला
0: व्यंग भी लिखो हिंदी में भी छत्तीसगढ़ी में भी, तो मैं छत्तीसगढ़ी में व्यंग गजल लिखियो, मैं एक ठन अपने ऊपर लिखियो सियान हो गए, तो मैं एक ठन बात लिखियो का लिखियो, सब मन कथे मोला सियान हो गए, दो चार दिन के यह मेहमान हो गए, दो चार दिन के यह मेहमान हो गए, नवा जमाना के लड़का मन का जाने, अनुभव मिल गए सुख दुख के ज्ञान हो गए, अनुभव मिल गए सुख दुख के ज्ञान हो गए, सब जन कथे बोला सियान हो गए, करिया केस जल्दीस सुफेद हो गए, करिया केस जल्दीस सुफेद हो गए, पारा मोहल्ला में हमर सम्मान हो गए,
1: क्या बात
0: पारा मोहल्ला में हमर सम्मान हो गए, दो चार दिन के यह मेहमान हो गए, सब जन कथे मोला सियान हो गए, चढ़ गए आँखी के ऊपर चश्मा पावर वाला डोकला ला लगिस वो हा हम जवान हो गए,
1: क्या बात
0: हम जवान हो गए, दो चार दिन के हम मेहमान हो गए, बुढ़ापा आयस घर के सुर बदल गए, देखत देखत मतलब इंसान हो गए,
1: क्या बात
0: देखत देखत मतलब इंसान हो गए, सब जन कथे मोला सियान हो गए, दो चार दिन के ये हम मेहमान हो गए,
1: क्या बात है। इतना हल्का फुल्का ढंग ले चालू करके और इतना गुड़ रहस्य में आप मन पहुंचता हो, और साथ में व्यंग के वो कहे जाए कलेवर वो आप मन के लेखन में आते, आप मन एक साहित्यकार हो जिन हिंदी में भी लिखते जिन छत्तीसगढ़ी में भी लिखते व्यंग भी लिखते कविता भी लिखते और बहुत चीज गुणत रही थे, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ खासकर ऐसे लेखक मन के प्रतिनिधि बन के जिन युवा साहित्यकार मन लिखना आरंभ करे हैं चालू करे हैं और आगू बढ़ना चाहते हैं कला लेके, विषय के चुनाव कैसे करे जाए?
0: एक बात ला नवा पीढ़ी के युवा मन ला ध्यान रखना चाहिए कि हमार आस पास जो घटना दिन प्रतिदिन घटत जात, चाहे वो पारिवारिक हो चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, वो मतलब देखना चाहिए कि कौन से विषय ला हम चुनन और ओला हम प्रभावपूर्ण बनान, तेकर प्रभाव हमार नवा पीढ़ी पर पड़े, काबर कि ये नवा पीढ़ी ला अगर हमला सही रास्ता में ले जाना हवे तो हमला बहुत ध्यान देना पड़ी, काबर कि अभी जो परिवर्तन होते टीवी देखा था मैं कई प्रकार घटना ला देखथन, हम अखबार पढ़थन कई जन घटना ला पढ़थन, खास करके युवा पीढ़ी ला अखबार ला लगातार पढ़ के और कई प्रकार जो पत्रिका थे तेला पढ़ के अलग अलग विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए और जब वो विषय के बारे में बोला मालूम हो जाए पूर्णता ऐसा लगे अब मैं ये जानकारी बोला मिल गए और मैं एक ऊपर कहानी कविता लेख निबंध रिपोर्टाज लिख सकता हूँ, तब लिखना चाहिए, काबर की बिना अनुभव के ते लिखवे तो वो उसने हुई जैसे रेत के घरौंदा होते, लिखे के समय बात अब ध्यान रखा जाना चाहिए कि हम जो भाषा का प्रयोग करत हैं वो भाषा ऐसे हो जो लोग मन तक पढ़े तक पहुंचे, सरल होए सहज होए मन में उतर जाए, अगर थोड़ बहुत भी तुम क्लिष्ट करो काबर की तुम्हार जो लिखे हो तेह अखबार में जब छपी तो तुम्हार नहीं रही, वो

0: जो पढ़े थे बेकार हो जाए। तब अगर गांव वालों मन पढ़ी तो गांव वालों मन लगना चाहिए कि नहीं, ये आदमी हमारे दिल के बात करे, हम पढ़त हैं, हम लोग पढ़े में अच्छा लगा थे, बोला कठिन नहीं लगना चाहिए। अखबार बन के भाषा जो हवे जो अखबार में छपत है कहानी कविता लेख निबंध, और जो गांव वाला मन या शहर वाला मन पढ़ते वो मन भाषा घलो सीखा थे। अगर वो में थोड़ बहुत भी गड़बड़ी हुई तो आने वाली पीढ़ी भी वही भाषा ला बोली, जैसे आजकल हम देखते हैं कई प्रकार के भाषा ला मिला के बोलते, छत्तीसगढ़ में बोलते। हाँ एक बात है, हम कोई चीज ला ग्रहण करे पर इनकार नहीं करन, कारण हम बाजार जाते हैं तो हमारे जेब में चिल्लर रही तो व्यापार करे में लेन देन में हम लोग सुविधा हो जाए।
1: बिल्कुल,
0: उसने हम अगर अलग अलग प्रकार के भाषा जाना था तो हम कहीं अलग अलग जाबो देश अपन पर तो वो भाषा का हम उपयोग कर सकते, मगर अपन भाषा अपन भाषा है, और नौजवान पीढ़ी ला अपन भाषा ला बिल्कुल ध्यान से जानना पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए।
1: सुरजीत जी इतना अच्छा सरल भाषा में आप मन समझा दो कि एक लेखक के का दायित्व होते, जिन पढ़ैया है जिन सुनैया है ओखर बर ओखर प्रतिनिधि कविता के रूप में एक कविता आऊ हमर संगवारी मन ला सुना देते हो तो आप मन जिन लिखे के नियम बताए हो वो स्थापित हो जाती समर कार्यक्रम में।
0: एक कविता सुनाना चाहता हूँ, अभी एक तरीका कैसे पहुँचे जाए, नया पीढ़ी कैसे पहुँचे, का समझ को पहुँचे, विषय ला कैसे ले, एक विषय के चयन में करे वो विषय के ऊपर वो कविता ला सुनो।
1: स्वागत।
0: दिया चारों खुट अंजोर बकरा थे, दिया ये बहुत सरल हमारे बात कही देते, अंधेरा हट गया जी दिया जला दे, मगर अगर पीछे कारण लग में बता तो दिया चारों खुट अंजोर बगरा थे, दिया के बाती रस जल के देख,
1: क्या बात है,
0: दिया के बाती असर जल के देख, अरे जाड़ा लाहो लेवत हवे चल के देख,
1: क्या बात है, क्या बात,
0: जाड़ा लाहो लेवत है चल के देख, बिना गर्म कपड़ा के निकल के देख, बिना गर्म कपड़ा के निकल के देख, अरे जिंदगी में कतेक रिकिम रिकिम के सुख दुख हुए, जो बात आप कहा हो ये नौजवान पीढ़ी समझे कोशिश नहीं करते, तब मैं कहता हूँ जिंदगी में कतेक रिकिम रिकिम के सुख दुख हुए, चिखला पानी में थोड़ कुन चल के देख,
1: क्या बात क्या बात,
0: चिखला पानी में थोड़ कुन चल के देख, अरे फोकट में सेखी झन मार, फोकट में सेखी झन मार, तेया भैया घर गृहस्थी के झंझट में संभल के देख,
1: क्या बात क्या बात,
0: घर गृहस्थी के झंझट में संभल के देख, और गरीबी गरीबी कहेले का होही,
1: का होही
0: गरीबी कहेले का होही, समय के संग ते खुद ला बदल के देख,
1: का बात,
0: समय के संग ते खुद ला बदल के देख, और दिया चारों खुट अंजोर बगरा थे, दिया के बाती असन जल के देख,
1: दिया के बाती कस जल के देख। संगवारी हो सुरजीत नवदीप जी मन सियानी के बखत में भी जब ये कविता मन ला पढ़ा थे और हमर मन ले गोट बात करा थे तो उनखर मुखड़ा हा चमका थे, ऐसे जैसे दिया बरा थे उखर अंजोर बगरा थे। सुरजीत जी चलत चलत एक दो छोटे छोटे बात और जानना चाहूँ कि सब लड़का हमन ला प्रिय होते, मयारुक लगते, सब अच्छा लगते, लेकिन कोई ऐसे रचना आप मन करे हो जिला करे के बाद बहुत संतोष हो ही।
0: हाँ।
1: तो वो रचना के बारे में बताओ, अंश सुनाओ।
0: आजकल जो चलत है बाजार में, मैं दो चार जगह मतलब जाए के मौका लगी, गुरु परंपरा देखियो मैं, गुरु शिष्य के परंपरा देखियो, तो मैं याद करत रहा हूँ कि वो पुराने समय में लेकलब या द्रोणाचार्य के संबंध कैसे रही से, आज जब पूरा समय बदल गए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो परंपरा भी बदल गए, लेने देने के जो चलत रही से अब वो परंपरा दूसरा ढंग के हो गए, तब आज के गुरु भी कैसे ओकर अनुसार बदल गए। बात मैं लिखियो में माँ के ऊपर एक कविता लिखियो, बहुत पूरा हिंदुस्तान भर में मैं कई कवि सम्मेलन में गयो तो लोग मन माँ के ऊपर कविता सुनाते, मैं कभी पिता पिता के ऊपर भी कविता लिखे रहे हो, तो मैं जो माँ के कविता लिखे हूँ वो में मैं एक बात लिखे हूँ वो आप लोग सुनाना चाहता हूँ।
1: स्वागत।
0: दाई ते मोला जन्म दे बने करे, पढ़ाए लिखाए पाँव में खड़ा करे बने करे, पढ़ाए लिखाए पाँव में खड़ा करे बने करे, दाई मैं जानत हूँ पढ़ लिख के मैं एक दिन नौकरी करूँ, पढ़ लिख के एक दिन मैं नौकरी करूँ, और मैं सच बताऊँ दाई मैं अब देख लेवे बड़े अफसर बनूँ, और जब बनूँ और जब वापस आऊँ दाई तो तोला पहले प्रणाम करूँ, और एक बात बताऊँ दाई ते मोला अभी उंगली पकड़ के चला था, मैं जब बड़े हो जाऊँ ना तो उंगली पकड़ के मैं चला,
1: क्या बात है,
0: तो उंगली पकड़

0: रखे, मैं चलाऊं दाई ते मोर बहुत सेवा करे ना, मैं भगवान से प्रार्थना करूं दाई मोला भी मोर दाई दादा के सेवा करे के मौका दे भी। मैं बतात हूँ मैं ऐसे मौका ला हाथ दे जान नहीं दूँ, मैं बतात हूँ मोर दाई मैं तोर सेवा पर प्राण दे दूँ और सेवा करूँ। मोला दिन याद आई मोर रात याद आई, जब भीजे कपड़ा में ते सुतत रहे और सुखम मोला सुखा सुलात रहे। दाई वो दिन मोला याद है, मैं तुला लेप तो लई में सुनाऊँ और मैं तोर पाँव ला दबाऊँ दाई तोर पाँव ला दबाऊँ।
1: क्या बात है सुरजीत नवदीप जी, ऐसे लगत है बातचीत चलत रहा है, आप मन के कविता पाठ चलत रहा है, हमन सुनत रही गुनत रही और ओखर आनंद कभी खत्म मत हो। चलत चलत आखिरी सवाल, बहुत लंबा यात्रा एक लोक साहित्यकार के रूप में आप मन करे हो, लेकिन फिर भी ऐसे लगते कि अभी कुछ बाँचे है, अभी कुछ और करना है, का करना चाहत हो एक साहित्यकार के रूप में आप मन के का संकल्प है?
0: मैं चाहत हूँ मोर रात रात जो छत्तीसगढ़ी भाषा ला छत्तीसगढ़ के सरकार हा अपन भाषा बना है, राजभाषा बना है, 8वीं सूची में ओकर नाम आ जाए ताकि आने वाला पीढ़ी है छत्तीसगढ़ी में ही लिखे पढ़े बोले परीक्षा होए और ओकर मल्ला वही मन में नौकरी भी मिले। अपन राज हो गए, अपन भाषा अपन बोली अपन होना चाहिए। मोर रात रात मोर मन में विश्वास भी है एक दिन ऐसे आई जब 8वीं अनुसूची में हमारे छत्तीसगढ़ी ला ले जाही सरकार मानी हमला मान्यता मिली तब मोला प्रसन्नता हुई, भले मैं रहूं चाहे मत रहूं मगर मैं होकर बर दुआ करत।
1: सुरजीत जी जब प्रसन्नता होते मन प्रफुल्लित होते तो साहित्यकार कविता करते। चलत चलत चार लाइन और कुछ सुना देते हो।
0: मैं दाई लगे हो दाई मैं तोर बात ला निभाए हूँ, दाई मैं तोर बात ला निभाए हूँ लड़ाई के मैदान में, दाई मैं तोर बात ला निभाए हूँ जो वचन दे रहे हो अपन बात ला निभाए हूँ। देख ले युद्ध के मैदान में मैं गोली पीठ में नहीं छाती में खाए हूँ, पीठ में नहीं छाती में खाए हूँ सब मल्ला दिखाए हूँ। दाई मोला याद है तोर वचन तोर बात अभी तक मोर दिल में उतर गए है। सच बताओ दाई तोर बात है बात नो है वचन है, कोई कोई लड़का बन निभाते वही ला मैं निभाए हूँ।
1: का बात है का बात है, साहित्यकार अपन हिसाब ले भी सिपाही होते, वो कलम के सिपाही होते। ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा के बोली के लोक साहित्यकार सुरजीत नवदीप जी मन आज हमार पहुना बनिन ये मंच मा जेखा नाम है हमार संस्कृति हमार साहित्यकार। हमार शुभकामना है कि उनका साहित्य यात्रा अभी चलते रहा है और हमार ला मिले प्रसादी के रूप में अच्छा अच्छा कविता अच्छा अच्छा बोली अच्छा अच्छा भाखा। सुरजीत जी आज आप मन हमार पहुनाई ला स्वीकारो, आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हमार संस्कृति हमार साहित्यकार ये क्रम में अभी आप मन वरिष्ठ लोक साहित्यकार श्री सुरजीत नवदीप ले समीर शुक्ल के होए ये गोठ बात सुनत रहे। एकरे संग मोर भुइया के ये अंकी है सिरावत है। जम्मू संगवारी मल्ला श्याम वर्मा के नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां, आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

एक नई और बेहतरीन सुबह में स्वागत है साथियों आप सभी का बातों और गीतों के कार्यक्रम गुंजन में। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका साथी अक्षय। स्वीकार कीजिए प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। श्रोताओं, आज यानी 16 जून से एक नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है। यह सिर्फ कक्षा बदलने का समय नहीं है, बल्कि एक नई सोच, नई शुरुआत और नए अवसरों का समय है। हर बच्चे के लिए आज का दिन खास होता है, नई किताबें, नए चेहरे और कुछ नया सीखने की उत्सुकता। लेकिन इसके साथ थोड़ा सा संकोच भी होता है, नई कक्षा, नए शिक्षक, जो स्वाभाविक है। नया शैक्षणिक सत्र जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक होता है। यह केवल कक्षा बदलने का अवसर नहीं है, बल्कि सोच, व्यवहार और लक्ष्य को नए सिरे से निर्धारित करने का समय है। बच्चों के लिए यह उत्साह और जिज्ञासा का समय होता है, वहीं पालकों के लिए यह जिम्मेदारी और मार्गदर्शन का अवसर होता है। यदि शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ की जाए तो पूरा सत्र बेहतर दिशा में आगे बढ़ सकता है। इसलिए इस समय को हल्के में ना लेकर एक मजबूत आधार बनाने पर ध्यान देना चाहिए। साथियों, बातें यूं ही जारी रहेंगी, पर उससे पहले सुनिए फिल्म लक्ष्य का ये गीत शंकर महादेवन की आवाज में। संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

साथियों बढ़ते हैं आज की अपनी चर्चा में आगे। दोस्तों सत्र की शुरुआत में ही स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना अति आवश्यक होता है। यह लक्ष्य केवल परीक्षा के अंकों तक सीमित न होकर ज्ञान कौशल और व्यवहार के विकास से जुड़ा होना चाहिए। जब बच्चे अपने लक्ष्य को समझते हैं तो उनकी पढ़ाई में एक नई दिशा और उद्देश्य दिखाई देता है। पालकों का यह दायित्व होता है कि वे बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार लक्ष्य तय करने में सहायता करें। इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित कर पाते हैं। बातें यूं ही चलती रहेंगी, पर उससे पहले सुनिए फिल्म संजू का ये गीत सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीत को लिखा है शेखर अस्तित्व ने, संगीत है विक्रम मोंट्रोस का।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों

0: पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। अभी आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं नए शैक्षणिक सत्र के विषय पर। बढ़ते हैं आज की अपनी चर्चा में आगे। दोस्तों, सफलता के लिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक होता है और इसकी शुरुआत एक नियमित दिनचर्या से होती है। समय पर उठना, पढ़ाई करना, खेलना और विश्राम करना, इन सभी का संतुलन बेहद जरूरी है। नया सत्र इस आदत को विकसित करने का सबसे सही समय होता है। यदि बच्चे नियमित दिनचर्या अपनाते हैं

0: विकास के, जन कल्याण के।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। अभी आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं नए शैक्षणिक सत्र के विषय पर। बढ़ते हैं आज की अपनी चर्चा में आगे। दोस्तों, सफलता के लिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक होता है और इसकी शुरुआत एक नियमित दिनचर्या से होती है। समय पर उठना, पढ़ाई करना, खेलना और विश्राम करना, इन सभी का संतुलन बेहद जरूरी है। नया सत्र इस आदत को विकसित करने का सबसे सही समय होता है। यदि बच्चे नियमित दिनचर्या अपनाते हैं तो उनकी एकाग्रता और कार्यक्षमता दोनों बढ़ती है। पालकों को इस प्रक्रिया में मार्गदर्शक बनकर बच्चों को प्रेरित करना चाहिए ताकि वे धीरे धीरे आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बन सकें। चर्चा यूं ही जारी रहेगी, पर उससे पहले सुनिए फिल्म मैरी कॉम का ये गीत विशाल ददलानी की आवाजों में। इस गीत को लिखा है प्रशांत इंगोले ने, संगीत है शशि सुमन का।

दोस्तों, बच्चों के शैक्षणिक जीवन में पालकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। केवल स्कूल पर निर्भर रहने के बजाय पालकों को भी बच्चों की पढ़ाई और गतिविधियों में रुचि लेनी चाहिए। समय समय पर बच्चों से बातचीत करना, उनकी समस्याओं को समझना और शिक्षकों से संवाद बनाए रखना अति आवश्यक होता है। इससे बच्चों को यह महसूस होता है कि उनका प्रयास महत्वपूर्ण है। एक सहयोगी और सकारात्मक वातावरण बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है। चर्चा यूं ही जारी रहेगी, पर उससे पहले सुनिए फिल्म थ्री इडियट्स का ये गीत। सोनू निगम, स्वानंद किरकिरे और शान की आवाजों में गीत को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत है शांतनु मोइत्रा का।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
3: 1 दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। अभी आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। कार्यक्रम गुंजन में आज हम चर्चा कर रहे हैं नए शैक्षणिक सत्र पर। तो साथियों, बढ़ते हैं आज की अपनी चर्चा में आगे। दोस्तों, नया सत्र बच्चों के लिए कई बदलाव लेकर आता है। नई कक्षा, नए शिक्षक और नए मित्र। इन परिवर्तनों के साथ सामंजस्य बैठाना प्रारंभ में कठिन लग सकता है। ऐसे समय में बच्चों को भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता होती है। पालकों को धैर्यपूर्वक बच्चों की बात सुननी चाहिए और उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहिए कि यह बदलाव स्वाभाविक है। धीरे धीरे बच्चे नए वातावरण में सहज हो जाते हैं और आत्मविश्वास के साथ अपनी गतिविधियों में भाग लेने लगते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आज के समय में डिजिटल माध्यम शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, लेकिन पारंपरिक पुस्तकों का महत्व भी उतना ही है। बच्चों को तकनीक का सही उपयोग सिखाना जरूरी है ताकि वे ज्ञान के नए स्रोतों तक पहुंच सकें। साथ ही पुस्तकों के माध्यम से गहराई से समझ विकसित होती है। पालकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे स्क्रीन समय और पुस्तक अध्ययन के बीच संतुलन बनाए रखें। यह संतुलन उनके समग्र बौद्धिक विकास के लिए बेहद आवश्यक है। चर्चा यूं ही जारी रहेगी, पर उससे पहले सुनिए फिल्म चक दे इंडिया का ये गीत हेमा सरदेसाई की आवाज में। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है सलीम सुलेमान का।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी। मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है।

आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अपनी चर्चा में आगे। साथियों, पालक और बच्चे के बीच खुला और सकारात्मक संवाद अत्यंत आवश्यक होता है। जब बच्चे अपनी समस्याओं और अनुभवों को साझा कर पाते हैं तो उनका मानसिक बोझ कम होता है। पालकों को बच्चों की बात ध्यान से सुननी चाहिए और उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। इससे विश्वास का संबंध मजबूत होता है और बच्चे अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। संवाद केवल समस्याओं का समाधान ही नहीं करता, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चर्चा यूं ही जारी रहेगी, पर उससे पहले सुनिए फिल्म स्वदेश का ये गीत, हरिहरन, कैलाश खेर और उदित नारायण की आवाजों में। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीत AR रहमान का है।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया। कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
1: ये आकाशवाणी अंबिकापुर है, अभी आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं नए शैक्षणिक सत्र विषय पर। अब बढ़ते हैं आज की अपनी चर्चा में आगे। दोस्तों, बच्चों के विकास के लिए अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों का संतुलन जरूरी होता है। अत्यधिक अनुशासन बच्चों पर दबाव डाल सकता है, जबकि अत्यधिक स्वतंत्रता उन्हें असंयमित बना सकती है। इसलिए पालकों को एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। बच्चों को नियमों का पालन सिखाते हुए उन्हें अपनी रुचियों और प्रतिभाओं को विकसित करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। इससे बच्चे जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनते हैं और उनका व्यक्तित्व संतुलित रूप से विकसित होता है। चर्चा यूं ही जारी रहेगी, पर उससे पहले सुनिए फिल्म तारे जमीन पर का ये गीत, शंकर महादेवन, डोमिनिक और विवियन की आवाजों में। गीतकार हैं प्रसून जोशी और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8 बजे से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
1: बेबी को बेस पसंद है।
3: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। अभी आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अपनी चर्चा में आगे। दोस्तों, शिक्षा के साथ साथ बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नियमित खेलकूद और व्यायाम बच्चों को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखते हैं। इससे उनकी एकाग्रता और सीखने की क्षमता बढ़ती है। पालकों को बच्चों को संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और नियमित शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास संभव है, जो शिक्षा की सफलता के लिए आवश्यक आधार प्रदान करता है। साथियों, इसके साथ ही बच्चों के विकास में सकारात्मक सोच और प्रोत्साहन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। नया सत्र नई चुनौतियों और अवसरों के साथ आता है, जिनका सामना आत्मविश्वास के साथ करना जरूरी है। पालकों को बच्चों के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। सकारात्मक वातावरण बच्चों को आत्मनिर्भर बनाता है और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए

प्रेरित करता है। कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी का ये गीत अरमान मलिक की आवाज में। गीत को लिखा है मनोज मुंतशीर ने और संगीत है अमाल मलिक का।

0: बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन, अभी आप सुन रहे थे मीडियम वेव और एफएम बैंड पर, ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 9:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: मिनट हुए हैं, अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुआ नया शिक्षा सत्र, स्कूलों में शिक्षकों ने विद्यार्थियों का तिलक लगाकर किया स्वागत। यूपीएससी ने घोषित किए इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम। और सक्ती जिले में एसीबी ने रिश्वत लेते जनपद पंचायत सीईओ सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल गए हैं। इस दौरान आज विभिन्न स्कूलों में शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शाला प्रवेशोत्सव के दौरान स्कूल पहुंचने वाले नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर 27 जून तक आयोजित होने वाले शाला प्रवेशोत्सव में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने बताया कि 1000

से अधिक रिक्तियों के लिए 13,000 से अधिक उम्मीदवारों का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया गया है। यूपीएससी ने उम्मीदवारों को यह भी बताया कि उनके अंक, कट ऑफ अंक और उत्तर सूची अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से प्रारंभिक परीक्षा परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। रायपुर के चंदखुरी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य स्तरीय पुलिस अकादमी में 33 प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षकों के बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का कल शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नैतिकता, संवेदनशीलता और जनता का विश्वास पुलिस सेवा की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने प्रशिक्षुओं से कानून व्यवस्था के साथ समाज की सुरक्षा और सेवा को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। समारोह में पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे। मौसम विभाग ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में मानसून के पहुंचने में कुछ और समय लग सकता है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए बताया कि बिहार से लेकर दक्षिण छत्तीसगढ़ तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके प्रभाव से आज प्रदेश में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। वर्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ रहेगा। वहीं प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवा चलने की भी चेतावनी दी गई है। सक्ती जिले में एसीबी बिलासपुर की टीम ने रिश्वत लेते सक्ती जनपद पंचायत के सीओ निखिल कश्यप, लिपिक अविनाश ठाकुर और भृत्य लच्छन भानु को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर 1,00,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। बताया गया कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत लिमतरा पंचायत के निर्माण कार्यों का चेक जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी ने तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। बस्तर क्षेत्र में सड़कों और पुल के निर्माण के कार्यों की धीमी गति पर लोक निर्माण विभाग ने 2 ठेकेदारों का पंजीयन 2 वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है, जबकि 8 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सुकमा जिले में रेत खदानों का आवंटन अब ई नीलामी से किया जाएगा। शबरी नदी स्थित 4 हेक्टेयर क्षेत्र की खदान के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया MSTC पोर्टल पर होगी। आवेदन 17 से शुरू होकर 23 जून तक लिए जाएंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में इस शैक्षणिक सत्र के लिए सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। कबीरधाम जिले में 35 ग्रामीण महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है। अब ये महिलाएं गांव में सौर उपकरणों की स्थापना, संचालन और मरम्मत करेंगी। इससे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। गरियाबंद जिले में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए स्कूल बसों का विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। संयुक्त टीम ने 30 बसों की जांच कर दस्तावेज और सुरक्षा मानकों का परीक्षण किया। चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया, जबकि अनुपस्थित 45 बस संचालकों को नोटिस जारी किया गया। लोरमी विधानसभा क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 5 गांव में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुआ नया शिक्षा सत्र। स्कूलों में शिक्षकों ने विद्यार्थियों का तिलक लगाकर किया स्वागत। यूपीएससी ने घोषित किए इस वर्ष के सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम। और सक्ती जिले में एसीबी ने रिश्वत लेते जनपद पंचायत सीओ सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं, अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

कपड़ा और मकान जिंदगी की बुनियादी जरूरतें हैं। 2 जून की रोटी के बाद दूसरी चीजें भी अहम हो जाती हैं। मेहनत से ही इन तीनों को हासिल किया जाता है। पेट में रोटी और तन पे लंगोटी के बाद सिर पर एक छत की जरूरत होती है। एक लंबे संघर्ष के बाद जाकर कहीं पूरा होता है अपने घर का सपना। इस कल्पना को साकार करने के लिए अब सरकार कई योजनाएं लेकर आई है। उन्हीं में से एक है स्मार्ट रजिस्ट्री।

0: छत्तीसगढ़ में भूमि और संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, त्वरित और सुविधाजनक बनाने के लिए स्मार्ट रजिस्ट्री प्रणाली लागू की गई है। स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम से समय की बचत भी होती है और ये जन सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखने में सहायक है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संपत्ति या जमीन की रजिस्ट्री पर स्टैम्प ड्यूटी यानी पंजीयन शुल्क में 50% की विशेष छूट दी जाती है। इस स्मार्ट रजिस्ट्री प्रणाली की और भी कई विशेषताएं हैं। आप हैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय।
1: पहले घपला उपला होतरी से काकरो जमीन काकर खाता और कोई खड़ा होके बेदारत रिस रजिस्ट्री भी हो जाती। आज ऐसा क्रांति आज राजस्व मंत्री और हमारे पंजन विभाग के सहयोग से हमन एमा 10 क्रांति लाए हन कि अब ऐसा कोई फेक रजिस्ट्री नहीं होने वाला है और रजिस्ट्री के तत्काल बाद नामांतरण हो जाएगी। 1 घंटा भी नहीं लगे रजिस्ट्री के तत्काल बाद नामांतरण भी हो जाएगी। एक भी व्यवस्था हमन करे हैं।

0: भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग ने ये माना है कि पारदर्शी, सरल और समयबद्ध सेवाएं देने में छत्तीसगढ़ का स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम बेहद प्रभावी है। अब राज्य के स्मार्ट ऑफिस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने पर विचार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का स्मार्ट रजिस्ट्री मॉडल अब सिर्फ एक राज्य की पहल नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक दिशा बन रहा है। माननीय वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी का कहना है,
1: नवा रायपुर में पहले परिसर का उद्घाटन किया जा रहा है स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का, और इसके तहत 10 अभी प्रदेश में अलग अलग जगहों पर इसे स्थापित किया जा रहा है। आने वाले समय में और इसकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। इससे पूरी प्रक्रिया सरलीकृत होगी। व्यक्ति सरकारी जो रजिस्ट्री कार्यालय वो भी चलता रहेगा, यह भी चलता रहेगा। दोनों विकल्प जनता के पास उपलब्ध रहेंगे। जनता से कोई भी अतिरिक्त चार्ज पंजीयन के लिए नहीं लिया जाएगा।

0: देश का पहला आधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय नवा रायपुर में अपनी सेवाएं दे रहा है। पहले रजिस्ट्री प्रक्रिया में लगने वाला समय 4 से 6 घंटे होता था, जो अब घटकर 15 से 20 मिनट रह गया है। और ये संभव हुआ है आधुनिक स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम की वजह से। नए स्मार्ट कार्यालयों में आरामदायक लाउंज, एसी, फ्री वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग स्टेशन, हेल्प डेस्क और स्वच्छ डिजिटल वातावरण की सुविधाएं हैं। यहां टोकन सिस्टम और डिजिटल डिस्प्ले के कारण बिना किसी परेशानी के तेज और पारदर्शी प्रक्रिया से काम होता है। इस सिस्टम में ऑनलाइन दस्तावेज, कैशलेस भुगतान और रजिस्ट्री के बाद सीधे मोबाइल पर अपडेट और खसरे में ऑटोमेटेशन की सुविधा है।
1: मेरा नाम संतोष कुमार साहू है। मैं उपपंजीयक कार्यालय नवा रायपुर में उपपंजीयक के पद पर पदस्थ हूँ। यह कार्यालय स्मार्ट पंजीयन कार्यालय है। इस कार्यालय में लोगों के लिए पंजीयन की तीव्र एवं पारदर्शी सुविधा शासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यहाँ लोग सामान्य कार्यालय में जहाँ वेटिंग हॉल और शौचालय अन्य सुविधाएं जो है उपलब्ध नहीं रहती, लेकिन इस स्मार्ट पंजीयन कार्यालय में पक्षकारों के लिए इंतजार करने के लिए वेटिंग हॉल रहते हैं, अलग से फीमेल मेल टॉयलेट अलग अलग उपलब्ध है। उसके अतिरिक्त यहाँ ऑनलाइन माध्यम से पंजीयन का कार्य किया जाता है, जिसमें पूर्णतः पारदर्शी और तीव्र प्रक्रिया का NGDRS के द्वारा उपयोग किया जाता है। हमारे इस छत्तीसगढ़ में स्मार्ट पंजीयन कार्यालय नवा रायपुर के अतिरिक्त रायपुर के विविलन टावर में, चड्डू में, अभनपुर, तिलदा और रायगढ़ जिले में भी स्मार्ट पंजीयन कार्यालय बनाए गए हैं। साथ ही और भी नए स्मार्ट पंजीयन कार्यालयों का बनाए जाना प्रस्तावित है। स्मार्ट पंजीयन से क्योंकि प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन है, इसलिए यह पूर्णतः पारदर्शी है और ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन होता है और EKYC के माध्यम से पक्षकारों की जांच होती है। साथ ही त्वरित तुरंत नामांतरण हो जाता है। जैसे ही पक्षकार क्रय विक्रय के दस्तावेज का प्रस्तुत करते हैं, पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, वैसे ही वह नामांतरण उस दस्तावेज का नामांतरण भी हो जाता है, पक्षकार के नाम से वह संपत्ति आ जाती है। इस प्रकार प्रक्रिया जो है बहुत तीव्रता से संपन्न होती है और साथ ही पक्षकारों को उनके संपत्ति में नाम भी है उस दिन आ जाते हैं, तो की संभावना तो लगभग नगण्य है, क्योंकि जो दस्तावेज जो भी चीजें हैं पहले पक्षकार के नाम से रहेगी, उन पक्षकारों को ऑनलाइन में पहले सत्यापन होता है कि उनके नाम से है जमीन या नहीं है, और उनके नाम से जमीन है वही जमीन को वह बेच पाता है। और जैसे ही पंजीयन होता है तो विक्रय होने के पश्चात में वह जमीन दूसरे पक्षकार क्रेता के नाम पर नामांतरण हो जाता है तो तुरंत ही, तो उससे संभावना तो लगभग नगण्य है। छत्तीसगढ़ में रायपुर में, खासकर रायपुर में अभनपुर, तिलदा, नवा रायपुर, बेबीलोन टावर और सड्डू में है। इसके अतिरिक्त रायगढ़ में भी स्मार्ट पंजीयन कार्यालय प्रारंभ हो चुका है।

0: छत्तीसगढ़ के स्मार्ट रजिस्ट्री कार्यालयों में उपलब्ध आधुनिक सुविधाएं, पारदर्शी कार्यप्रणाली और नागरिक अनुकूल वातावरण अत्यंत सराहनीय है। स्मार्ट रजिस्ट्री की सुविधाओं के कारण नागरिक खुश हैं। जटिल प्रक्रियाएं अब आसान जो हो गई हैं। इतना ही नहीं, अब यदि कोई चाहे तो घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भी कर सकता है। आधुनिक तकनीक पर आधारित स्मार्ट रजिस्ट्री प्रणाली अब हर नागरिक की साथी बन गई है।
1: मैं प्रवीण शुक्ला बलौदा बाजार का निवासी हूं। मैंने 3 दिन पहले रजिस्ट्री कराई और 10 मिनट के अंदर ही नामांतरण हो गया। इस प्रक्रिया में 5-6 महीना लग जाता था, समय ऊर्जा और पैसा भी लगता था, वो मात्र 10 मिनट में हो गई। मैं इससे अचंभित हूँ और सरकार के इस कदम से बहुत खुश हूँ। सरकार का ये फैसला मील का पत्थर साबित होगा, ये एक नई क्रांति है। आई एम हैप्पी कस्टमर ऑफ विष्णुदेव सरकार। और मैन्युफैक्चरर जब भी कंज्यूमर से मिलता है, कंज्यूमर को फायदा ही होता है। छत्तीसगढ़ की जनता को इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा।

0: स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का एक ही मूल मंत्र है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। इसी तर्ज पर प्रदेश भर में 117 पंजीयन कार्यालयों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य है। स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम ने छत्तीसगढ़ में सुशासन का एक नया अध्याय लिख दिया है, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ बन गया है नेशनल रोल मॉडल। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट पंजीयन कार्यालयों का सपना पूरा होते ही रजिस्ट्री के अनुभवों में एक बड़ी क्रांति आई है। जमीन के क्रय विक्रय की जानकारी भी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होने से रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान हो गई है। इस बारे में भारती शर्मा बताती हैं।
1: सबसे पहले जरूर ऑनलाइन भुइया में जाकर उनकी वेबसाइट रेवेन्यू CGNIC इनमें जाकर ऑनलाइन भुइया में जाकर सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी की जानकारी ले सकते हैं। ऑफलाइन में संबंधित उपपंजक रजिस्ट्रार कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। उपपंजक कार्यालय में उपस्थित होकर वहाँ पे मतलब प्रोफार्मा में एक निर्धारित प्रोफार्मा में जानकारी भर के संबंधित व्यक्ति की जो आवेदन किया है उनका और वर्ष रजिस्ट्री का वर्ष संभव हो तो रजिस्ट्री तारीख जैसी जानकारी देने से और निर्धारित शुल्क ₹100 जमा कर प्रति वर्ष ₹100 जमा करने के पश्चात 2-3 दिन में उक्त खसरे की जानकारी उस व्यक्ति को उपलब्ध हो जाएगी जो प्रॉपर्टी वो ले रहे हैं। भुइया पोर्टल में जाकर ऑनलाइन जांच के लिए छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट है जो रेवेन्यू CGNIC इन, उस पर जाकर ऑनलाइन खसरा नंबर या उस व्यक्ति का नाम डालेंगे तो अभी वर्तमान

में कौन है उसका स्वामी ये पता चल जाएगा। भुइया पोर्टल ये बहुत उपयोगी चीज है। ये तो एक भुइया पोर्टल जो मैं बता रही हूँ रेवन्यू सीजी एनआईसी वाला, इसको तो कोई भी व्यक्ति यदि डालेगा ये वेबसाइट पर जाके यदि देखेंगे ना सर्च करेंगे तो ये दोनों तरह से सर्च हो जाता है। एक तो उस व्यक्ति के नाम से जिसकी इनको सर्च करना है जिससे प्रॉपर्टी ले रहे हैं, दूसरा खसरा नंबर डालने से, दो तरह से ये ओपन होता है। दोनों ही तरह से इसको आप देख सकते हैं इस पे जाकर वर्तमान में उसके मालिक कौन है। यदि किसी मूल खसरे का यदि भुइया में चले गए और उसका पंजीयन हो चुका है, मान लो वटांकन हो गया है, तो

होता है, दोनों ही तरह से इसको आप देख सकते हैं इस पे जाकर वर्तमान में उसके मालिक कौन है। यदि किसी मूल खसरे का यदि भैया में चले गए और उसका पंजीयन हो चुका है, मान लो बटांकन हो गया है, तो जो सेल कर रहे हैं उनसे उनका बटांकन नंबर पूछ के, क्योंकि जो नंबर डालेंगे वो भैया उसका संबंधित खसरे का जानकारी मिल जाता है। यदि कॉलोनी शहरी क्षेत्र में है तो निकाय सीमा में है तो उसका एक विशिष्ट प्रॉपर्टी आईडी होता है, नंबर होता है, उस आईडी को दर्ज करते ही कॉलोनाइजर का नाम और विवरण सामने आ जाएगा। इसके अलावा कॉलोनाइजर का नाम डालकर भी सर्च किया जा सकता है, इससे यह पता चल जाएगा कि कॉलोनाइजर ने वह जमीन मूल रूप से किसे खरीदी थी। और अगर यदि किसी कॉलोनी में 50 प्लाट है तो उसमें किसी एक विशेष प्लाट की जानकारी चाहिए तो क्या करें, यह है। जैसे तो सबसे पहले उस पोर्टल में कॉलोनी का नाम और उसका खसरा नंबर सर्च करना होगा, जिससे पूरे कॉलोनी का लेआउट और विवरण दिखाई देगा। सबसे जरूरी बात ये कि सबसे पहले B1 यदि एग्रीकल्चर लेंगे तो B1 देख लें, और फ्लैट की रजिस्ट्री हो रही है तो टैक्स रसीद देख लें, क्योंकि फ्लैट में मालिक का ना हक जो होता है वो तो उस मालिक का ही होता है फ्लैट में, लेकिन टैक्स रसीद में जो वर्तमान विक्रेता है वो उनका टैक्स पट रहा है कि नहीं। और एग्रीकल्चर में तो B1 ही है मेन, तो यह मैं जाकर सर्च करें खसरा नंबर और नाम से, और बाकी 30 साल का सर्च करा सकते हो पंजीयक कार्यालय से कि पिछले 3 सालों में इन्होंने उस प्रॉपर्टी को सेल तो नहीं कर दिया है। जब भी जमीन खरीदे तो एक बार भुइया पोर्टल में जाके या ऑफलाइन उपपंजक कार्यालय में संपर्क करके और पूरी जांच करने के बाद ही पलटी ले, ताकि किसी भी प्रकार के लोगों को परेशानी ना हो या धोखाधड़ी का शिकार ना हो, अन्यथा भविष्य में कानूनी विवाद और आर्थिक नुकसान का सामना उसको करना पड़ सकता है। इसलिए सारी जाँच इस प्रकार की करने के पश्चात ही वो प्रॉपर्टी ले।

0: नवा रायपुर में स्थापित आधुनिक स्मार्ट रजिस्ट्री ऑफिस ट्रिपल पी यानी पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप मॉडल पर तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य नागरिक सेवाओं को द्रुतगामी, पारदर्शी और आधुनिक मानकों के अनुरूप बनाना है। अब मकान, दुकान या जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए भीड़भाड़ वाले सरकारी दफ्तरों में जाने के बजाय नागरिक अनुकूल माहौल में रजिस्ट्री की राह सुगम हो गई है। नए स्मार्ट पंजीयन कार्यालयों को नागरिकों का सुखद और सुविधाजनक अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है।
1: नमस्ते, मैं अंजलि तिवारी, उप पंजीयक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय सद्दू रायपुर। स्मार्ट पंजीयन की प्रक्रिया में पक्षकार द्वारा NGDRS की साइट में जाकर संपत्ति और पक्षकार का पूर्ण जानकारी भरा जाता है। वह अपने सुविधा अनुसार समय स्लॉट में अपॉइंटमेंट लेते हैं। पक्षकार अपने टाइम स्लॉट में उपस्थित होते हैं, जहां उनका फोटो, EKYC और साइन लिया जाता है। 15 से 20 मिनट में पंजीयन की प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया जाता है और सुबह में आपके माध्यम से संपत्ति का एग्जैक्ट लोकेशन फोटो के साथ लिया जाता है। रजिस्ट्री पूर्ण होते ही व्हाट्सएप के माध्यम से डॉक्यूमेंट पक्षकार को प्राप्त हो जाता है। स्मार्ट पंजीयन कार्यालय में AC की सुविधा, वेटिंग लाउंज, शुद्ध पेयजल, फ्री वाईफाई, हेल्प डेस्क तथा प्री प्रेजेंटेशन काउंटर जैसी मॉडर्न सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्मार्ट पंजीयन प्रक्रिया में पेपरलेस और डिजिटल है। यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिफिकेशन आता है, कैशलेस पेमेंट होता है, डिजी लॉकर की सुविधा दी जाती है। स्मार्ट पंजीयन में B1 खंड 1 नक्शा, पक्षकार की ID की जरूरत पड़ती है तथा सुगम ऐप के माध्यम से लोकेशन की फोटो अपलोड की जाती है। उसके उपरांत 15 से 20 मिनट के अंदर उपस्थिति के पश्चात प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया जाता है। इसमें केवल 15 से 20 मिनट का समय लगता है। स्मार्ट पंजीयन में ई के वाई सी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ई के वाई सी के माध्यम से जो फर्जीवाड़े हो जाते थे

जिसमें किसी और पार्टी द्वारा उपस्थित होके गलत फर्जी रजिस्ट्री करवा दी जाती थी वो बच जाता है क्योंकि ए के वाई सी से उनकी पहचान कर ली जाती है। सुगम ऐप के माध्यम से एग्जैक्ट प्रॉपर्टी का लोकेशन पक्षकारों को पता चल जाता है, तो ये सब सुविधाएं उनसे मिली है। साथ में समय की बचत होती है, पहले कम से 1 से 2 दिन मिनिमम लग जाते थे, अब सेम डे डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। एक दिन में अपने पास 50 से 60 रजिस्ट्री कर सकते हैं। रायपुर में अभी सड्डू ऑफिस है जो श्रीराम बिजनेस पार्क में है, नया रायपुर में है सीबीडी में, और तुलदा नेवरा में एक ऑफिस है। कुल मिला के छत्तीसगढ़ में 10 रजिस्ट्री ऑफिस को स्मार्ट पंजीयन बनाया गया है और साल भर में पूरे रजिस्ट्री ऑफिस को स्मार्ट पंजीयन ऑफिस बनाने का लक्ष्य रखा गया है। फर्जीवाड़ा नया केवाईसी इंट्रोड्यूस किया गया, केवाईसी पहले नहीं होता था, और डिजी लॉकर की सुविधा देते हैं जिसमें दस्तावेज वहीं उपलब्ध हो जाता है।

0: छत्तीसगढ़ में स्मार्ट पंजीयन कार्यालय प्रदेश में सुशासन और नागरिक सुविधाओं के नए युग की शुरुआत है। इस पहल से कल्याणकारी राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ और भी सशक्त बन गया है। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि नागरिक सुविधा ही सुशासन का मूल आधार है। स्मार्ट रजिस्ट्री ऑफिस सरकार की प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष परिणाम है। इससे नागरिकों के जीवन में सहजता तो आई ही है, साथ साथ उनका सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। आधुनिक स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम ने सुशासन की एक नई पहचान को स्थापित किया है।
1: पहले हमें रजिस्ट्री के बाद पटवारी के पास जाना पड़ता था, फिर नामांतरण की प्रक्रिया होती थी। अब क्या हो गया है, ये डायरेक्ट हो गया है, यहाँ रजिस्ट्री के तुरंत बाद ही नामांतरण हो जाता है और नामांतरण के बाद B1 में दिखाने लगता है, आपका जो नाम रहेगा वो B1 में तुरंत चढ़ जाता है।

प्रदेश वासियों के लिए ये अत्यंत गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ का स्मार्ट रजिस्ट्री मॉडल अब देश भर के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बनकर उभरा है। भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग

राज्य के पंजीयन और मुद्रांक विभाग द्वारा किए गए तकनीकी नवाचारों की सराहना की है। नागरिक केंद्रित इन सुधारों ने भविष्य की तस्वीर में खुशहाली के रंग भर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम के तहत पंजीयन प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण से लेकर सेवा वितरण सुधारों तक की लंबी फहरिस्त है। दरअसल ये सिस्टम नेक्स्ट जनरेशन रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म की जमीन तैयार कर रहा है, जिस पर खड़ी होगी उज्जवल भविष्य की शानदार इमारत। नागरिक सुविधाओं में इजाफा करना ही छत्तीसगढ़ सरकार की दृढ़ इच्छा है। यही वजह है कि लोकतंत्र में आस्था की पताका थामे शासन, प्रशासन और नागरिक एक साथ बढ़ रहे हैं उजाले की ओर।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: उजाले की ओर, अभी आप सुन रहे थे ये प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब समय है तापमान संबंधी सूचनाओं का। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान हमारे शहर अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रोताओं, ये थी तापमान संबंधी सूचना। अब जानते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, आज सुबह 11:05 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। दोपहर 12:00 आप सुनेंगे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे शीर्षक गीतों पर आधारित कार्यक्रम चयन। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन, जिसके अंतर्गत बातचीत होगी मोबाइल नहीं किताबों से दोस्ती विषय पर। साथ ही होगा आईना क्रम एवं घर आंगन मेल। श्रोताओं, आज दोपहर 1:40 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत कंधा आप सुन सकेंगे दोपहर 2:30 पर। श्रोताओं, हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में शाम 5:30 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:20 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम गोधुली। शाम 7:05 पर आप सुन सकेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल आप सुनेंगे शाम 7:20 पर। सामयिक चर्चा का विषय होगा जल शक्ति अभियान एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री का 15-सूत्रीय कार्यक्रम सीखो और कमाओ। साथ ही शाम 7:30 पर आप सुने

आएंगे किसान वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो किसान वाणी कार्यक्रम रात्रि 8 बजे आप सुन सकेंगे सोशल मीडिया की गूंज कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम श्रोताओं कार्यक्रम मनी टॉक और मंथन आप सुनेंगे आज रात्रि 9:30 पर जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन श्रोताओं ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी अब प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम नए तराने कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए फिल्म एनिमल का ये गीत विशाल मिश्रा की आवाज में गीत को लिखा है राजशेखर ने संगीत है विशाल मिश्रा का

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
2: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। अभी आप सुन रहे हैं नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम में अब सुनिए सनम पुरी की आवाज में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का ये गीत। गीतकार हैं अन्विता दत्त और संगीत है विशाल शेखर का।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। अभी आप सुन रहे हैं नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम में अब सुनिए फिल्म शेरशाह का ये गीत, जुबिन नौटियाल और असीस कौर की आवाजों में। गीतकार और संगीतकार हैं तनिष्क बागची।

0: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जुड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।
2: मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। अभी आप सुन रहे हैं नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम में आप सुनिए फिल्म लूडो का ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत को लिखा है संदीप श्रीवास्तव ने, संगीत है प्रीतम का।

श्रोताओं, कार्यक्रम नए तराने के अंत में सुनिए पापोन की आवाज में फिल्म रेड फिल्म का ये गीत। गीतकार है कुमार और संगीत है देवशी प्रसाद का।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम नए तराने बस यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। फ्रांस के एवियां शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियां पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में

0: नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि लोकतंत्र देश की कार्य संस्कृति और विचार प्रक्रिया का अभिन्न अंग बना हुआ है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में बढ़ोतरी की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपए से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमानन ईंधन के निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपए से बढ़ाकर 12.05 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। इस बीच LNG ले जा रहे भारतीय टैंकर दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। इसमें 62,370 मीट्रिक टन LNG है। इसके 18 जून तक गुजरात के दहेज पत्तन पर पहुंचने की उम्मीद है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों के भीतर ही 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। 21 जून को निर्धारित राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इस निर्णय का स्वागत किया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। फीफा विश्व कप में केप वर्डे ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए दिग्गज टीम स्पेन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ग्रुप जी के पहले मैच में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर। सुबह के 11:05 हुए हैं और ये वक्त होता है आपकी फरमाइशों पर आधारित फिल्म गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में आपकी फरमाइशों के गीत सुनवाने का।

दिल एक मंदिर। इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने, और इस गीत के लिए फरमाइशें हम तक लिख भेजी हैं आप सभी श्रोताओं ने। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेबवानी, संगीता नेबवानी, आकाश नेबवानी, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा, सीता, सागर, आयुषी, हनी और नेबवानी परिवार के सभी सदस्य। कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन, सोनू, वंदना और श्रीवास्तव परिवार के सभी सदस्य। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के आप सभी सदस्य, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार, कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पिंडरा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। और इसी गीत के लिए फरमाइशें आई।

हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा, सालिया, शोएब खान, मुस्तबा, रऊफ भाई, शाहिद भाई और गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर की। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। और श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे ये एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आपकी फरमाइशें हम तक आती हैं पोस्ट कार्ड के जरिए, तो कागज और कलम तैयार रखकर जरूर बैठिएगा क्योंकि कार्यक्रम के ही दौरान हम कार्यक्रम का पता भी जरूर बताते हैं।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म वंदना से ये गीत। अनजान के बोल थे, संगीत दिया था रवि ने। और इस गीत से पहले जैसा कि हमने आपसे कहा था कि कागज और कलम आप जरूर तैयार रखकर बैठिएगा, क्योंकि कई ऐसे श्रोता भी हैं जो

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म वंदना से ये गीत। अनजान के बोल थे, संगीत दिया था रवि ने। और इस गीत से पहले, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि कागज और कलम आप जरूर तैयार रखकर बैठिएगा, क्योंकि कई ऐसे श्रोता भी हैं जो शायद कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और ये जरूर सोच रहे होंगे कि हम किस तरह अपनी फरमाइशें आकाशवाणी अंबिकापुर तक भेज सकते हैं। तो आपको परेशान जरा भी नहीं होना है, क्योंकि हम आपको बताते हैं ना कार्यक्रम का पता कार्यक्रम के ही दौरान। तो आपको लेना है एक पोस्ट कार्ड और उस पर सबसे पहले लिखना है कार्यक्रम का नाम, आपकी पसंद, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी अंबिकापुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, पिन है 497001। तो बस इतना सा काम करना है और पोस्ट कार्ड के जरिए हम तक कार्यक्रम आपकी पसंद के लिए आपको अपनी फरमाइशें भेज देनी है। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे से। आनंद बख्शी की शब्द रचना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, और पिछले और इस गीत की मिलीजुली फरमाइश कुछ इस तरह है। बलौदा अकलतरा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल। वैष्णो कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौण और मोहम्मद शादाब खत्री। बठेना पाटन से बलकरण अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा, चटौदा सारागांव से सुजान वर्मा, सुहाद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। पथरिया भरेवा छत्तीसगढ़ से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नुमेश नेहा और वान्या सिंगरौल। जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, चांदनी नाज और विजय कुमार विजय।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई, यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की, अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से इस वक्त सुन रहे हैं फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। मैं हूं आज इस कार्यक्रम में आपके साथ, आपकी फरमाइशों के साथ शबनम।

साथ ही फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। मजरू के लिखे इस गीत के लिए संगीत दिया था नौशाद ने। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे वर्मा मलिक का लिखा फिल्म वारिस से ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की और इन दोनों ही गीतों की मिली जुली फरमाइश कुछ इस तरह है। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक, बेमितरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा, चारमीनार चौक गंडरी पंडरिया से दरियानामल अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी, झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश कमल, सेतपाल भूमिका और सुशीला, यहीं से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंदर सेन और खुशी रौनक सेन, दतरंगी छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा, गुलाब दास, हरमिंदर सिंह, बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन गायत्री, ढूमने वैष्णवी, चंचल अर्जुन और धीरज।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया। कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
3: आकाशवाणी अंबिकापुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। मैं हूं आज के इस कार्यक्रम में आपकी फरमाइशों के साथ शबनम।

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म तुमसे अच्छा कौन है से ये गीत। शब्द रचना थी हसरत जयपुरी की, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम आपकी पसंद में अब आप सुनेंगे आनंद बख्शी का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया फिल्म आमने सामने का ये गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की और इन दोनों ही गीतों की मिली जुली फरमाइश कुछ इस तरह है। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। बेरड़ी से हुकुम करमकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु करमकर। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजभिये। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और पूरा बजाज परिवार। वरुड़ जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया और मिलिंद। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले और आरती जोंदले संग पूरा जोंदले परिवार।

फिल्म आमने सामने का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। कार्यक्रम आपकी पसंद के आखिर में लीजिए सुनिए फिल्म उपकार से ये गीत। गुलशन बावरा के बोल हैं, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, आवाज लता मंगेशकर की और फरमाइश आप सभी श्रोताओं की। जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा सुजाता और सुनील पोहरकार। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म उपकार से ये गीत।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म उपकार के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। 11:55 होने वाले हैं, प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। ये रायपुर केंद्र है, दिन के 11:55 हुए हैं, अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुआ नया शिक्षा सत्र, स्कूलों में शिक्षकों ने विद्यार्थियों का तिलक लगाकर किया स्वागत। यूपीएससी ने घोषित किए इस वर्ष के सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम। और सक्ती जिले में एसीबी ने रिश्वत लेते जनपद पंचायत सीओ सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल गए हैं। इस दौरान आज विभिन्न स्कूलों में शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शाला प्रवेशोत्सव के दौरान स्कूल पहुंचने वाले नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर 27 जून तक आयोजित होने वाले शाला प्रवेशोत्सव में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली दर में 30 पैसे प्रति यूनिट से 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की है। इस तरह से आयोग ने बिजली दरों में 6.23% की औसत वृद्धि की है। वहीं गैर घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली दरों में 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। कृषि पंपों के लिए विद्युत की दरों में 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। वहीं गैर सब्सिडी वाले कृषि पंप कनेक्शनों को ऊर्जा प्रभार में दी जा रही छूट को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। बिजली की बढ़ी हुई दरें प्रदेश में 1 जुलाई से प्रभावशील होंगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने बताया है कि 1000 से अधिक रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया गया है।

0: है। यूपीएससी ने उम्मीदवारों को यह भी बताया है कि उनके अंक, कट ऑफ अंक और उत्तर सूची अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से प्रारंभिक परीक्षा परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी शासकीय और अशासकीय कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। यह प्रवेश प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होगी। छात्रों को आवेदन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल पर करना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा सभी महाविद्यालयों को उनके यहाँ की आवेदित छात्र छात्राओं की सूची प्रदान की जाएगी। महाविद्यालय प्राप्त सूची में पात्र छात्र छात्राओं की गुणात्मक क्रम में मेरिट सूची तैयार कर प्रवेश मार्गदर्शिका के अनुसार प्रवेश देंगे। पहली मेरिट लिस्ट 27 जून को, दूसरी मेरिट लिस्ट 11 जुलाई को और तीसरी मेरिट लिस्ट 17 जुलाई को जारी की जाएगी। सकती जिले में एसीबी बिलासपुर की टीम ने रिश्वत लेते सकती जनपद पंचायत के सीओ निखिल कश्यप, लिपिक अविनाश ठाकुर और भृत्य लक्षण भानु को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर 1,00,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। बताया गया है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत लिमतरा पंचायत के निर्माण कार्यों का चेक जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। बस्तर क्षेत्र में सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर लोक निर्माण विभाग ने 2 ठेकेदारों का पंजीयन 2 वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है, जबकि 8 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में इस शैक्षणिक सत्र के लिए सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। और कबीरधाम जिले के 35 ग्रामीण महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है। अब ये महिलाएं गांव में सौर उपकरणों की स्थापना, संचालन और मरम्मत का कार्य करेंगी। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 14वें चरण की शुरुआत 15 जून से हो गई है। इस बार बस्तर संभाग के 7 जिलों बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और कोंडागांव के साथ ही गरियाबंद, कबीरधाम और खैरागढ़ छुईगंज गंडई जिले के संवेदनशील गांव में भी अभियान संचालित किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुआ नया शिक्षा सत्र। स्कूलों में शिक्षकों ने विद्यार्थियों का तिलक लगाकर किया स्वागत। यूपीएससी ने घोषित किए इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम। और सकती जिले में एसीबी ने रिश्वत लेते जनपद पंचायत सीओ सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी और सीआईईटी द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
3: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
3: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
1: आपका

0: बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
1: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
0: और कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
1: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
1: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
0: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
1: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
0: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
1: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
0: श्रोताओं, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी आपको बताते हैं, तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें तो, प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फुमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा, कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं? जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरण की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरण कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरण भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरण यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुंगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी

0: ही लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर दें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों।
1: साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
2: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
2: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
3: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
4: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
3: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
4: यस।
2: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
2: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
5: सू
3: जी,
5: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
3: जी हाँ।
5: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
3: जी डॉक्टर साहब।
5: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
3: मैं पूछती हूँ।
1: दूसरे दिन सू ने

0: गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
1: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
2: 15, 14
1: क्या?
0: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
2: 13, 12, 11 ओह
1: जॉन्सी,
2: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। सू
1: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
2: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए।
1: क्या कम हो गए हैं?
2: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
0: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
2: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
3: 6, now it's 6, 5, 4 ओह
2: जॉन्सी, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
3: Only 4
2: मेरी तरफ देखो
3: सू, only 4 ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
2: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
3: 3 पत्तियां।
2: पत्तियां?
3: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू,
2: हाँ
3: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है,
2: क्या लगता है?
3: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
2: क्या जॉन्सी?
3: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
2: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
3: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
2: हाँ
3: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
2: ओ जॉन्सी,
0: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
1: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
0: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
1: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
0: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुड्ढा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
1: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में

0: से गिना।
1: टू, ओह, अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
2: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
3: जोनसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
2: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
0: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉनसी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,

0: एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
1: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
2: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
0: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने सू से कहा,
1: सू, मेरी दोस्त।
3: हाँ जॉन्सी।
1: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
2: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
1: सू।
3: हाँ जॉन्सी।
1: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
3: हाँ बिल्कुल,
1: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
3: बिल्कुल जॉन्सी।
1: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
3: पत्ता?
1: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
3: हाँ, हाँ, मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
1: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
3: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
1: हाँ,
0: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
0: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
3: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
1: बेहतर।
3: ये लो, कॉफी पियो।
1: थैंक यू
3: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
1: क्या हुआ?
3: वो मिस्टर बेरमन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।

0: कौन बैटमैन? वही बूढ़े कलाकार?
1: हाँ।
0: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
1: हाँ वही।
0: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
1: हाँ वही मिस्टर बैटमैन।
0: ओह गॉड,
2: उनकी हालत दरअसल उसे बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉनसी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
0: क्या?
2: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए पर वो आखिरी पत्ता
0: क्यों नहीं गिरा?
2: हाँ,
0: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
3: जॉनसी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
2: जॉनसी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बैटमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंच ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे।
0: ओह,
2: जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
0: पेंटिंग?
2: हाँ।
0: कैसी पेंटिंग?
2: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बैटमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
0: ओह, तो वो पेंटिंग है?
2: हाँ।
0: असली पत्ता नहीं है?
2: नहीं।
0: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
2: हाँ जॉनसी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
0: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा और सू, उन्होंने बना दिया।
2: हाँ जॉनसी,
0: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
2: हाँ, उन्होंने बना दिया।
0: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
2: हाँ
0: मास्टरपीस।
2: हाँ
0: मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
4: डबडबाई आंखों से जॉनसी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
3: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉनसी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हों।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT और CIET द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है।

मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं और अब पेश है एक ही शब्द पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन।

चयन सुन रहे सभी श्रोताओं को नमस्कार आदाब। आज शबनम की ओर से। श्रोताओं, आप सोच रहे होंगे कि आज के चयन में हमने कौन सा खास शब्द चुना है, तो हम आपको बता दें कि आज का खास शब्द है पंछी। जी हाँ, पंछी जिन्हें आज़ादी, उम्मीद और जिंदगी का खूबसूरत पैगाम भी हम समझ सकते हैं। पंछी कुदरत की सबसे दिलकश नेमतों में से एक हैं। उनकी चहचहाहट एक ऐसी मिठास और ताजगी से हमें रूबरू कराती है जो उदास दिल को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। जब सुबह की नर्म धूप धरती पर उतरती है और पेड़ों की डालियों पर बैठे पंछी अपने सुर छेड़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे फिजा में कोई अनदेखा संगीत घुल गया हो। पंछी हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाते हैं, उड़ना। केवल आसमान में नहीं, बल्कि अपने ख्वाबों में, अपने हौसलों में और अपनी सोच में। कुछ और भी बातें होंगी पंछियों की, सुनते चलते हैं प्यारे प्यारे गीत।

पंछी ये नहीं सोचते कि रास्ता कितना लंबा है, वे बस अपने पंखों पर भरोसा करते हैं और उड़ पड़ते हैं। यही भरोसा इंसान को भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए। पंछियों की दुनिया बड़ी दिलचस्प होती है श्रोताओं, न उन्हें दौलत जमा करने की फ़िक्र होती है, न शोहरत की चाहत। उनका सबसे बड़ा ख़जाना उनका सुकून और उनकी आज़ादी होती है। वे हर मौसम को कबूल करते हैं, धूप भी, बारिश भी, आंधी भी और बहार भी। शायद इसी वजह से वे हमें सब्र और हालात से समझौता नहीं बल्कि उनका सामना करना सिखाते हैं। एक पंछी जब शाम को दिन भर की उड़ान के बाद अपने घोंसले में लौटता है तो वो हमें ये एहसास दिलाता है कि दुनिया की सारी उड़ानों के बाद भी अपना ठिकाना, अपना घर और अपने लोग सबसे कीमती होते हैं।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप इस वक्त सुन रहे हैं एक ही शब्द पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 12:41 हुए हैं और ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर हाजिर हूं मैं शबनम। आज के चयन कार्यक्रम का खास शब्द हमने चुना है पंछी। जी हाँ, पंछियों को देख यानी उड़ता देख कई बार ये भी लगता है कि जैसे वो कह रहे हों ऊंचा उड़ो मगर अपनी पहचान मत भूलो, रास्ते मुश्किल हों तो हिम्मत बढ़ाओ कदम मत रोको। आसमान सबका है, बस उड़ने का हौसला होना चाहिए और अगर दिल में उम्मीद जिंदा है तो हर सुबह एक नई शुरुआत की जा सकती है। वे बिना कुछ कहे बहुत कुछ सिखा जाते हैं, उनकी उड़ान में आज़ादी की तासीर होती है, उनके कलरव में मोहब्बत की मिठास होती है और उनकी मौजूदगी में कुदरत की खूबसूरती झलकती है। पंछी हमें बताते हैं कि जिंदगी को शिकायतों में नहीं बल्कि शुक्रगुजारी में जीना चाहिए। आसमान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पंछी कभी उड़ना नहीं

पंछी केवल प्रकृति की शोभा नहीं है बल्कि खुले आसमान की आज़ादी का जीता जागता प्रतीक हैं। लेकिन आज का दौर उनके लिए दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। एक तरफ बढ़ता प्रदूषण, कटते हुए पेड़ और सिकुड़ते हुए जंगल उनके अस्तित्व पर संकट खड़ा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंसान का स्वार्थ भी उनकी स्वतंत्रता छीन रहा है। अक्सर जब कोई व्यक्ति किसी रंग बिरंगे सुंदर और प्यारे से पंछी को देखता है तो उसे अपने घर में रखने की इच्छा करता है। यहीं से शुरू होती है उस मासूम परिंदे को पिंजरे में कैद करने की कहानी। देखने में भले ही ये प्रेम लगे लेकिन वास्तव में ये उसकी सबसे बड़ी स्वतंत्रता का हरण है। जरा सोचिए, यदि किसी मनुष्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाए, उसके आने जाने की स्वतंत्रता छीन ली जाए, उसके अपने लोगों से मिलने का अधिकार समाप्त कर दिया जाए, तो वो कितना व्यथित और बेचैन हो जाएगा। ठीक यही पीड़ा तो एक पंछी में भी होती है जब उसे खुले आसमान से उठाकर लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। पंछी बोल नहीं सकते, अपनी व्यथा शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन

उसकी आँखें, उसकी बेचैनी, उसके फड़फड़ाते पंख और बार बार पिंजरे की सलाखों से टकराने की कोशिशें उसकी मौन वेदना को स्पष्ट कर देती हैं। वो हमें बताना चाहते हैं कि उसका घर कोई पिंजरा नहीं बल्कि नीला आसमान है।

सच्चा प्रेम किसी को बांधना नहीं बल्कि उसे उसकी स्वाभाविक स्वतंत्रता में प्रसन्न देखना होता है। यदि हम वास्तव में पक्षियों से प्रेम करते हैं तो उन्हें पिंजरों में कैद करने की बजाय उनके लिए सुरक्षित वातावरण बनाना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, उनके लिए जल और दाने की व्यवस्था करनी चाहिए और उनके प्राकृतिक जीवन का सम्मान करना चाहिए।

पंछी मोहब्बत का पैगाम भी देते हैं। वे न मज़हब जानते हैं, न ज़ुबान और न सरहदें। उनका रिश्ता सिर्फ कुदरत से होता है। वे हर बाग, हर पेड़ और हर मौसम को अपना बना लेते हैं।

तो श्रोताओं, पंछियों को नील गगन में बिल्कुल खुले आकाश में यूं ही उड़ने दीजिए, उन्हें रोकिए मत, उन्हें टोकिए मत, उनके लिए जंगल बचाइए, उनके लिए पेड़ लगाइए, तो ही बच सकते हैं हमारे ये प्यारे प्यारे पंछी। इसी के साथ आज का चयन कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज के चयन कार्यक्रम में खास शब्द था पंछी। आपने जिन फिल्मों के गीत सुने वे थे चोरी चोरी, तपस्या, अनाड़ी, माया, राहगीर और रिफ्यूजी। आवाज़ें रहीं मन्ना डे, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, आरती मुखर्जी, हेमंत कुमार, सुलक्षणा पंडित, सोनू निगम और अलका याग्निक की। और आज का ये चयन कार्यक्रम आपके लिए पेश किया मैंने, यानी शबनम ने। ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का ये चयन कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे एक ही शब्द पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन का 1 बजने को है समाचार, कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस बीच श्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। उधर फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी

0: नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर भी रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है खेती की बात का पुनः प्रसारण। सामयिक जानकारी का विषय है कीटनाशी दवा और सावधानी।
2: किसान भाइयों, हम फसलों में कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। यदि हम अच्छे से उपयोग करें तो यह हमारे लिए लाभदायक है। अगर कीटनाशक का असावधानी पूर्वक उपयोग किया गया तो वह बहुत ही खतरनाक होता है। कीटनाशक का उपयोग सावधानी पूर्वक किया जाए तो उपज में बढ़ोतरी होती है। सावधानी पूर्वक उपयोग के संबंधित कुछ बातें हैं, जैसे उचित चुनाव, भंडारण, मिलाने का तरीका, उपयोग आदि। किसान भाइयों, सावधानियों में सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है सही कीटनाशक का चुनाव। जब तक कीट आर्थिक क्षति स्तर तक न पहुंच जाए और कीट की पहचान न हो जाए तब तक इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। उसी कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए जो विशेषज्ञ द्वारा बताया गया हो। कीटनाशक लेते समय हमको मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिए, जो कि जमता ना हो, मित्र कीटों को नुकसान न पहुँचाता हो, प्रतिरोधक पैदा न करता हो और गुणवत्ताशील पैक हो और महंगा भी न हो। किसान भाइयों, कीटनाशक के उचित रखरखाव में सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि कीटनाशक भी सुरक्षित होना चाहिए। और इससे संबंधित यदि हम बात करें भंडारण की, तो इसको रसोई घर में नहीं रखना चाहिए, बच्चों एवं आग से दूर रखना चाहिए, सुरक्षित छायादार और हवादार स्थान पर रखना चाहिए, जितना ज़रूरत हो उतना ही दुकान से लाना चाहिए और उसका जल्द उपयोग करना चाहिए। खाने की वस्तु के साथ नहीं रखना चाहिए। परिवार के सभी लोगों को उसकी जानकारी दे देनी चाहिए। समय समय पर उसका निरीक्षण करना चाहिए। पहले लाई गई दवाओं का उपयोग पहले करना चाहिए। सुनिश्चित कर लें कि बचा हुआ दवा उसी डब्बे में हो और अच्छी तरह से बंद हो। किसान भाइयों, सही दवाओं को खरीदने और उनके मिलाने की विधि में भी हमको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। दवाओं में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। कीटनाशक की निर्मित तिथि और अंतिम तिथि को ध्यान से देखना चाहिए। उपयोग से पहले स्वच्छ, उपयुक्त, सुरक्षायुक्त कपड़े पहनना चाहिए। तीव्र विषाक्त दवाओं को अकेले न डालें, बच्चों को उपयोग न करने दें। उपयोग के बाद दवाओं को खुला ना छोड़ें। दवाओं को बाहर खुले और हवादार स्थान में मिलाएं। नाप तौल कर ही दवा मिलाएं और बनाएं। काम करने वाले स्थान के पास खाने वाली चीज़ों

0: को न रखें न छुएं। दवाओं के उपयोग करते समय खाना पीना, धूम्रपान, चेहरे या आँखों को मलना सख्त मना है। स्प्रेयर में कभी भी मुंह से दवाओं को ना खींचें। जब भी आप दवाओं का छिड़काव कर रहे हों तो हवाएं पीछे से आगे की ओर आनी चाहिए। स्प्रेयर को अच्छी तरह से देख लें कि कहीं से रिसाव तो नहीं हो रहा है। अगर गलती से दवा शरीर पर लग गई है तो तुरंत पानी से धो लेना चाहिए। उपयोग के बाद यंत्रों को सफाई से धोना चाहिए। बचे हुए दवाओं को सावधानीपूर्वक सुरक्षित स्थान पर डालना चाहिए। इन सब से बचने के लिए जितना उपयोग करना हो उतनी ही दवा लेनी चाहिए, जो एक दिन में खत्म हो जाए और बर्बादी से बच जाए। किसान भाइयों, उपयोग के बाद स्प्रेयर को उल्टा करके रख देना चाहिए जिससे दवा बाहर निकल जाए। उसके बाद 1/3 भाग पानी में पानी भरकर ढक्कन लगाकर हिलाना चाहिए। किसान भाई, कभी कभी हमारे साथ घटना भी हो जाती है। अगर मरीज इसको सूंघने या लेने से बेहोश हो रहा है तो उसको जल्द से जल्द 1-2 लीटर नमक का घोल देकर उसको उल्टी करवाना चाहिए। जल्द से जल्द त्वचा को साबुन पानी से धोना चाहिए। बालों एवं उंगलियों के बीच धोते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आंखों में चला गया हो तो तुरंत साफ पानी से धोना चाहिए। सबसे पहले मरीज को खुले हवादार स्थान में लाना चाहिए। अगर शरीर जैसे गले, सर, सीना या पेट सख्त कपड़ा पहना हो तो उसे तुरंत ढीला करना चाहिए। चलने के लिए मना करना चाहिए। अगर सांस लेने में कठिनाई हो तो कृत्रिम सांस देना चाहिए। मरीज के कपड़े अलग करके नहलाना चाहिए। मरीज को शांत एवं आराम एवं गर्म करके रखना चाहिए। उपचार करने से पहले चिकित्सक को उपयोग करने वाली कीटनाशक दवाओं की पूरी जानकारी देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, इस तरह से हम दवाओं का सावधानीपूर्वक उपयोग करेंगे तो हमारे साथ कोई घटना नहीं होगी और वो हमारे लिए सुरक्षित होगा और लाभदायक होगा।
1: कीटनाशी दवा और सावधानी, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे खेती की बात। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:10 हुए हैं। बहनों के लिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम घर आंगन।

नमस्कार बहनों, घर आंगन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी रितु सिंह। बहनों, आज का दौर तकनीक का दौर है। हम अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी वस्तुओं को देखते हैं और ऐसी ही एक वस्तु है मोबाइल, यानी कि हमारा स्मार्टफोन। बहनों, आज के युग में ये मोबाइल हम सभी की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। जानकारी से लेकर मनोरंजन तक सब कुछ एक छोटी सी स्क्रीन में सिमट गया है। बहनों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस चमकती स्क्रीन के बीच कहीं किताबों की खुशबू, पन्नों की वो सरसराहट और पढ़ने का आनंद धीरे धीरे हमसे कहीं दूर होता जा रहा है। एक समय था बहनों, जब दादी नानी की कहानियाँ, रामायण और महाभारत के प्रसंग, प्रेरणादायक पुस्तकें और पत्रिकाएं परिवार को जोड़ने का काम करती थीं। बच्चे छुट्टियों में कहानी की किताबें पढ़ते, महिलाएं धार्मिक और ज्ञानवर्धक साहित्य से जुड़ी रहती। लेकिन आज कई घरों में सबके हाथों में मोबाइल तो है, पर एक दूसरे के लिए समय नहीं है। बहनों, मोबाइल हमें कुछ पल का मनोरंजन तो दे सकता है, लेकिन किताबें हमें सोचने की शक्ति देती हैं। मोबाइल पर घंटों का समय कब गुजर जाता है पता नहीं चलता, लेकिन एक अच्छी किताब कुछ समय में ही हमें जीवन भर के लिए अच्छे विचारों का खजाना दे जाती है। बहनों, आज के इस दौर में जबकि बच्चे बड़े सभी मोबाइल पर ही अपना अधिकतम समय बिताते हैं, तब ऐसे में बदलाव के लिए हम महिलाओं की विशेष भूमिका बनती है। यदि घर परिवार की स्त्री पुस्तक पढ़ने की आदत अपनाती है तो बच्चे भी उसी राह पर चलना सीख सकते हैं। सोने से पहले आधा घंटा कहानी या प्रेरणादायक पुस्तक पढ़ने की आदत पूरे परिवार में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। बहनों, किताबें केवल अक्षरों का संग्रह मात्र नहीं, बल्कि वे हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। जब मन उदास हो, जब जीवन में उलझने हो, तब किसी महान लेखक के विचार हमें नई उम्मीद और नई राह दे सकते हैं। बहनों, एक मोबाइल की बैटरी और

इंटरनेट का नेटवर्क दोनों ही चार्जेबल हैं, उन्हें समय समय पर चार्ज करना पड़ता है। फिर भी गारंटी नहीं होती कि इनका साथ कब तक उपलब्ध रहेगा, लेकिन एक किताब और उसमें लिखी ज्ञान और संस्कार की बातें जीवन भर हमारा साथ निभाते हैं। तो बहनों, आइए आज ही पुस्तकों से जुड़ने के इस विचार को अपने जीवन की आदत बनाएं। मोबाइल का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करें। हर दिन कुछ समय किताबों के साथ बिताएं। अपने बच्चों व मित्रों को किताबें उपहार में दें। घर में एक छोटा सा ही सही पर पुस्तक का कोना बनाएं और पढ़ने की संस्कृति को फिर से जीवंत करें। और कहा भी गया है बहनों, अच्छी किताबें सबसे अच्छे मित्र होती हैं, जो बिना किसी मांग के हमें जीवन जीने की कला सिखा देती हैं। और बहनों, इस सामयिक चर्चा के बाद अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारे घर आंगन मेल की फरमाइश का पहला गीत सुन लेते हैं। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से भारती वर्मा, शकुन वर्मा, रुक्मणी वर्मा, रजनी वर्मा, प्रतिमा रानी वर्मा, द्रौपदी वर्मा, धनेश्वरी वर्मा, कुमारी पायल वर्मा, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

बहनों, समय के साथ बदलते समाज की तस्वीर और उसमें महिलाओं की प्रेरणादायक उपलब्धियों का प्रतिबिंब लेकर प्रस्तुत है आज का आईना क्रम, जो है समसामयिक सूचनाओं पर आधारित।

डा की विभा शर्मा की। अपनी शिक्षा और बच्चों की परवरिश के संबंध में अपने विचार साझा करते हुए आज नोएडा की विभा शर्मा देश भर की लाखों माताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। विभा ने 57 वर्ष की आयु में अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया। विभा ने चाइल्ड डेवलपमेंट में डिग्री ली थी और इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन 19 वर्ष की आयु में उनके पिता की मृत्यु के साथ ही उनका सपना पीछे छूट गया। नौकरी तो उन्होंने शुरू की, लेकिन शादी व संयुक्त परिवार की जिम्मेदारियों में यह भी नहीं हो सका। बाद में यूएस से चाइल्ड डेवलपमेंट में आगे की पढ़ाई की और अब विभा पेरेंट्स को ये सिखाती हैं कि कैसे बच्चों के गुस्से को समझा जाए, कैसे संवादों से दूरी कम की जाए और बच्चों को सही राह दिखाई जाए। अब आईना क्रम में बात बच्चों को पर्यावरण से जोड़ने के लिए ट्रेनिंग देने वाले गुरुग्राम की ज्योति राघवन की। अरावली पर्वत श्रृंखला में बढ़ते खनन को रोकने के साथ ही गुरुग्राम की ज्योति राघवन बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का भी प्रयास कर रही हैं। उन्होंने एक ऐसा स्कूल शुरू किया है जिसमें बच्चे न केवल जैविक तरीके से फल और सब्जियां उगाते हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण से भी सक्रिय रूप से जुड़ते हैं। 48 वर्षीय ज्योति अब तक अपने स्कूल में 500 से अधिक बच्चों को पर्यावरणीय गतिविधियों से परिचित करा चुकी हैं। आईना क्रम के आखिर में अब बात पश्चिम बंगाल में बाघ विधवाओं की जिंदगी सुधार रही मुंबई की नीति गोयल की। पश्चिम बंगाल स्थित सुंदरवन, जो अपनी विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और बाघों के कारण जाना जाता है, वहीं की सबसे बड़ी त्रासदी बाघों के हमले की है। बाघों के हमले के कारण मृत व्यक्तियों की पत्नियों को बाघ विधवा कहा जाता है। इन महिलाओं को यहाँ मानसिक, आर्थिक और सामाजिक प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं बाघ विधवाओं की जिंदगी को संवारने के कार्य में लगी हैं मुंबई की नीति गोयल। 49 वर्षीय नीति इन महिलाओं को मछली पालन व बकरी पालन से रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। नीति की इस कोशिश से 5 साल में करीब 500 से अधिक महिलाएं सशक्त बन चुकी हैं। आज के आईना क्रम में शामिल इन सभी महिलाओं को इनकी उपलब्धियों के लिए ढेरों बधाइयां एवं आगामी जीवन के लिए शुभकामनाएं। बहनों, महिलाओं की सफलताएं केवल उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि पूरे समाज की प्रकृति का प्रतीक हैं और साथ ही सुदृढ़ समाज का आईना भी। आज के आईना क्रम में बस इतना ही। और बहनों, समसामयिक सूचनाओं पर आधारित आईना क्रम के बाद अब कार्यक्रम में समय है कि हम फिर से अपने घर आंगन मेल और पत्रों के क्रम की ओर चलें। तो आइए देखते हैं अगले गीत के लिए फरमाइश हमारे किन श्रोता साथियों की है। अगले गीत की फरमाइश है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा एवं पूरे वर्मा परिवार की। इसी गीत के लिए फरमाइश है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से श्रीमती अनीता बाई खडसे और प्रियंका खडसे की। साथ ही में इन्होंने स्त्री के मन के भाव को बतलाती हुई कुछ लाइनें भी लिख भेजी हैं। स्त्री सहारा चाहती है इसलिए नहीं कि वो चल नहीं सकती। स्त्री तोहफे चाहती है इसलिए नहीं कि वो कमाकर खरीद नहीं सकती। स्त्री भारी कामों में मदद चाहती है इसलिए नहीं कि वो उन्हें करने की क्षमता नहीं रखती। स्त्री तुम्हारी आंखों में प्रेम चाहती है इसलिए नहीं कि प्रेम से देखने वाली आंखों की कमी रखती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है और प्यार तो बस परवाह चाहता है। इन्हीं सुंदर लाइनों के साथ आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

घर आंगन मेल में फरमाइशों के क्रम में अगली फरमाइश आप सभी की है। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन, ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिकराम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति, आप सभी ने कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली दीदियों को नमस्कार कहा है। साथ ही में लिख भेजा है कि घर आंगन नियमित रूप से सुनते हैं और फोन इन बात करें, गीत सुने, व्यंजन विधियां, आईना, कविता पाठ, मेल, फरमाइश सभी इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। इन्हीं के साथ और भी फरमाइश करता है। ग्राम कालापारा सरगुजा से हैं रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े। आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

आज के घर आंगन मेल की अंतिम फरमाइश आप सभी श्रोता साथियों की है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से करुणा वर्मा, प्रियंका बंछोर, दिनेश वर्मा, कोहका भिलाई से हैं उत्तम सिंह जंघेल, मूरस जंघेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। इन्होंने लिखा है, हर बूंद में जीवन है, हर वर्षा में आशा है। इसी गीत को सुनना चाहा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और आदित्य जंघेल, साथ में है अंजलि जंघेल। आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

तो बहनों, ये था हमारा आज का घर आंगन मेल का क्रम, और इसी के साथ हमारा आज का घर आंगन कार्यक्रम का ये अंक यहीं पर पूरा होता है। और बहनों, आप भी हमारे घर आंगन मेल में हिस्सा ले सकती हैं, और इसके लिए आप हमें मेल करें gharanganair@gmail.com पर। साथ ही हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारे कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम घर आंगन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अंबिकापुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 27 और पिन कोड है 49700। तो बहनों, हमारा आज का ये घर आंगन कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, हमें मेल करें, पत्र लिखें। और अब आज के घर आंगन कार्यक्रम से मुझे दीजिए अनुमति। आप सभी को ऋतु सिंह का नमस्कार।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बहनें सुन रही थी अभी अपना कार्यक्रम घर आंगन, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है।

मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:40 हुए हैं और अब पेश है फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म अनुपमा में। कैफी आजमी के शब्द थे, संगीत दिया था हेमंत कुमार ने। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से, और आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शबनम। साथियों, ईमेल की गूंज सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक ऐसा पुल है जहां डिजिटल दुनिया की रफ्तार और दिल के जज्बात एक साथ मिलते हैं। जब आप अपनी पसंद के गीतों के लिए हमें मेल करते हैं तो वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट

ये ले, इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित बेबी गर्वी और मुन्ना हिमांश, बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शाबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबीहा, मिखाइल, जैनब और इनके परिवार के सभी सदस्य, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, नागपुर से विठल जाधव, अनुसुईया जाधव, पवन राज और इनके परिवार के सभी सदस्य, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली क्षत्रिय, कर्मा चौक लोहारेडी जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, खुशांत और निशांत साहू, साथ ही गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु खुराना। कार्यक्रम ईमेल की गूंज का अगला गीत है फिल्म हंसते जख्म से। कैफी आजमी के बोल हैं, संगीत मदन मोहन का, आवाज़ लता मंगेशकर की है।

हंसते जख्म। इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत के लिए मेल मिले आप सभी से, महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेल साय मरकाम, नयन प्रकाश मरकाम, शारदा लकी, सीताराम सितंबर, अमरनाथ मंगलमूर्ति, रोशन राजवाड़े, पांडे राम राजवाड़े, नूर साय राजवाड़े, हीरालाल प्रजापति, कविता मरकाम और आरती मरकाम, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह और कुशल शाह, आप हैं पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सिटी दीवाना, बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, आप हैं ग्राम बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से, दतरंगी से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप, लछनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु ताशु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद, बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चना गुड़ाने, प्रणय प्रसिद्धि और हीरामन शिंदे, वी पूनम नायडू, साजन के मास्टर, शिवांशु, रेशु, दुर्गेश, अभिषेक नायडू, आप हैं धनौरा बस्तर छत्तीसगढ़ से। कार्यक्रम ईमेल की गूंज इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से।

किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म अमर प्रेम में। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की, संगीत दिया था राहुल देव बर्मन ने, और इस गीत के लिए मेल मिले आप सभी से पश्चिम बंगाल रानीगंज से रेहान और करणदीप, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां आप हैं, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे संदीप बाठे, लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर राही, सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, अर्जुन और टुकटुक, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू, हरियाणा रोहतक से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा और साहिल कांगड़ा, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, काफिर भाई,

सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेभवानी, संगीता आकाश आयुषी सागर यशी हनी पूजा सीता और नेभवानी परिवार के सभी सदस्य, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल और चेतन मनवर, साथ ही रोशनी और बेबी प्रियांशी। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से, और अब आप सुनेंगे फिल्म मधुमती से ये गीत। शैलेंद्र के बोल हैं, संगीत सलिल चौधरी का, आवाज लता मंगेशकर की, और इस गीत के लिए फरमाइशें मिली आप सभी से। बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल, आप हैं ग्राम बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती, सोनल, बेबी सिया, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े। दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, आप हैं बलौदा छत्तीसगढ़ से। सनावत से शेख मूसा और मोहसिन। तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार और सुजाता पोहरकार। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म मधुमती से ये गीत।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज। ईमेल सिर्फ एक तकनीक नहीं है, बल्कि ये एक मॉडर्न दौर की वो खिड़की है साथियों, जिससे आप अपने नाम के साथ जज्बात भी हम तक पहुंचा देते हैं। पहले डाकिया चिट्ठियां लाता था और आज इंटरनेट की लहरों पर सवार होकर आपकी खुशियां हमारे इनबॉक्स तक पहुंचती हैं और आप सुनते हैं अपनी ही फरमाइशों पर आधारित बेहद प्यारे प्यारे कार्यक्रम। और ये जो कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं वो है ईमेल की गूंज। आपके साथ हूँ मैं, आपकी फरमाइशों के साथ हूँ मैं, शबनम। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म जब जब फूल खिले से, आनंद बख्शी की शब्द रचना है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का और आवाज़ है लता मंगेशकर की, पसंद आप सभी श्रोताओं की। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, पूजा परिहार। परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश, प्रीतेश और पूरा संघई परिवार। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, आडार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी वर्मा। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। मीरा सिंह, ज्योति सिंह, काजल सिंह आप हैं समस्तीपुर बिहार से। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीमुन्ना और दानिश आसिफ शेख। अकोला महाराष्ट्र से रमेश कामले, देवयानी और गणेश कामले। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंदेल दास देवांगन, रीता दास, जतिन कुमार, चंद्रावती सिंह मरावी, नूर साय राजवाड़े, समीर सिंह और सोनू सिंह मरावी। मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार, डिकेश साहू रसेड़ा छत्तीसगढ़ से। दिल्ली से स्वीटी और प्रतिभा। ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, राम शरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता और इनके परिवार के सभी सदस्य। सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सुमार साय, मेर साय, श्री भगत राम, खिलावन सिंह पैगरा। और मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी और ऋतिक संग बलवीर सिंह। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म जब जब फूल खिले से ये गीत, आवाज़ है लता मंगेशकर की।

0: तो श्रोताओं, आपने आज की ईमेल की गूंज कार्यक्रम में अपनी फरमाइशों के जो गीत सुने वो आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। अजीब जादू है ना इन ईमेल्स में, शहर भले ही दूर हों पर शब्द हमें करीब ले आते हैं। आप यूं ही हमें अपनी फरमाइशें भेजते रहिए, हम आपको आपकी फरमाइशों से रूबरू कराएंगे, सुनाते रहेंगे, क्योंकि ईमेल की गूंज कार्यक्रम आप ही से शुरू होकर आप ही पर ख़त्म होता है। तो कैसा लगा आज का ये कार्यक्रम आपको, ज़रूर हमें बताइएगा और सुनते रहिए आकाशवाणी अंबिकापुर।
1: अरे यार, ये रेडियो को क्या हुआ, आवाज साफ ही नहीं आ रही, ये खर खर की आवाज कैसी है?
2: अरे बुद्धू, एंटीना नहीं अपना अंदाज बदलो। अब अंबिकापुर रेडियो पुरानी यादों से निकलकर आपके कानों में जादू करने आ गया है।
1: मतलब
2: अब आकाशवाणी अंबिकापुर सुनिए 100.2 FM पर।
3: यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर।
0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। 2:15 होने वाले हैं। दोपहर समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय

0: चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। तीन दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
1: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
0: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
1: बिल्कुल जागृति, देखिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम।

0: सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं, तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
1: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
3: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
1: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधान

0: से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
2: UNSC reform would be grossly inadequate.
3: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
1: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। AIR चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम

0: फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हरा कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 2:30 हुए हैं और अब पेश है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मेहदी हसन की गाई इस गजल से।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे एक गीत, आवाज है सोनू निगम की।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: गैर फिल्मी गीतों और गजलों के कार्यक्रम गीत गंधा में अब आप सुनेंगे एक गजल। फनकार हैं गुलाम अली।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: गीत गंधा कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे एक गीत, कलाकार हैं अदनान सामी।

0: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जुड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।
2: गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे चंदन दास की आवाज में ये गजल।

0: अरे यार, ये रेडियो को क्या हुआ? आवाज साफ ही नहीं आ रही। ये खर खर की आवाज कैसी है?
1: अरे बुद्धू, एंटीना नहीं, अपना अंदाज बदलो। अब अंबिकापुर रेडियो पुरानी यादों से निकलकर आपके कानों में जादू करने आ गया है।
0: मतलब
1: अब आकाशवाणी अंबिकापुर सुनिए 100.2 FM पर।
2: यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे पंगा मत लेना मेरी जान।
0: अरे वाह, ये तो एकदम साफ है, जैसे कोई कान में गा रहा हो।
1: यही तो है FM 100.2 की स्टीरियो क्वालिटी। अब सुबह की भक्ति हो या शाम के गाने, आवाज मिलेगी बिल्कुल मक्खन जैसी साफ।
0: अच्छा, तो अभी ट्यून करता हूँ आकाशवाणी अंबिकापुर 100.2 FM। आवाज वही, अंदाज नया।
3: इसी के साथ गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं और मीडियम वेव पर सभा समापन से पूर्व आपको बता दें कि एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी दिल्ली से एफएम गोल्ड चैनल का प्रसारण जारी रहेगा। और मीडियम वेव पर सभा समापन से पूर्व हम आपको बता दें आज के शेष मुख्य आकर्षण। हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी संध्या 5 बजे, प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट के साथ। भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या आप सुनेंगे शाम 5:05 पर। युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा शाम 5:30 पर। विचार बिंदु का पुनः प्रसारण किया जाएगा शाम 6:05 पर। लोक गीतों के कार्यक्रम गोधुली में आज शाम 6:20 पर आप सुनेंगे राम भरोस और साथियों के गाए सरगुजिया लोकगीत और सुरेश राजवाड़े और साथियों के गाए कुछ और सरगुजिया लोकगीत। फिल्म संगीत का माधुरी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। सुगम संगीत का रजनीगंधा कार्यक्रम पेश करेंगे शाम 7:05 पर। किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल शाम 7:20 पर। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी में हेलो किसानवाणी आप सुनेंगे शाम 7:30 पर। सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश श्रोताओं की पसंद पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम पेश करेंगे रात 8 बजे। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम होगा रात 9:15 पर। मनी टॉक और मंथन ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे रात 9:30 पर। फिल्म संगीत का एक और फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज आपके लिए लेकर आएंगे रात 10 बजे। और फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन पेश करेंगे रात 10:30 पर। ये तो थे हमारे आज के शेष मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 3:02:30 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 बजे आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के ठीक 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा की शुरुआत करते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट के साथ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 67 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पिंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये दरहोरा, सेमई, करंजवार, खरसोता, परमेश्वरपुर, हरिहरपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये मिंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, भगवानपुर, नवापारा, जवाखाण, अखोरा, कुंदी कला, जामदोहर, सिधमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, लखनपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 16 है। ये सकालो, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, खलीबा, पड़ौली, किशुनपुर, जमीरा, डांडपारा, पटकुरा, दांतीढाब, घटगांव, बरवाली, कंडराजा, बरिमा, पेंट, घोड़ा घाट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चराईमारा, रानी कोम्बो, खड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, चट्टानपारा, साजापानी, कुदरा झरिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, कापू और बाकारुमा में हाथियों की कुल संख्या 100 है। ये लोटान, पुरुंगा, बनहर, सिंघीछा, बेहरामार, इंचपारा, कंचीरा, कोयलार, सागरपुर, सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, आमा टिकरा, नवापारा, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राट रोड, झिंगोल, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानक मार टाइगर रिजर्व के अचानक मार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरी, तालदादर, हरदी, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, तेंदु चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट,

0: में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़ अमलोर ताराजह डडई पानी बुडार सिंहार छिंदौला लूठापारा नारी पानी डूमर घाट कोदोमाली मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार
2: दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का यह अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सांधिकालीन भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में ये राम भजन, रचना है पंडित नरेंद्र शर्मा की।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आइए अब सुनते हैं रविंद्र रावल का लिखा यह साईं भजन अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: संदेश से पहले आपने पंडित किरण मिश्र का लिखा भजन सुना अनूप जलोटा की आवाज में। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये पारंपरिक हनुमान वंदना। स्वर है ए हरिहरन का।

ए हरिहरन और साथियों के गाए इस हनुमान वंदना के साथ ही आज की भजन संध्या अब समाप्त होती है। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

जो अपने डर से आगे बढ़ जाता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। स्वागत है आप सभी का युववाणी के हमारे आज के सत्र में। आज दिन है मंगलवार और आज के कार्यक्रमों को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त शोभा मनवानी। आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, अगर आज अचानक आपके बचपन का कोई गीत बज जाए, स्कूल की घंटी की आवाज़ सुनाई दे जाए या किसी

पुराने दोस्त का नाम आ जाए तो क्या होगा? एक पल में आप सालों पीछे चले जाएंगे। यही तो यादों की सबसे बड़ी खूबी है, समय आगे बढ़ता रहता है, लोग बदल जाते हैं, उम्र बढ़ती जाती है, लेकिन यादें कभी बूढ़ी नहीं होती। हमारे बचपन की शरारतें, स्कूल के दिन, दोस्तों के साथ बिताए पल, परिवार के साथ हंसी मजाक, त्योहारों की खुशियाँ, ये सब यादों के रूप में हमारे दिल में हमेशा रहते हैं। आज हम युवा मोबाइल, सोशल मीडिया और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वर्तमान को जीना भूल गए हैं। लेकिन याद रखिए, कल की यादें आज के पलों से बनती हैं। हम अक्सर देखते हैं कि बुजुर्ग अपने पुराने दिनों की बात बड़े प्यार से करते हैं। वे अपने बचपन, अपने संघर्ष और अपने अनुभवों को याद करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यादें उम्र के साथ और भी कीमती हो जाती हैं। लेकिन हर याद केवल खुशी नहीं देती, कुछ यादें हमें जीने के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। असफलताओं की याद हमें मजबूत बनाती है, संघर्षों की याद हमें मजबूत बनाती है, और सफलता की याद हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आज हम जो पल जी रहे हैं वही कल हमारी यादें बनेंगे। इसलिए अपने परिवार को समय दीजिए, रिश्तों को महत्व दीजिए और छोटी छोटी खुशियों का आनंद लीजिए। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि समय की घड़ी कभी नहीं रुकती, उम्र बढ़ती रहती है, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन यादें कभी बूढ़ी नहीं होती। आइए ऐसे पल जिए जैसे आने वाले वर्षों में जब हम उन्हें याद करें तो हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाए। उम्र बढ़ सकती है लेकिन यादों की चमक कभी कम नहीं होती। यादें ही वो खजाना है जो हर बीतते साल के साथ और भी अनमोल होता जाता है। इन्हीं विचारों के साथ पेश है ये गीत फिल्म तेरे नाम से, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। लिखा है समीर ने और संगीत है हिमेश रेशमिया का।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: इस प्यारे से गीत के बाद चलते हैं क्रम कैंपस में, जिसे लेकर आ रही है हमारी साथी सुमन ठाकुर।

0: स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आज के क्रम कैंपस में। दोस्तों, खेल सिर्फ जीतने का नाम नहीं बल्कि जुनून, मेहनत और मुस्कुराहट का भी नाम है। आज हम मौजूद हैं इंडोर स्टेडियम में, जहां युवा खिलाड़ी अपने सपनों को पंख दे रहे हैं। आइए कुछ खिलाड़ियों से करते हैं छोटी सी दिलचस्प बातचीत। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इनसे इनका पूरा परिचय।
1: मेरा नाम प्रसन्नजीत शाह है, मैं भगवानपुर का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ इंडोर बैडमिंटन कोर्ट में मैं बैडमिंटन खेलता हूँ।
0: तो प्रसन्नजीत, आप कब से ये खेल खेल रहे हैं?
1: ये मेरे को खेलते हुए अभी एक साल हो गया है, 2025 से।
0: 2025 से। तो प्रसन्नजीत, आपको बैडमिंटन के अलावा किस चीज में रुचि है?
1: बाकी मैं इसके अलावा क्रिकेट वगैरह भी खेलता हूँ, बास्केटबॉल भी खेलता हूँ, तो मैं बाकी और भी बहुत सारे खेल खेलता हूँ, जैसे बास्केटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ये सब, चेस वगैरह, तो सारे ही गेम्स खेलता हूँ।
0: तो आप सारे खेल को कैसे मैनेज करते हैं?
1: जैसे कि मैं सुबह उठ के जाता हूँ बास्केटबॉल खेलने, शाम को यहाँ बैडमिंटन खेलने आता हूँ और वीकेंड्स पे मैं क्रिकेट वगैरह खेलने जाता हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सारे खेल खेल लेते हैं और टाइम मैनेज कर लेते हैं।

0: बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे बात किए इसके लिए।
1: जी धन्यवाद, थैंक यू।
0: दोस्तों अब चलते हैं हम हमारे अगले साथी की ओर और जानते हैं उनका पूरा परिचय।
2: मेरा नाम एलन खेस है और मैं यहीं अंबिकापुर नावपारा का रहने वाला हूँ।
0: तो एलन खेस जी, आप ये बताइए कि आपको इस खेल में रुचि कैसे आई, किससे प्रेरणा मिली आपको?
2: असल में मेरे घर में मेरे पापा और मेरे भैया दोनों ही नेशनल प्लेयर रह चुके हैं बैडमिंटन में, तो उनको देख देख के मैं सीख गया था और इंटरेस्ट आ गया।
0: तो एलन खेस जी, आप कहाँ कहाँ खेलने गए हैं?
2: मैं केवीज की तरफ से एक बार एक स्पेशल स्पोर्ट्स मीट में गया था और बस वहीं खेला था जहाँ मेरा सेकंड पोजीशन आया था।
0: आप ये गेम में जीते तो आपको कोई अवार्ड मिला था?
2: जी, मेरे को एक मेडल मिला और एक सर्टिफिकेट मिला।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: धन्यवाद।
0: तो दोस्तों अब चलते हैं हम हमारे अगले खिलाड़ी की ओर और जानते हैं इनसे इनका पूरा परिचय।
3: मेरा नाम आदित्य वासुले है, मैं यहाँ छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से ही हूँ, लोकल।
0: तो बैडमिंटन के अलावा आप और क्या करते हैं?
3: मैं स्विमिंग करता हूँ और मैं को थोड़ा सा ड्राइंग में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं ड्राइंग भी करता हूँ।
0: अच्छा, आप ड्राइंग भी करते हैं, तो आप टाइम मैनेज कैसे कर लेते हैं इन सब में?
3: टाइम का मतलब सवेरे 8 से हम 9 स्विमिंग चले जाते हैं, रात में फिर शाम को 4 से 9 यहाँ आ जाता हूँ, फिर 9 से 10 में अपना ड्राइंग कर लेता हूँ।
0: जैसे कि आपने बताया कि आप बैडमिंटन भी खेल रहे हैं, स्विमिंग भी कर रहे हैं, ड्राइंग भी कर रहे हैं, तो आप किस में आगे जाना चाहते हैं, किसको करियर तक लेके जाना चाहते हैं आगे?
3: स्विमिंग को।
0: स्विमिंग को, पर ऐसा क्यों?
3: इसलिए क्योंकि मेरे को मतलब मैं ऐसी हॉबी टाइप का मैं अपने बैडमिंटन को देखता हूँ, लेकिन प्रोफेशनल मैं अपने स्विमिंग में हूँ।
0: जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप कभी स्विमिंग में कॉम्पिटिशन में किए हैं पार्टिसिपेट?
3: अभी फिलहाल के लिए तो नहीं किए हैं, लेकिन अभी जो CBSE गेम होने वाला है मैं उसमें लूँगा।
0: जी, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। आपको स्विमिंग करियर के लिए बहुत बहुत बधाई, आप जो भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके लिए आप सफल हों।
3: धन्यवाद।
0: दोस्तों आगे हम और भी कई बातचीत करेंगे, पर उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे आज के क्रम कैंपस में। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे अगले साथी की ओर और जानते हैं इनसे इनका परिचय।
1: हेलो, मेरा नाम श्रीजन चक्रवर्ती है और मैं अंबिकापुर में ही रहता हूँ। मैं बैडमिंटन प्लेयर हूँ, मैं 5 साल से खेल रहा हूँ और स्टेट्स लेवल तक खेला हूँ।
0: तो श्रीजन आप ये बताइए कि आप टीम में खेलते हैं या सिंगल भी खेलते हैं?
1: मैं एक्चुअली डबल्स का प्लेयर हूँ बट मैं सिंगल्स भी खेलता हूँ, बट मैं प्रेफर डबल्स ही खेलता हूँ।
0: तो श्रीजन आप डबल्स के प्लेयर हैं तो आपको अवार्ड वगैरह भी मिले होंगे, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए हमको।
1: बहुत ज़्यादा तो नहीं बट स्टेट्स में मैं सेकंड आया था एक बार, तो उसका मुझे एक बार सिल्वर मेडल मिला था। उसके अलावा मैंने कुछ लोकल टूर्नामेंट्स खेले हैं जिसमें मैंने कुछ प्राइज मनीस भी जीते हैं, और मेरे डबल्स पार्टनर भी मेरा बहुत साथ दिया था तो उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमने दिया था, और ऐसे ही हमने और भी बहुत से अभी प्लान किए हैं आगे खेलने के लिए भी।
0: तो श्रीजन जैसे कि आपने बताया कि आप स्टेट लेवल तक गए हैं खेलने, तो आपका कोई यादगार मैच जो आप अभी तक भूल नहीं पाए हों?
1: यादगार मैच में अभी मैं सिंगल्स खेल रहा था रिसेंट में, सरगुजा ओलंपिक यहाँ पे हुआ था, तो उसका मेरा 3rd मैच हुआ था सिंगल्स का। एक अभिषेक टोपो नाम के प्लेयर हैं, उनके साथ हुआ था मेरा मैच, तो उनके साथ बहुत इंटेंस मैच गया था। 15 का था तो 13 तक मैं उनको खींच पाया, लेकिन फिर उनका बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे प्लेयर है तो थोड़ा मुझे दिक्कत हुआ, फिर मैं वो मैच हार गया क्योंकि मेरा रैकेट भी उस टाइम टूट गया था।
0: कोई बात नहीं श्रीजन, आप आगे और भी खेलिए, आगे और भी बढ़िए। हमारी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं, आप अच्छे से आगे बढ़िए।
1: थैंक यू सो मच।
0: आइए दोस्तों अब हमारे अगले खिलाड़ी की ओर चलते हैं।
2: मेरा नाम आदित्य राज है और मैं 10वीं का छात्र हूँ और मैं बैडमिंटन जैसे खेल को 1 साल से खेल रहा हूँ करीबन। और मैं जैसे बाहर जाने की बातें करें तो मैं अपने स्कूल की तरफ से भिलाई गया हूँ स्टेट्स खेलने।
0: चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बाहर भी गए हैं खेलने के लिए। जैसे कि आदित्य जी आपने बताया कि आप बैडमिंटन के प्लेयर हैं, तो एक प्लेयर को अपने बॉडी को अच्छे से रखने के लिए, फिट रखने के लिए उनको क्या क्या खाने की आवश्यकता पड़ती है, मतलब आप अपना रूटीन क्या लेते हैं खाने में?
2: जैसे जब मैं अपनी स्टेट्स के खेलने के लिए जा रहा था तो मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करता था, जैसे मैं दिन के सिर्फ 2 ही मील लेता था और मैं जैसे दिन में 16 घंटे नहीं खाता था और बाकी के 100 घंटे बस

0: थे उसमें खाता था। और जैसे क्या लेना चाहिए खाने में उसकी बात करें तो मेनली प्रोटीन लेना चाहिए और फाइबर्स लेने चाहिए, और हाँ पानी पीना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना।
1: जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बॉडी को फिट रखने के लिए ये चीज़ लेते हैं। आदित्य आप साथ में और भी कुछ करते हैं क्या इस खेल के अलावा?
0: और कुछ तो नहीं जैसे, लेकिन हाँ मैं मेडिटेशन करता हूँ सुबह सुबह, और हाँ वो मुझे बहुत मदद करता है, वो मेरे ब्रेन को बहुत शार्प करता है, और हाँ इसने मेडिटेशन ने मुझे बहुत स्टडी में भी बहुत हेल्प की है।
1: आदित्य जी जो हमको अभी सुन रहे हैं तो आप उन यूथ को क्या बताना चाहेंगे कि वो अगर खेल से रिलेटेड किसी गेम में हैं तो वो करियर में क्या करें, कैसे खेलें, कैसे जाएं, कैसे आगे बढ़ें?
0: जो मुझे सुन रहे हैं मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ इतना कहना चाहता हूँ कि हाईज एंड लोज आएंगे, लेकिन कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर आपका एम सही है और आपको जिस खेल में आगे जाना है आपको पता है कि हाँ मुझे उसी में जाना है, तो आपको कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, बस इतना ही।
1: हाँ गिव अप नहीं करना चाहिए, लेकिन हार से ही हमको सक्सेस आगे मिलती है। हम आपको आपके फ्यूचर के लिए ब्लेसिंग देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी आपका जो आपने हमको टाइम दिया।
0: मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं आगे के यूथ के लिए यही कहना चाहता हूँ कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए।
1: आप सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सुमन ठाकुर आपसे विदा लेती हूँ। खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे क्रम कैंपस, जिसे लेकर आई थी हमारी साथी सुमन ठाकुर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पेश है गीत फिल्म राजा हिंदुस्तानी से अलका याग्निक की आवाज में, लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

दोस्तों वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। जाते जाते आपको बता देती हूँ कल की युववाणी के कुछ मुख्य आकर्षण। कल आप सुनेंगे युवा सोच, जिसका विषय होगा दिल की बातें अक्सर अधूरी रह जाती हैं। इसके बाद क्रम कविता पाठ और फिर फिल्म संगीत। तब तक के लिए इजाजत दीजिए आज की युववाणी से। अपनी दोस्त शोभा मनवानी को नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी फोन रिकॉर्ड करते हैं
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार ये 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन

0: कायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। इस बीच शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने के लिए काम किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी सुबह की कार्य बैठक में G7 नेताओं के साथ शामिल हुए, लेकिन वार्ता जल्दी समाप्त हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान येस बैंक के ऋणों के कथित धोखाधड़ीपूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय ने सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, उनके निदेशकों और कर्मचारियों के साथ साथ येस बैंक के पूर्व कर्मचारी के परिसर की तलाशी ली। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर किया जाएगा। दार्जिलिंग में कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका में ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम HIEF हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर है। अगला मुकाबला भारत का उरुग्वे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाश।
2: हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। अब सुनिए आत्मचयन विषय पर विचार बिंदु। संकलन वाचन स्वर है धरती प्रिया का।
3: जीवन की यात्रा में हम अक्सर दूसरों की खुशियों, अपेक्षाओं और ज़रूरतों को पूरा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि स्वयं को भूल बैठते हैं। हम यह सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, उन्हें क्या अच्छा लगेगा और उनकी इच्छाओं को कैसे पूरा किया जाए। धीरे धीरे ये आदत हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब मन थक जाता है और भीतर से एक आवाज़ उठती है, क्या मैंने कभी खुद को चुना है? वास्तव में जिंदगी में औरों को छोड़कर खुद को चुनना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसम्मान

0: और आत्म प्रेम का प्रतीक है। खुद को चुनने का अर्थ यह नहीं कि हम अपने परिवार, मित्रों या समाज से दूर हो जाएं। इसका अर्थ है कि हम अपनी भावनाओं, जरूरतों, सपनों और मानसिक शांति को भी उतना ही महत्व दें जितना दूसरों को देते हैं। यदि एक दीपक स्वयं ही बुझ जाए तो वह किसी और को प्रकाश कैसे देगा? उसी प्रकार यदि हम भीतर से टूटे हुए, थके हुए और दुखी हैं तो दूसरों की सहायता भी पूरी निष्ठा से नहीं कर पाएंगे। आज के समय में बहुत से लोग दूसरों को खुश रखने की कोशिश में अपना सुख खो देते हैं। वे हर बात पर समझौता करते हैं, अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं और अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं। शुरुआत में यह त्याग अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ मन में खालीपन और पछतावा पैदा होने लगता है। इसीलिए यह समझना आवश्यक है कि स्वयं की उपेक्षा करके किसी को स्थायी खुशी नहीं दी जा सकती। खुद को चुनना हमें आत्मविश्वास सिखाता है। जब हम अपने निर्णयों पर भरोसा करना सीखते हैं तब जीवन की कठिनाइयों का सामना भी अधिक मजबूती से कर पाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को महत्व देता है वह दूसरों से सम्मान की अपेक्षा करने के बजाय पहले स्वयं का सम्मान करना सीखता है। यही आत्मसम्मान जीवन में सफलता और संतुलन का आधार बनता है। इस विषय में हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि ना कहना भी जीवन की एक कला है। हर बार दूसरों की इच्छा के अनुसार चलना आवश्यक नहीं है। यदि कोई बात हमारे मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान या भविष्य के लिए सही नहीं है तो उसे विनम्रता से अस्वीकार करना बिल्कुल उचित है। अपनी सीमाएं तय करना और उनका सम्मान करना खुद को चुनने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। खुद को चुनने का एक और अर्थ है अपने सपनों को महत्व देना। अक्सर लोग अपने लक्ष्य केवल इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरे क्या कहेंगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी वही आगे बढ़ पाए। यदि हम अपने सपनों के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो जीवन भर दूसरों के सपनों को पूरा करते रह जाएंगे। इसलिए अपने जीवन की दिशा तय करने का अधिकार स्वयं को देना चाहिए। इसके साथ ही खुद को चुनना आत्मस्वीकृति भी सिखाता है। हम सभी में कुछ कमियां और कुछ खूबियां होती हैं। पूर्णता की तलाश में स्वयं को दोष देना बंद करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी कमियों के साथ स्वयं को स्वीकार कर लेता है वह जीवन में अधिक शांत और संतुष्ट रहता है। आत्मस्वीकृति हमें यह समझाती है कि हमारा मूल्य दूसरों की राय से नहीं बल्कि हमारे अपने दृष्टिकोण से तय होता है। अंततः जिंदगी में औरों को छोड़कर खुद को चुनना किसी के प्रति उदासीन होना नहीं बल्कि अपने अस्तित्व का सम्मान करना है। जब हम स्वयं से प्रेम करना, स्वयं को समय देना और अपने सपनों को महत्व देना सीख जाते हैं तब हमारा जीवन अधिक सार्थक और संतुलित बन जाता है। याद रखिए, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता आपका अपने आप से होता है। यदि यह रिश्ता मजबूत है तो जीवन की हर चुनौती आसान लगने लगती है। इसलिए दूसरों की परवाह अवश्य करें लेकिन स्वयं को कभी ना भूलें, क्योंकि जब आप खुद को चुनना सीख जाते हैं तभी आप सच्चे मायने में जीना सीखते हैं। यही आत्म प्रेम, आत्मसम्मान और सुखी जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है।
1: आत्मचयन विषय पर अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु, संकलन और वाचन था धरती प्रिया का। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ी में समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश में आज ले शुरू हुई नवा शिक्षा सत्र। स्कूल में शिक्षक मन है विद्यार्थी मन के टीका लगा के करीन स्वागत। प्रदेश के जम्मू ग्राम पंचायत मन में 24 जून के ग्राम सभा के आयोजन करे जाही। और वर्षा ऋतु में मछली मन के प्रजनन ला देखत राज्य सरकार है आज ले मछली पकड़े में रोक लगा दे है। अब समाचार विस्तार ले। नवा शैक्षणिक सत्र के शुरुआत होए के संगे संग आज ले प्रदेश के जम्मू सरकारी और प्राइवेट स्कूल मन खुल गए है। आज ले स्कूल मन में शाला प्रवेश उत्सव घलो मनाए जावत है जौन 27 जून तक चलही। शाला प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल पहुंचैया नवा लड़का मन के टीका लगा के स्वागत करेगी। उन्हें विद्यार्थी मन

0: निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म और साइकिल घलो बांटे जावत हे। नवा शिक्षा सत्र की शुरुआत ले पहली काली परिवहन विभाग, यातायात पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और जिला सेनानी कार्यालय के सामला टीम हा स्कूल बस मन के जांच करी। ये दौरान स्कूल बस के सुरक्षा मानक, दस्तावेज और कर्मचारी मन के स्वास्थ्य के परीक्षण करेगी। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए 45 स्कूल बस संचालक मन ला कारण बताओ नोटिस जारी करेगी। राज्यपाल रमन डेका हा आज डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर और आईसेक्ट इंडिया ग्रुप संघ राखे गए 2 दिवसीय समर्थ भारत कॉन्क्लेव के शुभारंभ करी। ये मौका में राज्यपाल कहने की एआई आधुनिक युग के एक विशेष तकनीकी हर है जौन चिकित्सा, कृषि, अर्थव्यवस्था और शिक्षा समेत आने आने क्षेत्र में मानव के सहायक बन सकत है। फिर यह मानव बुद्धि, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्य के स्थान नहीं ले सके। ओमन युवा मन ले आह्वान करी है कि ओमन एआई और आने आने तकनीक के उपयोग नवाचार और समाज के हित में काम करे। ये मौका में राज्यपाल एआई कौशल रथ ला हरियर झंडा दिखा के रवाना करी। ये रथ प्रदेश के आने आने क्षेत्र में जाके विद्यार्थी, शिक्षक और आम लोगन मन ला एआई के उपयोगिता, संभावना और रोजगार के मौका के जानकारी दी। प्रदेश के जम्मू ग्राम पंचायत मन में 24 जून के ग्राम सभा के आयोजन करे जाही। ग्राम सभा में आवास प्लस 2.0 के स्थायी प्रतीक्षा सूची समेत आने आने विषय ऊपर चर्चा करे जाही। एकर संगे संग विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी के बारे में घलो लोगन मला जानकारी दे जाही। ग्राम सभा में पाछू बैठका में पारित प्रस्ताव के समीक्षा, पंचायत के आय व्यय के अनुमोदन, आने आने विकास काम के प्रगति और पंचायत संपत्ति के प्रबंधन जैसन विषय में घलो गोट बात करी जाही। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी हा ए बच्छर के सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दे। आयोग बताइने कि 1000 ले ज्यादा पद मन बर 13000 ले ज्यादा उम्मीदवार मन के सिविल सेवा मुख्य परीक्षा बर चुनाई हुए है। यूपीएससी हा उम्मीदवार मन ला यहू बताइने कि उखर नंबर, कट ऑफ अंक और उत्तर सूची आखिरी रिजल्ट घोषित होए के बाद आयोग के वेबसाइट में अपलोड करी जाही। उम्मीदवार यूपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in में प्रारंभिक परीक्षा परिणाम डाउनलोड कर सकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 बच्छर पूरा हुए में भारतीय जनता पार्टी डहाले प्रदेश के आने आने जिला में पत्रकार वार्ता आयोजित करी जावत है। यही कड़ी में रायपुर में पत्रकार मले गोट बात करत भाजपा के प्रदेश मंत्री अमित साहू कहने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर एक दिन राष्ट्र प्रथम और गरीब कल्याण ला समर्पित रहे है। उन्हें पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल मुंगेली में राखे गए पत्रकार वार्ता में कहने की मोदी सरकार के 12 बच्छर विकास, विश्वास और जन कल्याण के ऐतिहासिक यात्रा के प्रतीक है। उती खैरागढ़ जिला भाजपा कार्यालय में राखी के पत्रकार वार्ता संबोधित करत प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार के 12 बच्छर के उपलब्धि, जन कल्याणकारी योजना और भारत के विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बाढ़ बाचे समाचार कोती। वर्षा ऋतु में मछली मन के प्रजनन ला देखत राज्य सरकार हा आज ले मछली पकड़े में रोक लगा दे। ये रोक 15 अगस्त तक रही। ये दौरान नदिया, नरवा और तरिया मन में मछली पकड़े में रोक रही। छोटे तरिया और जल स्रोत जिखा संपर्क कोनो भी नदिया नरवा ले नहीं है वहां ये रोक नहीं रहा है। एकर संगे संग बड़े जलाशय में व्यावसायिक रूप ले संचालित करैया केज कल्चर गतिविधि में लगल ये प्रतिबंध ले बाहर रखे गए है। छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के तहत कोनो भी मनखे या संस्था प्रतिबंध के उल्लंघन करत पाए जाही त उखर मन ऊपर 25,000 रुपया तक के जुर्माना लगाए जाही। अब यह 21 जून के मनाए जाने वाला 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के बारे में राज्य के मुख्य सचिव विकास सिल्हा आज मंत्रालय में बैठक लीन।

ये समीक्षा बैठक में अन्य विभाग के बड़का अधिकारी मन शामिल हुई। अधिकारी मन बताइए कि यह बच्छर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौका में राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम सरगुजा जिला में राखे जाही। उन्हें राज्य के हरेक ग्राम पंचायत के प्रमुख जगह मन में योगाभ्यास के कार्यक्रम राखे के जम्मू जिलाधिकारी मल्ला निर्देश दे गए है। मुख्य सचिव है अधिकारी मल्ला कहीं है कि 21 जून के नीट पुनर्परीक्षा रखे गए है, इला ध्यान में राखत यह सुनिश्चित करे जाए कि योग दिवस आयोजन के सेति नीट परीक्षा केंद्र परीक्षार्थी मल्ला कोनो किस्म के असुविधा जन हो। ये बच्छर योग दिवस के थीम स्वस्थ आयु के लिए योग निर्धारित करेगे है। लोरमी विधानसभा क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री अरुण साव 5 गांव में जन चौपाल लगा के गांव वाले मन ले गोट बात करी। उमन विकास काम और सरकारी योजना मन के जानकारी लेन। ये दौरान आने आने गांव पर लाखों रुपया के विकास काम के घोषणा करी और युवा खिलाड़ी मल्ला क्रिकेट किट घलो दी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग डहर ले बिजली के दर में करेगी बढ़ोतरी के प्रदेश कांग्रेस डहर ले विरोध करे जावत है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैजा आज रायपुर में पत्रकार मल्ले गोट बात करत कहने की बिजली के दाम में करेगे बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर वापिस ले के कांग्रेस आंदोलन कर ही। उमन कहने की काली 17 जून के प्रदेश के सबो जिला के बिजली ऑफिस के घेराव करे जाही। उन्हें 18 जून के कांग्रेस जम्मू जिला में पत्रकार वार्ता करके बिजली के दाम में हुए बढ़ोतरी के विरोध करी। श्री बैजा बताइए कि जुलाई के पहली हफ्ता में कांग्रेस कार्यकर्ता मन है स्मार्ट मीटर के खिलाफ घर घर ले आवेदन भरवा के स्मार्ट मीटर हटाए के मांग करी। खबर के मुताबिक राज्य सरकार है घरेलू उपभोक्ता मन के बिजली बिल में हरेक यूनिट पाछू 30 ले 50 पैसा और गैर घरेलू बिजली दर में 20 ले 40 पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोतरी करे है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के जुड़े सबो सरकारी और प्राइवेट कॉलेज मन में स्नातक और स्नातकोत्तर पहली सेमेस्टर में प्रवेश की प्रक्रिया आज ले शुरू हो गई है। प्रवेश प्रक्रिया 3 चरण में हो ही विद्यार्थी मन ला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल में आवेदन करना होगी। शक्ति जिला में एसीबी बिलासपुर की टीम है रिश्वत लेवा शक्ति जनपद पंचायत के सीईओ निखिल कश्यप बाबू अविनाश ठाकुर और चपरासी लक्षण भानु ला गिरफ्तार करे है। आरोपी मनु पर 1 लाख रुपया की रिश्वत लेके आरोप हवे। बताया गया है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत लिमतरा पंचायत के निर्माण काम के चेक जारी करे के एवज में रिश्वत मांगे रही। एसीबी है तीनों जन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू कर दे है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। प्रदेश में आज ले शुरू हुई नवा शिक्षा सत्र स्कूल में शिक्षक मन है विद्यार्थी मन के टीका लगा के करी स्वागत। प्रदेश के जम्मू ग्राम पंचायत मन में 24 जून के ग्राम सभा के आयोजन करे जाही और वर्षा ऋतु में मछली मन के प्रजनन ला देखत राज्य सरकार है आज ले मछली पकड़े में रोक लगा दे है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।

छत्तीसगढ़ी में समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम गोधली में आइए सुनते हैं पहले ये बायर गीत। आवाज है राम भरोस और साथियों की।

0: राम भरोस और साथियों के गए इस सरगुजिया पायर गीत के बाद आइए अब सुनते हैं ये सरगुजिया सुआ गीत। कलाकार हैं सुरेश राजवाड़े और साथी।
1: कोने बने रही रत गया लचाराय

सुरेश वाजरवाड़े और साथियों के गाए इस सुवागीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम गोधुली अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। रिजपेश फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत में ये सुनते हैं लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम का गाया फिल्म वंश का ये दो गाना, जिसे लिखा है समीर ने और संगीत है आनंद मिलिंद का।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: जावेद अख्तर का लिखा गीत एआर रहमान के बनाई धुन पर हेमा सरदेसाई और वासुदेवन की आवाज में सुनिए फिल्म सपने का ये गीत।

0: हेमा सरदेसाई और वासुदेवन की आवाजों में अपने फिल्म सपने का यह गीत सुना। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। 6:45 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: घर सूर्य घर।
6: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
7: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
6: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
7: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
6: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
7: क्यों?
6: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
8: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
9: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
10: क्या

0: बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
0: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने के साथ ही आज से प्रदेश के सभी स्कूल खुले। स्कूलों में मनाया जा रहा है शाला प्रवेश उत्सव। वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन को देखते हुए राज्य सरकार ने आज से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर लगाया प्रतिबंध। और यूपीएससी ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित किए। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही विकसित भारत, रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी के संबंध में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी। ग्राम सभा में पिछली बैठकों में पारित प्रस्तावों की समीक्षा, पंचायतों के आय व्यय का अनुमोदन, विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति और पंचायत संपत्तियों के प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने के साथ ही आज से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल गए हैं। आज से स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव भी मनाया जा रहा है, जो 27 जून तक चलेगा। शाला प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल पहुंचने वाले नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा है। वहीं विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण भी किया जा रहा है। राज्यपाल रमन डेका ने आज डॉ सीवी रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर और आईसेक्ट इंडिया ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय समर्थ भारत कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने युवाओं से आह्वान किया कि वे AI और अन्य नई तकनीकों का उपयोग नवाचार तथा समाज हित के कार्यों में करें। इस मौके पर राज्यपाल ने AI कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा आम नागरिकों को AI की उपयोगिता, भावनाओं और रोजगार के अवसरों की जानकारी देगा। 21 जून को निर्धारित राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा NEET UG की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा कि यह प्रतिबंध NEET UG की पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन को देखते हुए राज्य सरकार ने आज से मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध 15 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान नदी, नालों और जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। ऐसे छोटे तालाब और जलस्रोत जिनका संपर्क किसी भी नदी नाले से नहीं है, उन्हें इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। इसके अलावा बड़े जलाशयों में व्यावसायिक रूप से संचालित की जाने वाली केज कल्चर गतिविधियों को भी इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था प्रतिबंधों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारतीय

0: पार्टी के प्रदेश मंत्री अमित साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर एक दिन राष्ट्र प्रथम और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक श्री मोदी के कार्यकाल में लगभग 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मुंगेली में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास, विश्वास और जन कल्याण की ऐतिहासिक यात्रा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और विकसित भारत के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। वहीं खैरागढ़ जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं और भारत की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने बताया है कि 1000 से अधिक रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया गया है। यूपीएससी ने उम्मीदवारों को यह भी बताया है कि उनके अंक, कट ऑफ अंक और उत्तर सूची अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से प्रारंभिक परीक्षा परिणाम डाउनलोड लोड कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी का प्रदेश कांग्रेस द्वारा विरोध किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आज रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिजली के दाम में की गई बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर वापस लेने कांग्रेस आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि कल 17 जून को प्रदेश के सभी जिलों में बिजली दफ्तर का घेराव किया जाएगा। वहीं 18 जून को कांग्रेस सभी जिलों में पत्रकार वार्ता आयोजित कर बिजली के दाम में हाल ही में की गई बढ़ोतरी का विरोध करेगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल में प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे और गैर घरेलू बिजली दरों में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव विकास शील ने आज मंत्रालय में बैठक ली। अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम सरगुजा जिले में आयोजित होगा। मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य के सभी जिलों में 21 जून को योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रमुख स्थलों पर अनिवार्य रूप से योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग निर्धारित की गई है। दुर्ग जिले में खेल अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के प्रस्ताव को सहमति प्रदान की गई है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और कलेक्टर तथा क्रीड़ांगण समिति के अध्यक्ष अभिजीत सिंह की उपस्थिति में आयोजित जिला क्रीड़ांगण समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में तय प्रस्ताव के मुताबिक वर्तमान परिसर में बने बैडमिंटन कोर्ट की जमीन को छोड़कर बाकी की पूरी भूमि छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के माध्यम से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सौंपी जाएगी। इसके लिए भूमि को 33 वर्ष की अवधि की लीज पर देने का प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए राज्य शासन को भेजा जा रहा है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी शासकीय और अशासकीय कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। प्रवेश प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। विद्यार्थियों को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। पहली मेरिट लिस्ट 27 जून को, दूसरी मेरिट लिस्ट 11 जुलाई को और तीसरी मेरिट लिस्ट 17 जुलाई को जारी होगी। सक्ती जिले में एसीबी बिलासपुर की टीम ने रिश्वत लेते सक्ती जनपद पंचायत के सीईओ निखिल कश्यप, लिपिक अविनाश ठाकुर और भृत्य लच्छन भानु को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर 1,00,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। बताया गया है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत लिमतरा पंचायत के निर्माण कार्यों का चेक जारी करने के एवज में

0: मांगी गई थी। एसीबी ने तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में कल सुबह 10 बजे अभनपुर से कुरुत के बीच नई ब्रॉड गेज लाइन का स्पीड ट्रायल किया जाएगा। स्पीड ट्रायल के दौरान रेलवे ने आम लोगों से रेलवे लाइन से दूर रहने और अपने मवेशियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने को कहा है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर तेज हवा चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने औषधि नियम में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें छोटे गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब छोटे गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आज कांकेर में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन महोत्सव मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में पथ और फुटकर विक्रेताओं ने अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए ऋण संबंधी आवेदन जमा किए। बस्तर क्षेत्र में सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर लोक निर्माण विभाग ने 2 ठेकेदारों का पंजीयन 2 वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है, जबकि 8 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कबीरधाम जिले में 35 ग्रामीण महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है। अब ये महिलाएं गांव में सौर उपकरणों की स्थापना, संचालन और मरम्मत करेंगी। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोंडागांव द्वारा 19 जून को कलेक्टोरेट परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने के साथ ही आज से प्रदेश के सभी स्कूल खुले। स्कूलों में मनाया जा रहा है शाला प्रवेश उत्सव। वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन को देखते हुए राज्य सरकार ने आज से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर लगाया प्रतिबंध। और यूपीएससी ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित किए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना।
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। आइए श्रोताओं, अब हम आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में बतलाते हैं।

हमारी सभा में अभी 7:05 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा हम आपको सुनवाएंगे। किसान भाइयों के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण होगा 7:20 पर। इसमें चर्चा सुनेगा जल शक्ति अभियान और अल्पसंख्यक कल्याण हेतु प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम पर। 7:30 पर किसान वाणी के अंतर्गत सजीव हेलो किसान वाणी का प्रसारण किया जाएगा। विषय है खरीफ फसलों हेतु खेत की तैयारी, मिट्टी प्रबंधन और पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग। विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर के डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार। रात 8 सोशल मीडिया से प्राप्त फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश हम आपको सुनवाएंगे। चित्रपट संगीत सुनेगा 9:15 पर। 9:30 पर मनी टॉक और मंथन कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 10:00 आपके ईमेल फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण किया जाएगा और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन हम आपको सुनाएंगे 10:30 पर।

हमारी कल की प्रातःकालीन सभा में सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। 6:30 पर विचार बिंदु का प्रसारण होगा और 6:35 पर रामचरितमानस का गायन हम आपको सुनवाएंगे। 6:45 पर कृषि संबंधित सामयिक सुझाव आप सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बात में। 7:00 लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल आप सुनेंगे। सुगम संगीत हम आपको सुनवाएंगे 7:15 पर। 7:30 पर जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनेगा नमस्कार सरगुजा। शहीदों की गाथा और देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम वीर वंदन आप सुनते हैं 8:30 पर। 9:00 गांधी वांग्मय पर आधारित कार्यक्रम गांधी चर्चा का प्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। बात और गीतों का कार्यक्रम गुंजन सुनेगा बात और गीतों का कार्यक्रम गुंजन हम आपको सुनाएंगे 9:15 पर। नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने हम पेश करेंगे सुबह 10:00। 11:05 पर फरमाइश फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेगा। 12:00 NCERT और CIT द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग हम आपको सुनाएंगे। 12:30 पर एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन आप सुनते हैं। 1:10 पर ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम घर गोसाइन आप सुनेंगे, इसमें महाराणा प्रताप जयंती पर चर्चा होगी। साथ ही पत्रों और मेल पर आधारित कार्यक्रम गोयट बाद भी बहनें सुन सकती हैं। 1:40 पर और 10:00 ईमेल की गूंज का प्रसारण किया जाएगा। 2:30 पर गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा हम आपको सुनवाएंगे।

शाम 5 बजे आप सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। 5:05 पर शांतिकालीन भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या हम प्रसारित करेंगे। 5:30 पर युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी में सुनेगा युवा सोच और कविता पाठ। 6:20 पर लोक संगीत का कार्यक्रम गोधली होगा। शाम 7:05 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा हम आपको सुनवाएंगे। 7:20 पर किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल में मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस पर चर्चा होगी। साथ ही बदलती खाद्य आदतें और नई संभावनाओं पर हम बातचीत आपको सुनवाएंगे। रात 8 बजे सोशल मीडिया पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश आप सुनेंगे। 9:15 पर चित्रपट संगीत का प्रसारण होगा। कार्यक्रम चर्चा का विषय है हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे। 10:30 पर मन भावन कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:05 और 28 सेकेंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीकंधा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनवर की लिखी इस गजल के साथ। गायक कलाकार हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन।

अनवर की लिखी गजल आपने अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में सुनी। आइए अब सुनते हैं मेराज की रचना जगजीत सिंह की आवाज में।

जगजीत सिंह के गाए मेराज की इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:20 और 28 सेकंड्स हुए हैं। आइए अब सुनते हैं ग्रामीण श्रोताओं और किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

0: चौपाल सुन ये हमारे जम्मू किसान भाई उनकर घर कर लोग उनकर संगता गुट्टा गांव घर कर बहुत बहुत स्वागत और धर्मो भैया कर राम राम बोलू भैया राउर के भी राम राम
1: राउर कर भी राम राम राउर कर भी धन्यवाद।
0: हाँ तो बोलू भैया देखिए कि हम इन कार्यक्रम को शुरुआत में कोनो ना कोनो विषय पे गुट बात कर थी
1: भाई आज हमन देखब तो अभी जब गर्मी कर जब समय रथे और बरखा कर जब शुरुआती समय रथे
0: हाँ
1: ओ घनी हमन भाई रुख राई लगाए के बारे में सबसे पहले बात करथन। अभी

0: कई प्रकार का वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाता है और चले वाला भी है। तो जहां जग भी हमारे आसपास वृक्षारोपण का कार्यक्रम चले, चाहे वो शासकीय कार्यक्रम हो, चाहे कोई संस्था कर माध्यम से हो, चाहे ग्राम पंचायत स्तर पर हो, शहर कर स्तर में हो, हर जगह हमला अपन श्रमदान करके भागीदारी जरूर करना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहन, एक ससिया कहन लेकिन अच्छा कहन। देखिये हमन भूलो भैया, पेड़ पौधा हर साल लगाती देखी ना, बाकी कहे की ओकर तीहा जतन ना नहीं हो पाए, तीहा जतन भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: तो भाई हमन एक बार हमन कर प्रयास रहे कि जितना रुख राई मन हमन लगाथन वो रुख राई मन जिंदा रहें और बचे रहें, ओकर तिहा जतनो समय तक करी जब तक कि ओकर बढ़वार बढ़िया हो जाए और मवेशी मन कर पहुंच से ऊपर हो जाए, ओकर बाद वृक्ष मन अपन देखभाल खुद कर ले।
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहना। वो एक बात आओ देखब ना कि पानी जब गिरेल खरीफ घनी हमर जो प्रकृति है अपने अपन देखब कि लाखों पेड़ अपने जन्मा है, तो हमन ला ओकर भी तिहा अगर कर लेती ना तो जो पर्यावरण कर जो बगड़ल दशा है कुछ हद तक तो का है हमने
0: बढ़िया संभल जाए
1: कर सकती
0: है। भाई पर्यावरण की बात और कहा थी तो सबसे एक ठन बहुत जरूरी बात है कि भाई हमन ला जल संरक्षण भी करना है,
1: बहुत जरूरी।

0: घनी हमर जो प्रकृति हर अपने अपन देखब कि लाखों पेड़ अपने जन्मा है तो हमन ला ओकर भी तिहा अगर कर लेती ना तो जो पर्यावरण कर जो बगड़ल दशा है कुछ हद तक तो का है हमने
1: बढ़िया संभल जाए
0: कर सकती है।
1: भाई पर्यावरण की बात और कहा थी तो सबसे एक ठन बहुत जरूरी बात है कि भाई हमन ला जल संरक्षण भी करना है,
0: बहुत जरूरी।
1: जहां जग पानी गिरे वही जग ओला हमन संचित करी। ये दिशा में सरकार कर भारत सरकार का एक ठन योजना चलता है जिला कैच द रैन अभियान का थन। ये आंदोलन जो है वो जन संरक्षण पर जन आंदोलन के रूप में बाहर बढ़ता है। जरूरत है कि भाई हमर जो मनसे मन है जन समुदाय है ये आंदोलन से जुड़े, काबर की जल शक्ति अभियान कर माध्यम से ही हमन जो भूमिगत जल है ओकर स्तर ला बढ़ाए सकत हन, ओकर मात्रा ला बढ़ाए सकत हन। तो भारत सरकार बहुत सुघर योजना लेके आई है, जल शक्ति मंत्रालय कर योजना है कैच द रेन अभियान, एकर अंतर्गत जन आंदोलन बनाता है जेकर कारण भाई पानी जहाँ जग गिरता है ओला वही जग संचित करे कर दिशा में काम चलता है। संगे संग हमन देखब तो भाई शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में जम्मो जग ये वाटर हार्वेस्टिंग कर जो लगाता है ओकर माध्यम से भी भूजल कर स्तर जो है धीरे धीरे सुधरता है। बाकी आज बहुत जागरूकता कर समय आए, बहुत जागरूकता कर जरूरत है। हमन हर हम परिवार मन हर घर में हमला वाटर हार्वेस्टिंग बनाना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: कहीं जग माला
0: मतलब यह है कि छत कर जो पानी है ओला हमला सहजना
1: हाँ धर्म भी। और संगे संगे एक बात आऊ कहूँ भाई कि जहाँ जग माला हमर जग बोर है चाहे हैंडपंप लगी से गांव में चाहे शहर में वो जग जाए के बढ़िया हमन सोखता गड्ढा बनाए कर ओकर पानी ला भी जमीन के अंदर हमन पहुँचा सकत हन।
0: ठीक कहन जो हमार जो पारंपरिक जल स्रोत हमें ना ओकर भी हमन का जीर्णोद्धार कर सकत ही, तलवा होगीस कुआं होगीस बावड़ी मन होगिन ओकर भी हमन जो है जल ओला अगर जीर्णोद्धार करत ही ना मतलब बना लेती जो बगड़ल है तो ओकर में भी कहे कि हमन जल संकलन कर सकत।
1: बाकी एक ठन बात और हमन ला एक बार जिम्मेदारी के साथ सोचना समझना चाहिए धर्मो भैया, कोई भी अभियान तबे सफल होही जब हमन में अपन अभियान समझ के में जुड़ब।
0: एकदम सही बात,
1: खबर कि अगर अपन नहीं समझब हमन कि ये अभियान हर हमर बर है हमन कर है व्यक्तिगत है तबे ये योजना हर सफल होही। एकर पर जरूरत है कि भाई कैच द रेन जो अभियान चलता है जल संरक्षण कर दिशा में एकर अभियान ला हमन अपन व्यक्तिगत अपन परिवार कर अभियान ला समझी, वही हिसाब से में मेहनत करी अपन जिम्मेदारी समझी। खबर की वर्षा कर जो जल है वही जल जो है पिए लायक जल है हमर पृथ्वी में और वह जमीन में जब नहीं जाही और बह के नवा नदी नाला के माध्यम समुद्र में चल जाही तो वर्षा वो जब जल है कोई उपयोग कर नहीं रह जाही।
0: हाँ पेड़ पौधा हमन ज्यादा काहे लगवाथी ना वो भर काहे कि जल ला रोकेल ना पानी ला रोकेल। देखब ना कि अभी कहूँ कहूँ ऐसा दशा होगी से कि ढेरे कोड़वाए के बादो पानी नहीं।
1: हाँ भाई शहरी क्षेत्र में तो और ज्यादा खराब हालत है कि हमन देखब तो 200 फीट खोदवाए के बाद भी पानी नहीं निकल और गर्मी का जो समय आते तो पता चले इसके आधा घंटा बोर हर नहीं चल पाए।
0: हाँ तो जो है ये सब स्थिति से हमला निपटना है, पानी जो है तो जिंदगानी है
1: भाई। आज हमला संकल्प लेना है कि हमन भू जल का जो संरक्षण है चाहे वर्षा का जल का जो संचयन है ओला हमला करना है।
0: बिल्कुल हमन देखिए छोटे छोटे बात कर ध्यान कर अपना तो बहुत सारा हमन पानी बचा सकते जिसे छत कर पानी ला बचाना हुए बगीचा मन में जिसे खेत में पानी देना है ओकर लिए छोटा हमन गड्ढा बना सकत ही। तो कुछ ऐसा चीज हवे जिला कि किसान भाई से लेके हर कोई ला ठीक कह रहे सब कोई सोची ना तो अपने आप जो है ना जो है पर्यावरण कर बगड़ल दशा है ना फिर वापस आ जाए
1: धीरे धीरे बगड़ी सा है धीरे धीरे सुघर हो जाए।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहन
1: धर्म भैया भाई यही करने एक ठन योजना है हमारे अल्पसंख्यक समुदाय कर भैया बहनी मन पर उमन कर कल्याण पर प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम चलाता है।
0: हाँ।
1: और ये कार्यक्रम में हमन आज बात करब सीखो और कमाओ योजना कर बारे में। हमन देखब तो भाई अल्पसंख्यक समुदाय कर जो भैया बहनी मन है उमला सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक विकास पर भारत सरकार प्रधानमंत्री कर 15 सूत्रीय कार्यक्रम चलाता है जेकर उद्देश्य है भाई हमारे मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन समुदाय कर जो मनखे मना है उमला शिक्षा रोजगार कौशल विकास आवास स्वास्थ्य और वित्तीय सेवा जो है उसका समान अवसर उपलब्ध कराना।
0: बिल्कुल और
1: जी
0: ध्यान ये करना है कि भाई रोरे मन जागरूक रही।
1: हाँ
0: क्या है कि योजना तो काफी दिन से चलता है प्रधानमंत्री जी का
1: एक लाभ भी लेते हैं भैया
0: लेते हैं।
1: हाँ
0: बिल्कुल और एक लिए क्या है कि जरूरी ये हवे ना देखिए क्या है कि ये जो सीखो और कमाओ जरूरी कहें ना शौर्य और कौशल विकास है एक मुख्य लक्ष्य जो है ना 14 से 35 साल कर बीच के जो अल्पसंख्यक युवा मन है ना उमन कर रोजगार क्षमता ला बढ़ाना हवे ताकि वो लोग जो है ना जिनकर पास जैसे कौशल रहे ना कोई कोई चीज के बारे में ज्यादा जानकारी रहते हैं बराबर का है कि उमन ला ट्रेनिंग भी दे जाए
1: प्रशिक्षण जिला कहा नहीं।

0: पर शिक्षण कठिन वर्ड हो जाता है आजकल, तो
1: ज्यादा समझ जाते हैं।
0: हाँ, तो ओला का है। ओकर बाद देखी ना, जब प्रशिक्षण पूरा हो जाए तो ओकर बाद रोजगार या प्लेसमेंट ओकर सुनिश्चित करे बर भी सहायता देल जाए।
1: भाई बहुत सुघर योजना है धर्मू भैया की, भाई पहले प्रशिक्षण दे दें, काम ला सिखा दें, तेकर रोजगार ला दे दें। अगर रोजगार कोई मन से मन नहीं करना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, तो कर बर वित्तीय सहायता मिल जाती है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत देखकर एक बार छात्रवृत्ति भी है योजना,
1: माने जब तक हम प्रशिक्षण ले तब तक सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति भी मिली, ताकि भाई हमारे जीवन यापन करे में दिक्कत मत हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इतना बढ़िया योजना चलता है भैया। और खाली कौशल प्रशिक्षण तक ये योजना हर सीमित नहीं है, बाकी हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय कर जो भैया बहनी मना है, मतलब आर्थिक रूप से सशक्त बनाए कर दिशा में भी काम चलाता है, संगे संग कौशल विकास हो जाता है, शिक्षा रोजगार कर अवसर कर विस्तार होता है। अल्पसंख्यक समुदाय का युवा मन है उनका लगातार योजना कर माध्यम से आत्मविश्वास और भी बढ़ाता है।
0: और जो जैसे पैसा ढब्बो कम है तो ओला का है कि ऋण भी भेटाता है ना, लोन भी भेटाता है, ताकि आप अपन पैर में खड़ा हो सकत ही।
1: और भाई सबकर साथ सबकर विकास और सबकर विश्वास कर भावना से केंद्र सरकार हर योजना लेके आई ना है। और हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के भैया बहनी मन इतना बढ़िया लाभान्वित होता है, बहुत अच्छा योजना है। और जेमन मान ला कोई योजना का लाभ नहीं ले पाई है, तो वो जब संपर्क करके सरकारी कार्यालय में अल्पसंख्यक विभाग है ओकर माध्यम से इमें प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है, योजना का लाभ ला प्राप्त कर सकता है।
0: बिल्कुल ठीक कहन कहब ना कि अल्पसंख्यक जो बहुल क्षेत्र हैं, स्कूल अस्पताल कौशल केंद्र पेयजल जैसा कई संगठन जो है ना बुनियादी सीधा कर निर्माण होता है, तो भागीदारी ले हैं और बढ़ चढ़ के भागीदारी ले हैं, अपन विकास करें, गांव घर कर देश कर उन्नति में योगदान करें। बेरा हो चली से देखी भोलू भैया किसान माड़ीकर, और आज कर जो जरूरत तो जानते हैं, हेलो किसान माड़ीकर बेरा हो चली से जो कि लाइव होएल सजीव होएल,
1: माने आज चाहे तो भाई हमारे श्रोता मन सीधे फोन कर सकता है, बस तुरंत एक मिनट कर बात से, और हमर जग विशेषज्ञ है और अपन सवाल ला पूछ सकता है।

0: किसान भाई उनकर घर कर लोग संगता गोटा गांव कर कर बहुत बहुत स्वागत आओ धर्म भैया कर राम राम भोलू भैया राउर के भी राम राम
1: राउर ला भी राम राम और विशेषज्ञ हमारे जगह आइन है उनको राम राम।
0: हाँ आजकल हमारे विशेषज्ञ महोदय हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं मृदा विज्ञान कर कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर में पदस्थ हैं। और विषय ला भी मैं बता देता हूँ डॉक्टर साहब की खरीफ फसल पर हमार खेत कर तैयारी माटी कर प्रबंधन और पोषक तत्व कर संतुलित उपयोग ये आज कर हमार विषय हुए
2: जी।
0: तो किसान भाई फोन करें ओकर ले पहले मैं रौरे से जानना चाहूँ कि देखिए हमारे यहाँ तो ज़्यादातर जो है खरीफ में धान लागल
2: हाँ।
0: तो ये समय खेत कर तैयारी कैसे कैसे करें किसान भाई।
2: तो सबसे पहले किसान भाई राम राम नमस्कार जय जोहार। तो सबसे पहले बात करते हैं अभी मुख्य रूप से अभी धान के खेती होती धान के खेती के लिए सबसे पहले किसान भाई मन पहले जुताई करना है। जुताई करे पर मिट्टी पलटे वाले हल से जुताई करना है ओखर से कहा हो ही जितना भी खरपतवार है कीड़ा बीमारी के जो भी कीड़ा के अंडा है वो काहे बाहर आ ही ओखर से वो नष्ट हो जाए। तो सबसे पहले आप यही काम करो कि मिट्टी पलटने वाले जो हल है वो घर से जुताई करो।
0: वैसे डॉक्टर साहब कहते जब अच्छा गर्मी पड़ता रहे ना वो घनी एक जुताई करना ज्यादा फायदेमंद रहे ना
2: वो बहुत अच्छा रहते खासकर अप्रैल जो मई महीना रहते ना
0: हाँ।
2: वो में अगर जुताई कर दी तो वो घर से और ज्यादा अच्छा रहते काहे की जुताई में बहुत धूप रही थी
0: हाँ।
2: तो वो घर से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ते लेकिन अभी भी कर सकते खरपतवार तो मर ही जाए जैसे उखर जड़ वगैरह निकल जाएगा
0: ढेर जैसे गर्म घनी करे से वो माटी में किरवो और वो सब भुटभुटाए मरते हैं
2: जी जी जी
0: हाँ।
2: तो अभी भी करे से वो हो जाए ओकर बाद का कर सकते दो से तीन बार हैरो या कल्टीवेटर वो चला सकते वो का करे ही भुरभुरा करी हमारे जमीन ला।
0: अच्छा
2: जैसे कि बीज के अंकुरण के लिए हम लगा का चाहिए मिट्टी और हवा मिट्टी ला पानी और हवा दोनों चीज चाहिए।

0: जैसे हमन ओल भुरभुरा कर देबो तो ओमा वायु के संचार होही ता ओखर से जो हमन बीज डालबो वो ओखर जर्मिनेशन मतलब अंकुरण के लिए बहुत अच्छा ये काम करही।
1: अच्छा,
0: ओखर बाद का कर सकते किसान भाई मान की गोबर खाद उपयोग कर सकते। गोबर का है कि जो हमार जमीन है ओमा बहुत सारा सूक्ष्म जीव रही थे, जैसे केचुआ ये सब रही थे, तो जो सूक्ष्म जीव रही थे ओखर मेन जो खाना है वो हर कार्बनिक पदार्थ है। तो कार्बनिक पदार्थ कहाँ से मिली? गोबर से मिली, या गोबर से बने जो खाद रही वहाँ से मिली। तो वो आप उपयोग कर सकते हो, जैसे गोबर खाद FIM जो लगे थे हमन, अगर वो खर उपयोग करना चाहते हैं तो 4 से 5 टन प्रति एकड़ के हिसाब से उमन गोबर खाद उपयोग कर सकते हैं। अगर वर्मी कंपोस्ट मतलब केचुआ खाद अगर किसान भाई मन पास हवाए तो उखर भी उपयोग कर सकते हैं, 1 से 2 टन येला डाली तो उखर से जमीन भुरभुरा बनी।
1: कितना? 1 हेक्टेयर बार?
0: 1 एकड़ बार।
1: 1 एकड़
0: एक एकड़ बार। अच्छा। ये मैं जो बताता हूँ उखर से कहा है कि वो भुरभुरा बनी जमीन है बढ़िया, और ऑर्गेनिक पदार्थ के मात्रा बढ़ी जो सूक्ष्म जीव के लिए भी बहुत अच्छा रही। ओखर बाद अगर हम बात करें कि बहुत सारा किसान मन ये एरिया के रोपाई का करते है ना, हाँ, तो रोपाई के लिए सबसे पहले पडलिंग करना है। मल्ला पटलिंग करना मतलब उमा मतलब पाटा चलाना है अच्छे से। हाँ, तो उखर से कहा हो ही वो जितना भी जो पानी जो अंदर रिसाव होते वो उखर से रिसाव होना बंद हो जाही।
1: अच्छा।
0: तो हाँ, फिर उमा 5 से 7 इंच पानी भर के उमा निथार के पानी ला, फिर अपन वह जो बीज है वोला डाल सकते हैं। ओखर बाद का करना है कि हमला लेवलिंग करना है। लेवलिंग मतलब बराबर करना है हमारे जमीन लग का है कि अगर हम लेवलिंग नहीं करबो तो कुछ एरिया में कम पानी रही, कुछ एरिया में ज़्यादा ज़्यादा पानी वाले जो एरिया रही तो हमारे बीज के अंकुरण नहीं आई, वो सड़ना स्टार्ट हो जाए। तो लेवलिंग कर सकते हैं। ओखर बाद धान के खेत के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मेड़बंदी करना।
1: हाँ।
0: है कि वो जो आ रही थे वो टूट जाते मतलब गर्मी के दिन में याद कुछ था, मेड़बंदी करना का है कि जो जो हमारा धान है ओखर लिए बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा के पड़ते, तो अगर अच्छे से मेड़बंदी कर।
2: फोन आता है
0: जी।
1: हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हेलो
3: हेलो
1: किसान वाणी।
3: आवाज नहीं आ रहा है सर।
1: अरे राउर कर तो आवाज हमन सुना थी, हमर आवाज कैसे नहीं सुना थी राउर। हेलो
2: अभी लगत है बढ़िया संपर्क नहीं हो पाई से, दोबारा किसान भैया अभी ने फोन करी।
1: हाँ डॉक्टर साहब
0: जी, तो अभी बात करते रहे हमन वही है मेड़बंदी करे के बारे में, काहे कि जो धान है वो उखर लिए मेड़ बनाना बहुत मेड़बंदी करना जरूरी है, ताहे काहे कि धान में बहुत पानी की जरूरत पड़ती है। तो एक मजबूत हमन मेड़बंदी कर देबो। ओखर बाद फाइनल रही कि खाद डालना, तो जो भी बेसल डोज रही हमार ओखर उपयोग किसान कर सकते हैं, ओखर बाद आपके बीज ला बुआई कर सकते हो।
2: भाई बीज कर बुआई करो रे बात कर रहे थे डॉक्टर साहब
0: जी,
2: तो भाई बीज कर बीजोपचार कैसे हम कर सकते हैं और कैसे आसान विधि है और जैविक रूप से करी कि भाई हमन रासायनिक विधि से करी, कौन सा उपयोग कर रही है बारे
0: जी? एखर लिए है दोनों विधि है, मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि बीजोपचार के लिए एक होते बीजामृत। बीजामृत बहुत जैविक है, हमारे जो आसपास ही है वहीं से ही हम कर सकते हैं। बीजामृत बनाए बर का है हमन ला लगी 20 लीटर पानी, एक ड्रम में 20 लीटर पानी रख देबो, वो में 5 किलोग्राम गोबर वाला एक पोटली में मतलब कपड़ा में हमन बांध के वही पानी में डुबो देबो, ऊपर हमन कुछ लकड़ी के सहारे वो पोटली बांध दे देबो। ओकर बाद का करना है वही रात मतलब जो हम शाम की प्रक्रिया करबो वही साथ साथ हमन एक अलग से बॉटल में 1 लीटर के पानी और 50 ग्राम चूना लेबो।
1: अच्छा,
0: ठीक है, वो ला रख देबो इसे चूना ला, कोई भी चूना पुताई वाले भी चूना उपयोग करे जा सकते।
1: चूना कर कितना मात्रा लेना है?
0: 50 ग्राम।
1: अच्छा,
0: 1 लीटर पानी में 50 ग्राम मात्रा हमन वही रख देबो शाम के ही, मतलब अलग अलग रख दोनों ला। अगला सुबह हमन का करबो की वोला जो पोटली बनाए हैं वोला अच्छे से निचोड़ लेबो पानी में।
1: डॉक्टर साहब एक ठन किसान भाई जुटत है
0: जी जी।
1: हेलो किसान वाणी।
3: हेलो
1: हेलो किसान वाणी।
3: हेलो सर नमस्ते, मैं बिलासपुर जिला से कोटा ब्लॉक से एक कृषक बोल रहा हूँ, मेरा एक सवाल था।
1: रावरे अपन परिचय बता।

0: जी गोरेलाल कुर्रे।
1: गोरेलाल कुर्रे जी बहुत बहुत स्वागत है राउरकर।
0: धन्यवाद सर।
1: हाँ
0: वो मेरा ये प्रश्न है कि मिट्टी परीक्षण के बिना उर्वरक डालने से क्या नुकसान हो सकता है सर, इसी का जवाब चाहता।
1: हाँ तो डॉक्टर साहब राउर की आवाज ला सुनत है बताइए
2: जी। आप अगर बिना मिट्टी परीक्षण के अगर आप जैसी खाद डाल देंगे ना, तो उससे ये होगा कि आपका अनावश्यक खाद चला जाएगा। मतलब हम जैसे मिट्टी परीक्षण कराते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो मिट्टी में हमारे माटी में जो मतलब छत्तीसगढ़ी में बता देता हूँ आपको।
1: हाँ, अरे तो और बढ़िया बात है।
2: हाँ तो जैसे आप मिट्टी परीक्षण कराओ तब उखर से कहा हो कि हमारे जो मिट्टी में तत्व है, जो भी तत्व है वो कितना मात्रा में है हमारे मिट्टी में, वो पता चलते है घर से। और वो खर हिसाब से अगर आपके मिट्टी में जो तत्व कमी है तो, और जितना मात्रा में कमी रही वही के हिसाब से आप वो खाद डालो, तो आपके जो अनावश्यक खाद के जो गहरी तीज वो खर बचत हो जाए। साथ ही साथ ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी आप लोग बचाए काम करी। आप अगर पता नहीं रही तो आप जितना खाद डालत रही थे उतना ही डाल दो, तो अगर मिट्टी परीक्षण कार्ड में आप लोग पता चल जाए कि आप के मिट्टी में कौन से तत्व कितना मात्रा में, तो जितना कमी रही उतना ही आप डाल हो, वो घर से क्या रही कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रही, साथ ही साथ जो अनावश्यक खाद में आपके खर्च होती वो खर भी बचत हुई, तो कहीं न कहीं आपके एक घर से जो इनकम रही आपके इनकम में वृद्धि हुई।
0: बहुत बहुत धन्यवाद साहब
2: जी। धन्यवाद।
0: मिट्टी परीक्षण के बिना उर्वरक डालने से क्या नुकसान होता है, एक बारे में आप मन बताया है ऊपर लिए
2: जी। धन्यवाद।
1: हाँ तो किसान भाई राउर के भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब एक ठन संदेश हवे एला सुन लेती फिर आने गोट बात करबो।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
7: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ भाई, ये संदेश ला सुने, किसान भाई का फोन आता है एक ठन डॉक्टर साहब। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी, लगत है किसान भाई से हमारा संपर्क टूट गई से। बोलो भैया, हमारे गुड बात होते रही
4: भाई। जैविक विधि से बीज उपचार के बारे में डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो ही लागे बताते हैं।
5: हाँ, तो बीच में वही हो गई से, तो सबसे पहले आप जैसे हमन मिला रहे का
3: बीजामृत हो गई,
5: बीजामृत बनाए पर, तो हमन प्रोसेस आ रहे हैं कि रात के हमन क्या करें, 20 किलोग्राम गोबर, 20 लीटर पानी में 5 किलोग्राम गोबर के थैली में करें, और वही दिन वही रात के ही एक 50 ग्राम चूना में 1 लीटर पानी मिक्स करके डालें। अगला सुबह

0: মানে ওলা আচ্ছে সে পানি নিচোড় দেবো
1: আচ্ছা
0: যে গোবর রহি ওলা পোটলিলা ওখার বাদ ওখার বাদ ও হামান ডাল দেবো যে হামান চুনা ভিঙা ওলা ডাল দেবো সাথ হি সাথ এক কিলোগ্রাম হামান ওমা কা করবো গোবর ডাল দেবো
1: আচ্ছা দুবারা ও পাঁচ কিলো কার গোবর রহি
0: ঠিক হে সাথ হি সাথ হামান ওমা ডাল দেবো তিন লিটার গোমূত্র
1: আচ্ছা
0: হ্যাঁ তিন লিটার গোমূত্র ডাল দেবো ওখার বাদ ফের এক লিটার যে চুনা ডাল দেবো সাথ হি সাথ দো সে তিন মুঠি মিঠি ডাল দেবো মিঠি কাহা খোনা চাহি যে বরগদ ইয়া পিপল কে পেড় কে নিচে কে মিঠি কাহে ওহা যে যে মিঠি রইতে বরগদ ইয়া পিপল কে পেড় কে নিচে ও বহুত আচ্ছা গুড ব্যাকটেরিয়া পা যাতে মতলব যে জীবাণু পা যাতে ও আচ্ছা জীবাণু পা যাতে
1: আচ্ছা
0: তো ইয়ে সব লা আপ মিক্স কর দো এক দিন রখনা হে ওখান সে আমার বীজামৃত তৈয়ার হো যাহি ইয়ে এক প্রকার সে টিকা হয় জেসে বচ্চল হামান টিকা লাগাতান ওইসি ইয়ে পৌধা লা টিকা কাম করি ও জিতনা ভি রোগ জনিত জীবাণু রহি মতলব বীজ জনিত জীবাণু মৃদা জনিত জীবাণু ইয়ে সব বহুত সারা বীজ কে উপর অন্ডা দে দি রইতে যে কীড়া মান তো ওলা পুরা খতম কর দিহি ওহ সাথ ইয়ে মা হামান কা কা ইউজ করে হন গৌমূত্র ইউজ করে হন গোবর ইউজ করে হন তো ইয়ে কহিন কহি গৌমূত্র মে এক নাইট্রোজেন পায় যাতে তো খাদ কে ভি কাম করে সাথ ইয়ে গোবর কে ইউজ করে হন তো খাদ কে ভি কাম
2: ফোন আতা হে
1: ডাক্তার সাহেব লেহল জে হ্যালো কিষান বাণী वापस देखब की फिर से संपर्क किसान भाई से
2: परेशानी
1: टूट गई से
2: हाँ फिर बोल
1: वापस फिर आता है एक ठन फोन हेलो किसान वाणी
3: हेलो किसान वाणी सर नमस्ते
1: हाँ राम राम जय जोहार परिचय बताए किसान भाई
3: डॉक्टर साहब मतलब ही जय जोहार सर
0: जी नमस्कार
1: आपन परिचय बताई
3: ग्राम आम गांव पाटी आम गांव से बोला
1: नाउ
3: अमृत सिंह
1: जी हाँ बहुत बहुत स्वागत है अमृत सिंह राउर कर का सवाल है विशेषज्ञ बैठी ने डॉक्टर साहब ठीक से आवाज है राउर के नहीं आते कट कट के आते है नेटवर्क तनी परेशानी है का
2: फिर से अपन सवाल ला रख दी
1: सवाल ला एक दफे फिर से बोली तो
3: बीड़ा शहर का विचार रखते हैं अभी सर
1: हाँ हाँ
3: तो मैं कुछ घास जाम जाते पहले से तो ओकर उपचार पहले घास मारे सब कोई उपचार वो मैं ऐसा कर रही थी कैसे करे एक बात में पूछ
1: रहा हाँ बीड़ा नर्सरी लगा रहे हैं तो बोला घास भी उसमें उग जाए ओकर उपचार बता
2: नर्सरी में खरपतवार
1: हाँ तो डॉक्टर साहब राउर के जवाब देते हैं राउर रेडियो में सुनी
0: तो अभी अगर खरपतवार आपका है बाद में होता है जैसे कि आपका पहले ही होता है आप लोग ऐसा करिए कि आप जिस टाइम बीज लगाते हैं उसी टाइम ही आप पायराजो सल्फ्यूरान ये एक दवाई आता है उसको अगर बुआई तीन दिन के अगर अंदर डाल देते हैं तो ये एक प्री इमरजेंस बोलते हैं इसको तो इससे क्या रहता है कि जो जो भी खरपतवार है वो आता नहीं है अगर आपका अभी नर्सरी बढ़ चुका है अगर उसके बाद अगर आ रहा है तो उसमें बीस पायरेबिक सोडियम करके एक खरपतवार नाशी है उसका उपयोग कर सकते हैं आप उससे क्या होगा बीज अगर पौधा 20 से 25 दिन का है वहाँ तक का इसको उपयोग कर सकते हैं इससे जितना भी चौड़ी और सकरी पत्ती वाले जो भी खरपतवार है उसका बिल्कुल नियंत्रण हो रहेगा उससे
1: हाँ बिल्कुल किसान भाई लाए इनकर देखी जवाब तो मिल चुकी से और हमारे गुड बात होते रही देखी पूरा नहीं हो पाता है किसान भाई बार बार फोन कर
2: अच्छा बात है भाई फोन करी है फोन के बारे में बताते रहे हाँ। हाँ,
0: तो वो जैविक जीवामृत हो गए वो खर हाँ। बात है एक मैं बता देना चाहता हूँ
1: जीवामृत मतलब अपन कीटनाशक के काम करिए है ना बीजोपचार के बीजामृत
0: ये बीजोपचार के काम करिए
1: अच्छा
0: हाँ ये जितना भी बीज में जितना भी वो रही थे कीड़ा के अंडा वगैरह रही वो लोग सब खत्म कर दी साथ ही टीका के भी काम कर ली
1: अच्छा
0: जी वो खैर साथ ही एक बहुत अच्छा विधि है जो किसान भाई खुद से ही कर सकते हो बहुत कम मतलब लगी बोला बस नमक बस लगी तो मैं बहुत बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा विधि है 17% नमक घोल
1: अच्छा।
0: मैं कुछ नहीं लगे मात्र नमक बस लगी तो किसान भाई मन ये कर सकते हैं कि वो मन एक जैसे बाल्टी है बाल्टी में पानी ले रही जैसे 5 से 10 लीटर पानी लिए हैं फिर वो मैं एक मूल तैयार करना है 17% के नमक घोल तो उमल्ला जी से नहीं मालूम कि कैसे 17% का नमक।
1: हाँ, वही मैं पूछना चाहता हूँ।

0: मतलब वो खाली ये है कि आसान तरीके, बहुत आसान तरीके, हमको वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो एक पानी ले लो 5 से 10 लीटर, वो मैं क्या करूँ, एक आलू डाल दो। आलू शुरुआत में का है, आलू जो है वो तली में बैठ जाए नीचे
1: हाँ
0: पानी में, नीचे बैठ जाए।
1: हाँ हाँ
0: वो खर बाद वो मैं क्या करना है, नमक डालना है, कोई भी नमक डाल सकते हो आप लोग, पशु खिला वाले कोई भी नमक।
1: हाँ
0: तो नमक एक मुट्ठी डाल के वो पानी में मिक्स करना है, फिर एक मुट्ठी नमक डाल के फिर पानी में मिक्स करना है। तो जो आलू नीचे बैठे रही वो आलू ऊपर तैरना स्टार्ट हो जाए, ऊपर तैरना
1: हाँ
0: स्टार्ट हो गए, मतलब 17% नमक घोल हमारा तैयार हो गए।
1: अच्छा
0: अगर साइंटिफिक रूप से बात करें जाए तो 10 लीटर पानी में 1 किलो 700 ग्राम नमक हमला लगते हैं।
1: अच्छा
0: लेकिन अगर किसान कम पानी यूज करते हैं या तो पता नहीं है तो ये विधि उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे ही अंडा तैरना, अंडा या आलू दोनों चीज उपयोग कर सकते हैं, कोई भी
1: अच्छा
0: एक। तो जैसे ही तैरना स्टार्ट करी मतलब 17% नमक घोल के तैयार हो गए हमारे, फिर वही नमक डालना बंद कर देना है, आलू निकाल देना है। फिर वहाँ क्या करना है, जो भी हमारे बीज स्टोर करके रखे हैं या तो हमारे मार्केट से जो भी खरीदे थान वोला डालबो, तो जो अच्छा बीज रही वो तलीम बैठ जाए, और जो भी खराब बीज है, पोची बीज है, खखरा बदरा बीज है, वो पानी की सतह मत तैरे लगी।
1: अच्छा
0: तो जो खराब बीज है वोला हमन अलग से निकाल दे,
1: निकाल देना।
0: जो अच्छा बीज रही वोला 2 से 3 पानी धोना है वोला। एक बात का ध्यान रखना है, 2 से 3 पानी धोना है, अच्छा पानी से, साफ पानी से धोए के बाद छाया में सुखो देना है। ये जो अच्छा बीज प्राप्त हुई हमला वो उखर जर्मिनेशन लगभग पूरा रही लग, तो ये बीजोपचार कर सकते।
2: भाई बहुत बढ़िया जानकारी है डॉक्टर साहब देन है। बाकी हमारे विषय में एक ठन माटी का परीक्षण कर बारे में भी हमारे विषय में है।
1: हाँ।
2: तो भाई माटी का परीक्षण कर महत्व तो का है किसान भैया बहनी मन लेकर लाभ ला बताए देते हैं।
0: हाँ, मिट्टी परीक्षण से सबसे पहले तो मैं बात करूँ कि मिट्टी परीक्षण से हमन का है जो तत्व है कितना मात्रा, जैसे हमन अपन जाँच करा था अपन ब्लड, अपन खून के जांच करा था या तो एक्सरे करा था, तो खर सवार पता चलते कि क्या चीज़ के हमारे मतलब कम बीमारी है, रोग है, या तो क्या चीज़ के कमी है। तो वो पता चल जाए हमला कि हम वही प्रकार से मिट्टी में अगर हम जांच कराबो तो पता चलिए कि कौन से तत्व के कमी है, ओखर हिसाब से हमन वो में उर्वरक देना है, मतलब वो तत्व केला देना है। तो जो अब कितना मात्रा में, अगर हमारा जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनी मिट्टी परीक्षण खराब होता तो मिट्टी मृदा परीक्षण कार्ड में पूरा स्पष्ट रूप से लिख रही कि आपके क्या का तत्व कमी है और ये तत्व के जो कितना मात्रा में कमी है तो बोला कितना मात्रा डाल के आप पूर्ति करें। तो जो अन्न पत्र अनावश्यक रूप से अधिक खाद डालते हैं तो वो हमार बचत हो जाएगी।
2: तो यही ला माटी का प्रबंधन करते हैं डॉक्टर साहब।
0: हाँ, वही माटी प्रबंधन करता है।
2: एक ठन समस्या और जाते डॉक्टर साहब, जैसे हमार फसल ले लेती ओकर बाद जो फसल का अवशेष रहते ओकर हमार प्रबंधन कैसे कर सकत हन।
0: फसल अवशेष के प्रबंधन के लिए एक चीज आते है वेस्ट डिकम्पोजर करके, वो बनाना बहुत आसान है। वेस्ट डिकम्पोजर वो का करते कि अगर हम खड़ी फसल में डालबो खाद के काम करिए, अगर फसल कट गई तो अगर ओला उपयोग करबो हम तो जो वो सड़ाई काम करी। वेस्ट डिकम्पोजर बनाए पर कुछ नहीं लगे, मात्र एक जीवाणु रही थे वो मतलब ऑनलाइन भी मिल जाते कि साहब, तो ऑनलाइन के जमाना आगे है तो किसान भाई के भी मंगा सकते, ओकर प्राइस लगभग 20-30 रुपया ही रही थे, 40 रुपया। वेस्ट डिकम्पोजर और मंगा सकते हैं। तो जैसे 200 लीटर ड्रम में बनाना है तो 200 लीटर ड्रम में 200 लीटर पानी डाली, 2 किलो गुड़ और वेस्ट डिकम्पोजर डाल देना है, बोला छाया में रखना है बढ़िया। छाया में रखे के बाद वो जो ड्रम रही, ड्रम के जो मुंह है ओकर बोला कपड़ा से बांध देना है, कपड़ा या तो कोई भी जालीदार हो, वायु के संचार होना चाहिए। 7 दिन तक सुबह शाम क्लॉक वाइज, जैसे घड़ी घूमते ना क्लॉक वाइज घड़ी घूमते, घड़ी की दिशा में इसे घुमाना है, सुबह शाम 4 से 5 राउंड घुमा दी। 7 दिन में वो बढ़िया बढ़िया जो है वेस्ट डिकम्पोजर बन के तैयार हो ही। ये ला अगर कोई भी फसल अवशेष में डालते हैं तो वो सड़ाई काम करी।
2: अच्छा, एक ठन और समस्या जाते हैं हमन भाई माटी कर बारे में बात करत हैं धर्म भैया। भाई हमन देखते हैं हमारे खेत बहुत कोई कोई खेत उपजाऊ रहते, बाकी बरखा कर जब समझे जब अति वर्षा हो जाए तो वो तरफ कर जो माटी है बह कर दूसर का खेत में चल जाते चाहे आने जग चल जाते, ओकर कटाव ला हमन कैसे रोक सकत हैं, ओकर प्रबंधन कैसे कर सकत हैं।
0: ओकर प्रबंधन है कि हमन मेड़बंदी करके, मेड़बंदी हमन अगर अच्छे से करबो तो ओकर से बचाव करे जा सकते, साथ ही साथ हमन मल्चिंग के उपयोग करी। मल्चिंग मतलब ये होते कि जितना भी फसल अवशेष है ओला अगर हमारे

0: से बिछात हन तो उखर से खरपतवार वगैरह नहीं आवे, तो वो कहीं कहीं मिट्टी के सुरक्षा के भी काम करते।
1: अच्छा
0: जी,
1: और मेड़ बंदी करे बात कर थी, तो मेड़ बंदी करते समय कौन कौन सा बात कर हमला सावधानी रखना चाहिए?
0: मेड़ बंदी करते टाइम ये है कि आप आपके खेत के हिसाब से होल्ड कराओ कि आपके जो खेत के पानी है दूसर खेत में ना जाए। कहा थे कि जैसे कीड़ा बीमारी रही थी वो का है एक खेत से दूसर खेत में पानी के माध्यम से भी
2: जाल
0: चले जाते हैं, तो आप मेड़ बंदी अच्छे से करो तो बीमारी अगर आ भी गए तो वहीं संचित होके रह जाएगी।
1: बहुत सुघर जानकारी धरू भैया। भाई एक ठन विषय में और छुटला है, पोषक तत्व का संतुलित प्रबंधन के बारे में रोरे बताते हैं कि भाई हमन अभी जैसे आए वाला समय में धान कर हमारे छत्तीसगढ़ में प्रमुख फसल है, हमारे संभाग कर भी प्रमुख फसल है, तो इसमें हमन संतुलित पोषक प्रबंधन कैसे कर सकते हैं?
2: हाँ, बहुत सारा किसान भाई तो पोषक तत्व जो है सूक्ष्म पोषक तत्व ला तो जाने भी नहीं।
0: जी जी, तो इसलिए है सबसे पहले मैं बात करूँ कि पोषक तत्व के जो संतुलित उपयोग है वो के लिए कि सबसे पहले वही जो हम चर्चा करें कि मिट्टी परीक्षण के आधार में जो अनुशंसित मात्रा है वो आप उपयोग कराओ। साथ ही साथ कई किसान भाई मन का करते हैं कि पूरा जो हमारे मुख्य जो वो कहता मुख्य पोषक तत्व कहता नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास वो तीनों चीज़ का उपयोग करना चाहिए। काहे कि जो नाइट्रोजन रही थे वो फसल के बढ़वाए काम करते, मतलब वो हरियाली लाते और बढ़ाए काम करते। जो फास्फोरस रही थे वो जड़ के वृद्धि करते, फल फूलदाना बढ़ाए काम करते। साथ ही जो पोटास रही थे वो रोग प्रतिरोधक क्षमता लाते पौधा में, तो जो मुख्य तत्व है ओखर उपयोग करना चाहिए। हमन का रही थे कि हमन जनरली केवल अभी फास्ट लाइफ हो गया हमार, तो हमन का है कि केवल रासायनिक खाद में ही ज़्यादा ध्यान देवत हन, तो हमला जैविक खाद के भी हमला एमा समावेश करना है। ओखर से कह रही कि जितना भी हमार जो मिट्टी रही ओखर संरचना सुधरी, रासायनिक जो गुड़ है वो हमार सुधरी, तो ओखर लिए हमन जो फार्म यार्ड मेन्यूर मतलब गोबर खाद के उपयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ केचुआ खाद के उपयोग कर सकते हैं। तो वो खर से कहे ही कि हमारे जो सूक्ष्म जो इखर से कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ी और सूक्ष्म जीव भी बढ़ी। ओखर अलावा हमन का है सूक्ष्म तत्व के उपयोग कर सकते हैं, मतलब वहाँ हमारे जो पौधों के वृद्धि के लिए हम लगा चाहिए मुख्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास के अलावा हमला सूक्ष्म तत्व भी चाहिए, जैसे हमला जिंक के चाहिए और बुरान आयरन मैग्नीज ये सब के जरूरत पड़ते, तो उखर भी पूर्ति करे से वो जो पौधा है वो अपन संपूर्ण वो करते विकास करते। साथ ही साथ हम अल्लाह खाद लगा कर थन जैसे कि बात करा जाए कि भाग में बांट दो, जो फास्फोरस और पोटास है वोला तो पूरा देना है, लेकिन जो नाइट्रोजन है वोला आप कई भाग में बांट के दो। उखर से कहा हो ही कि नाइट्रोजन जो है अगर एक साथ सब ला डाल दें तो वो कहीं कहीं वो नीचे चले जाए,
2: फायदा के जगह नुकसान हो जाए। डॉक्टर साहब देखिए बेरा चले से मंडी भाव कर बात करे कर, तो आज कर हमारे अंबिकापुर में मकई रही 2400 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों रही 6000 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूँ रही 3350 रुपये प्रति क्विंटल, कोदो रही 3300 रुपये प्रति क्विंटल और चना रही 8500 रुपये प्रति क्विंटल। मौसम कर बात करी तो तापमान देखब आज कर अधिकतम तापमान रहीस 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहीस 26 डिग्री सेल्सियस। कल कर बारे में भी उसने अनुमान है कि अधिकतम रही 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रही 26 डिग्री सेल्सियस। देखिए रौरे से आखिरी में सवाल पूछूं कर पहले हमारे जो नवा किसान भाई हमारे से जुटना चाहते हैं हेलो किसान मॉडी में अपन सवाल पूछ के जवाब पा सकते हैं, उनकर मैं अपन फ़ोन नंबर बता देता हूँ। हमारे फ़ोन नंबर है 2319917 और 2319918 और अंबिकापुर कर बाहर कर रहोया या फिर मोबाइल फ़ोन से लगाना चाहते हैं उन्होंने कर पहले एसटीडी कोड लगाई 07774। एक दफ़े फोन फिर से सुन ले कि एसटीडी कोड है 07774। हाँ तो देखिए डॉक्टर साहब अब जाकर बेरा होता है, बाकी एतक बेरा तो है कि रौरे जो है बढ़िया बताई कि किसान भाई जो है एक खरीफ कर समय कैसे तैयारी करें, प्रबंधन कैसे करें और संतुलित उपयोग कैसे करें पोषक तत्व कर। आखिरी में जाति जवाति किसान भाई मल्ला सुझाव।
0: जी मैं सब किसान भाई ला ये सुझाव देना चाहता हूँ कि आप जैविक खाद के उपयोग करो, काहे कि जो रासायनिक खाद के ही हमन कंटिन्यू उपयोग करत हन।

0: फायदा तो तुरंत में देते, लेकिन जो हमारे जैसे पूर्वज है वो हमारे लिए अच्छा जमीन दे रही है, लेकिन हम जो आने वाले जनरेशन रही वो ला कहीं न कहीं हम अच्छा जमीन दे पाबो कि नहीं। तो ओखर लिए है कि आप रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक खाद भी ओखर से उपयोग करो, ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बने रहे और वो एक स्वस्थ मृदा से एक स्वस्थ मतलब देश के निर्माण हो ही, राज्य के निर्माण हो ही और एक स्वस्थ इंसान के निर्माण।
1: डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार जी हमारे यहाँ आयन और किसान भाई मंडल बड़ा सुघर अकन जानकारी देन, किसान भाई इनकर सलाह से काम करी, अपन आयला दुगना तिगना करी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और हमारे आज कर हलो किसान वाणी अतरिक्ष।

0: ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रहीं
1: कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: हाँ तो भनु भैया देखी अब चौपाल ले भी विदा लेकर बेरा होता है, जरूर किसान भाई मन ला कहब अपन ध्यान करी, लड़का छुआ मन कर ध्यान करी। देखी स्कूलों खुल गई से स्कूल भेजने हैं अपन सियान मन कर भी ध्यान।
3: हाँ भाई हर दिन जाएं स्कूल और बढ़िया पढ़े और देश का निर्माण करें।
2: बिल्कुल यही संदेश के साथ कहल जाए और विदा लेहल जाए। राम राम, राम।

अभी किसान भाइयों के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए श्रोताओं, अब हम आपको सोशल मीडिया द्वारा प्राप्त फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश सुनवाते हैं। आज मैं हूं आपके साथ पद्मनाभ शर्मा।

कार्यक्रम के आरंभ में ये सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में फिल्म खेल खेल में का ये गीत, जिसे लिखा है गुलशन बावरा ने और संगीत है आरडी बर्मन का। इस गीत को सुनाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फरमाइश की है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर से जोड़ा, स्वीटी दीवाना, ग्राम फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी, समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम और अनामिका, ग्राम चौरदा बार नवापारा बौलादा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला खुशबू ज्योति, ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवदन सिंह पैकरा, गुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सुमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा, ऐश्वर्या पैकरा, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार, पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति भूमिका अरोड़ा, दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा और श्राव्य रामटेके, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना हर्षित और खुशी, चौखुंदी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अब्बासी, अरजान अबान और उनके परिवार के सभी सदस्य, सेक्टर

67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, ग्राम पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित, बेबी गर्वी और हिमाक्ष। तो आइए सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में फिल्म खेल खेल में का ये तो गाना।

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हो जाए
0: हो जाए।

गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेवानी, संगीता आकाश, आयुषी सागर, यशी हनी, पूजा सीता और परिवार के सभी सदस्य, दयानंद भवानीपेठ सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मिस्कीन, ऋतिका वाणी, आरव चंद्रकला, काशीनाथ, संगीता आरोही और प्रियांशी, ताज मंजिल लकड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर मोहम्मद शाकिब पवार, अल्तमास पानो मोइन छोटू पवार, शंकरलाल गंगराड़े, वनीता मोहम्मद हसनैन पवार, पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सईद भाई, सूफिया अनस आयजा अल्फिया सदफ, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आफिया पोत्रा, मुस्तफा खान, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा, ग्राम कसकेला सलका भैया थान सूरजपुर से ज्योति सिंह, शेष कुमार सेजल, साक्षी सिंह, अर्चना सिंह, अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस और रेहान, ग्राम कबनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से रेवण भाम्बिष्टे, अनीता और राहुल, जोड़ा पीपल अंबिकापुर से स्वरूप आनंद सरजाल। आप सबकी फरमाइश पर किशोर कुमार को फिल्म बेमिसाल में सुनिए। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत है आर डी बर्मन का।

किशोर कुमार को आपने फिल्म बेमिसाल में सुना। कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म आत्माराम से। इस गीत को सुनवाने के लिए हमें फरमाइश किया है ग्राम सिद्मा बाजार पारस से धनेश्वर निषाद, दीपिका, शिवांश, राम भरोस पैकरा, नरेश सिंह। ग्राम राजापुर सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति। ग्राम कालापारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े। सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारसताल सोनगरा सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय, मेर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार, राम खिलावन सिंह पैकरा। रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी। ग्राम राजापुर सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेलसाय मरकाम, नयन प्रकाश, शारदा, लकी, सीताराम, सितंबर, अमरनाथ, मंगलमूर्ति, रोशन राजवाड़े, पांडे राम राजवाड़े, नूर साय, हीरालाल प्रजापति, कविता मरकाम, आरती मरकाम। ग्राम खोदला

उदयपुर, सरगुजा से तुलेश्वर नेताम, गोलू, कोमल, पूनम, उमिता और तरीका नेताम, अमगसी कुन्नी चौक, नवापारा, लखनपुर, सरगुजा से मुनेश राम, शालिनी, रुचिका, निका, मनीष, सुचिता, चांदनी, दीपांशु और परिवार के सभी सदस्य, चनोरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता, राम और श्याम, रवि, आर्यन, रंजीत और रामानंद कुशवाहा, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राजेश राशि और श्रीमती शीतल राजेश, छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से ही अनिल कुमार घोटके, वैशाली अनिल, प्राजक्ता, वैष्णवी गायत्री, यज्ञेश घोटके, ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमाराज, दिव्या भारती, बिहार से वसीम अकरम, बेबी जोई और गुड़िया खातून, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, आसमानाज, शबनम बानो, जेल रोड बक्सर से राजेश डी अंसारी, फातमा नाज, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे, कुर्मा जांजगीर चापा छत्तीसगढ़ से दिलदार मिरी, ज्योति जानवी, दीक्षांत, अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या, भाई सुच्चा सिंह, विनोद पुरी और जयपाल यादव, ग्राम कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत और उनका परिवार, सहारनपुर से राधा नामदेव, अर्पणा नामदेव, अभिषेक और हर्षित शर्मा, ग्राम टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी, जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परवणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रतेश, साबरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ पाटिल नारे, पुष्पा ताई नारे, नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा, तामसा रोड हदगांव महाराष्ट्र से ओम गायकवाड़, आविष्कार, गुमनाम और प्रणीता, छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी, नोमेश, नेहा और वान्या, गुजरात गांधीग्राम से प्रमिल सोनी, कलावती, जगदीश शौहरी, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा, हनुमान, उत्तम जमदाड़े।

नटेरन जिला विदिशा मध्य प्रदेश से कल्याण सेन, पुष्पा, नितिन, जतिन। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी निष्का और तन्मय। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से दिलशाद हुसैन, फातमा सोगरा। चलडोगरी पिपरिया कबीर धाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, जयकिशन, श्रीमति कुमारी, इंद्राणी और माया साहू। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू। रिंगरी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। ग्राम लसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़। राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी। लावा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट। रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़, श्रीमती रंजूबाई, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी। कस्बा बराड़ा

जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर जयप्रकाश, प्रियंका मन्नत कुरकीरत, गुरुशबद सिंह राहुल। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नवीसा प्रवीण। बोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूढ़त, नेहा जैन, दीपक और मयंक मूढ़त, चेतन नाहटा। धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, श्रीमती सविता, बेबी स्वाति, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी। मिट्ठूमुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल शिवास, कौशल, कृष्ण कुमार यादव, लक्ष्मण और गेंदू भाई। गड़िया मौजिर स्तू भागलपुर से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष कुंदन, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती और सुनीता देवी। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत और मयंक। नलेश्वरनगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला, विशाल। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताड़े और आशीष मुरहेकर। सप्तरंग श्रोता परिवार कुमार गली, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता अनिकेत, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका पुनावले, पुणे से अजय सोनमने, करिश्मा, अविका और विशाखा। बटिंडा रोड मंडी डब्वाले से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग की फरमाइश पर योगेश का लिखा गीत सुनिए, सलील चौधरी की बनाई धुन पर मुकेश की आवाज में। फिल्म का नाम है अन्नदाता।

सोशल मीडिया से प्राप्त फरमाइश फिल्मी गीतों का कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म संतोष से, नितिन मुकेश और आशा भोसले की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और फरमाइश है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी, मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह, इंद्रप्रस्थ, सदन रुद्री, धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश, शुभम, सावित्री और शिखा सेफाली, आमाखोड़रा रेंगाखार कबीरधाम से देवी सिंह नेताम, राजेंद्र सिंह दक्षप्रिया और गीत सरगम नेताम, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, आकोट से विनायक बिंडे, श्रीमती मंगला, विजय शुभम, पवन जरिए और संजीव डाबेराव, ग्राम नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही, सरिता, सिद्धांत, प्रिंस एकांश, लाडला, टुकटुक गवाणकर, रावर करनाल से विनोद लखनपाल, दुर्गा कॉलोनी हांसे से राजू मिग्रानी, बबीता, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया और आयन बाबू, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल और निशा, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना, आशीष राजा चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशु रिधान खुराना, वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, आमा खोड़रा पोस्ट मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती गौरी और ओम कुमार, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राजनाथ पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन कृष्णा और पीहू, कंवर कॉलोनी बड़वा खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया।

ढिंगिया, टैगोर गार्डन नई दिल्ली, सरविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर स्वीट छाबड़ा, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा, फाजिलका पंजाब खेड़ा परिवार से भूषण खेड़ा, विशु विशाल, लाड़ी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह।

0: नितिन मुकेश और आशा भोसले के गाए फिल्म संतोष के इस गीत के साथ ही आज का इंस्टा फरमाइश बस यहीं तक। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियां में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियां में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
2: जी प्रियंका, देखिए भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
1: धन्यवाद अंकित।

0: जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: है तार टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जांच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा

0: केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा।

0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमरीका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for this Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gorkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement to boost cooperation on greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecasts thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in a high-level working session at the ongoing G7 summit in Evian, France today. The session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity brought together leaders of the G7 nations, partner countries and senior representatives from the World Bank and the African Development Bank. The meeting began shortly after French President Emmanuel Macron formally welcomed Prime Minister Modi and other participating leaders. Following a group photograph, PM Modi shared the picture on social media, stating that India and the G7 countries would continue to work closely to promote global prosperity, sustainability and human well-being. Our correspondent Ankit Kumar, who is covering the Prime Minister's G7 visit, joins us live from Evian for the latest updates. Well, Ankit, what are the key outcomes India expects from G7 discussions?
2: Yes, Saira. India is looking at this G7 summit as an important opportunity to advance both its national interest as well as priorities of the global south. From India's standpoint, one key outcome would be deeper cooperation in areas such as trade, technology, innovation and resilient supply chains, particularly at a time when countries are seeking reliable economic partners. Another important area is collaboration on emerging technologies, including artificial intelligence, where India is increasingly playing a significant role in global discussions. At the same time, India is expected to push for greater international focus on issues that directly affect developing nations, including sustainable development.

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं सोनू निगम को फिल्म तुमसे अच्छा कौन है में। गीत लिखा है समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का।

सोनू निगम की गाय फिल्म तुमसे अच्छा कौन है के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: there were various many other such incidents in the rural areas where young girls were picked up. You have Sandesh Khali incident where women were abused, sexually abused in party offices. All the details which are now coming up, coming out about student union offices, that those were actually houses of illicit pleasure.
1: Yeah.
0: So this is the kind of architecture you had put into place to stay in power. Obviously, people won't accept.
1: So, Kanchanji, going forward, West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari has now announced a series of investigations. You know, he has set up committees to look into excesses across the spectrum. One is what you just said, and also the extortion rackets, the cut money rackets that were going on. That will help.
0: It is important that there should be fair investigation, fair prosecution and fair justice. Because अगर आपने जो जिन्होंने भी ये गलतियां की हैं, ये अन्याय किया है, इनको अगर सजा नहीं मिलता है, if they are not punished, then tomorrow you will find another set of exploiters coming into play. So ये जरूरी है. दूसरी बात जो है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो डिटेल्स अब उभर के आ रही हैं, किस किस्म की एक्सप्लॉयटेशन होती थी, किस किस्म का तोलाबाजी हो रहा, किस किस्म का कट मनी. यू सी, दीज आर ऑल थ्री थिंग्स. तोलाबाजी इज कोई अगर रेडी भी लगाता है, ठेला लगाता है, उसका दिन में 100 रुपए का, या कोई ऑटो चलाता है तो उसका दिन में 100 रुपए का रोजगार होता है, तो आप उससे जाकर 50 रुपए उगा लीजिएगा. दैट इज तोलाबाजी. कट मनी है कि अगर कोई काम हो रहा है, सरकार काम करवा रही है, पंचायत का काम है, कुछ है, जो भी है, उसमें जो ठेका जिसको मिल रहा है, रास्ता बनाने का, ड्रेन बनाने का, टैप लगाने का, आप उससे उसका जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है, उसका एक परसेंटेज आप उससे निकाल लीजिएगा, रंगदारी टैक्स जिसे कहते थे. सो दैट वॉज कट मनी. एंड देन यू हैड सिंडिकेट्स. आप घर बना रहे हैं तो आपको अपना ईटा, बालू, सीमेंट, लोहा पार्टी के लोगों से खरीदना पड़ेगा, और उन्हीं के रेट पर खरीदना पड़ेगा, उनका जो ब्रांड है, उनका जो भी है, वही लेना पड़ेगा, आपका कोई इसमें ऑप्शन नहीं है. या आप अपना घर बेच रहे हैं, समझिए आपके पास मकान है जिसका वैल्यू 10 करोड़ है, वो लोग आकर बोलेंगे, सिंडिकेट कहेगी जी ये मकान हम लोग तय करेंगे, आप कितने में बेचोगे, किसको बेचोगे, और 1 करोड़ का बिकवाएंगे, बाकी 9 करोड़ से वो लोग आधा 4.5 करोड़ अपने जेब में ले लेंगे.
1: सो एन एब्सोल्युटली एक्सप्लॉइटेटिव.
0: इट वाज नॉट अ गवर्नमेंट, इट वाज अ मॉन्यूमेंटल, क्या कहें, इट वाज अ फैक्ट्री ऑफ करप्शन, इट वाज एन इंडस्ट्री ऑफ करप्शन, इट वाज नॉट अ गवर्नमेंट.
1: एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी. अपने विक्ट्री स्पीच में प्रधानमंत्री ने May 4 को एक बात का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि इंडिया की जो गोल्डन एज जब थी, तो 3 भाग हमारे देश के उस गोल्डन एज के पिलर्स थे, अंग, बंग और कलिंग. तो अंग मतलब बिहार पहले भाजपा की विक्ट्री में आ चुका था, उसके बाद ओडिशा भाजपा जीत चुकी थी, और अब बंगाल की बारी थी, वो अब May 4 को रिजल्ट में हो गया. तो कितना इम्पोर्टेंट आप इस स्टेटमेंट को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करना है तो ये तीनों भागों को विकसित करना जरूरी है, क्योंकि ये पिछड़ गए हैं भारत की विकास यात्रा में.
0: ये बात सही है, और अंग बंग कलिंग जो आप कह रहे हैं, बट उसमें आप असम को भी जोड़िए, जो अपने जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको भी जोड़िए. और जब तक ईस्ट में डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक ईस्ट की इकोनॉमिक कहानी एक कॉम्पिटिटिव स्टोरी नहीं बनेगी, तब तक भारत अपने आप को विकसित भारत नहीं कह पाएगा. अगर आप भारत के मानचित्र को देखें, वेस्ट इंडिया काफी डेवलप्ड है, साउथ इंडिया भी काफी डेवलप्ड है, ईस्ट इंडिया बस एक ही जगह रह जाता है जहां पर अभी तक कुछ खास काम नहीं हो पाया. मिडिल इंडिया, आप अगर मध्य प्रदेश को देखें, मध्य प्रदेश की जो रिकवरी स्टोरी है, बीमारू प्रदेश से आज कहां पहुंच गई है. अगर आप छत्तीसगढ़ को देखें, नया प्रदेश है और इतनी डिप्राइव्ड जोन थी कि उसको अलग स्टेट बनाना पड़ा, आज छत्तीसगढ़ कहां पहुंच गया, और वेस्ट बंगाल वहीं का वहीं पड़ा रह गया. तो हमें आगे का देखना पड़ेगा, एंड वेस्ट बंगाल कैनॉट जस्ट बी अ पोटैटो इकोनॉमी. That we produce the country's most largest amount of potatoes.
1: Like you heard Kanchan Gupta ji, that the destiny of India is inextricably linked to the destiny of Bengal, because you would recall that it was from Bengal that the British also began experimenting with their divide and rule policy, because

0: they realized very early that if they have to capture the soul of India, they must first break Bengal. So that's the importance of West Bengal to the fate and destiny of our country. Thanks for joining us, Kanchanji. Thank you.
1: In this special program, you were listening to a discussion on West Bengal after BJP's historic mandate, governance, development and future priorities. Participants were Kanchan Gupta, senior journalist and political analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsttalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
2: कार्यक्रम मनी टॉक और मंथन हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं आपके ईमेल फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। आज मैं हूं आपके साथ पद्मनाभ शर्मा। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, आवाज में फिल्म दो दिलों का संगम से। गीत लिखा है फैज अनवर ने और संगीत आनंद मिलिंद का है, और इस गीत को सुनाने के लिए हमें मेल किया है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता लोखंडे, ग्राम पंचायत कौशलपुर भैंसामुड़ा रामानुजनगर श्रीनगर सूरजपुर से सुखराम सिंह मरावी, सुहानी सिंह, विमला सिंह, बटिंडा रोड मंडी डब वाले से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तान्या नारंग, जगदलपुर बस्तर से पुष्पांजलि नायडू, चैतन्य कुमार, अक्षय, अमृता संतोष, मिठुमुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल शिवास, कौशल, कृष्ण कुमार यादव, लक्ष्मण वाधवानी और गेंदू भाई, ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर से जीवधन सिंह पैकरा, गुरनी पैकरा, करिश्मा सुमारसा, कलेश्वर सुखराम, हीरामणि और ऐश्वर्या पैकरा, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज हसन, शरीफ नवाज, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेक, यशोधरा श्राव्या, बालाजी चौक से ओटी श्रीवास, शेख आजाद और पोपुरानी, पेडी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु, ग्राम पोजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श और सार्थक अलौकिक चंसोलिया, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, वसंतराव भोजने, तुषार करांगले और पीएस नहाकर, लोरमी चचली से शंकर कोलाम, संतोषी, संजय, संध्या और शिवम कोलाम, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज हुसैन और रिफाकत हुसैन सिद्दीकी।

ग्राम सौंगा मगरलोट से फणेश कुमार चंदन, सावित्री देवी मोहित कुमार, देविका रानी गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार, अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिहा नसोर रेहान, राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, फिरोजाबाद से बनवारीलाल कुशवाहा, मंजुलता राम और श्याम, रवि और आर्यन, नर्मदा पार्क मंगलवेढ़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल, ग्राम फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूटी, प्रमोद कुमार और सौरभ डूटी,

साउथ दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, कुमार संचित कुमार, सर्वद देशमुख कुमार, प्रथमेश देशमुख और कुमारी कल्पना, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोती, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, पविता बोध, निखिल कांगड़ा, ग्राम मंगला मटिया बालोद से शुकुमार अंगारे, अंजनी पीहू त्रिम्बका, लीना आशुतोष अंगारे, ग्राम कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन इब्राहिम, उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी और विनीत नाचानी। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा का ये दो गाना, आशा भोसले और पप्पी लाहिड़ी की आवाज़ में। गीत लिखा इंदिवर ने और संगीत पप्पी लाहिड़ी का है।

ईमेल की गूंज कार्यक्रम की अगली फरमाइश है। चित्रा और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज में फिल्म सुहाग का ये गीत, शब्द रचना है समीर की, संगीत आनंद मिलिंद का, और इस गीत को सुनाने के लिए हमें मेल किया है शेगांव बुलढाणा महाराष्ट्र से संतोष एसकाले, तेजस, लोकेश और गजानन सालोनकर, ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिवकुमार अंगारे, अंजनी, प्रिहू, त्र्यंबका, लीना, आशुतोष अंगारे, ग्राम कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन इब्राहिम, उदयपुर से रमेश नाचानी, ग्राम चरौदा बारनवापारा बिहारण जिला बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ से नंदकुमार ठाकुर, प्रमिला खुशबू ज्योति ठाकुर, रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, ग्राम नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, पोटियाकला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा, नरेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला, विशाल, सुपान ताड़े, नारायण इंगले, आशीष, कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लहरा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार

डॉली बेबी, पूजा, राधिका प्रभादेवी और मास्टर अल कबीर। मोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा, दीपक और चेतन नाहटा। आपके साथ हैं मयंक मूड़त। शास्त्री नगर बीच शहर से किशन सपकाल, आशा, सोनिया और विशाल सपकाल। राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवड़े, ज्योति, आकांक्षा और आकाश कुमार। माँ बमलेश्वरी धाम साकरा सोमनी राजनांदगांव से नारायण लाल साहू, कुलवंतिन देवी, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, रणजीत कौर, मन्नत कुरकिरत, गुरशबद से राहुल। ग्राम कबनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से रेवड़ बाम्बिस्टे, अनिता और राहुल। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश निवान, सौरव, शाइना और मेंडी शर्मा। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता, रिमी, तनुश्री, अन्विका। पेहरा बाजार झुमरी तलैया गिरडी से अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमार, प्रियंका कुमारी, मुनि देवी, जयप्रकाश साव, रिया जिया, टूसी आयुषी, अनिरुद्ध बाबू। सेक्टर 8 भिलाई से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला श्याम कुमार, चीनू और आसमां।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं कुमार सानू को फिल्म दलाल में। इस गीत के लिए ईमेल पर पसंद भेजी है डेर पाचन गुजरात से धीरज वीरबारी, कलमंडी खुर्द झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत, बड़वा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण शिमाली, दतरंगे से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती विनीता और रुद्र, लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा पुष्पराज और ऋषभ मरावी, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि रुद्राणी और कृष्णा केवट।

कुमार सानू के गाए फिल्म दलाल के इस गीत के साथ ही ईमेल की गूंज कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि की 10:30 हुए हैं। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति है मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म नील कमल का ये गीत, जिसे लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत रवि का है। फरमाइश करते हैं दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी, अंबिकापुर से मुकुंदलाल साहू, कलावती साहू, ग्राम जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, पोत्रा मुस्तफा खान, राउफ भाई, शहीद भाई, गानीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, ग्राम बागबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, मोनिका प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम, ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश तारनी, सूरज ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर, दतरंगी से भागवत वर्मा और लिवई से गुलाबदास मानिकपुरी।

पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी, सोनम अंसारी, सारिमपुर बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी, फातमानाज अंसारी और मोहम्मद समी अंसारी, इंदिरा विहार दिल्ली से डब्लू अंसारी, वसीम अकरम और बीबी अंसारी, छठिया पोखरा डुमराव से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती, जामरून तालुका अर्धापुर से दुर्गादास जोशी, गंगाधर गजानन, संजय आशीष, पृथ्वीराज कुमारी, साध्वी और गणेश हारमावकर, बेमेतरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा, शारदा और दामिनी वर्मा, पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी, योगिता, नितिन और वंशिका, डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान, मरियम और बुशरा, लक्ष्मीबाई नाजमंडी रोड वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, संजना परी खर्चे, मालती स्वाति प्रयाग चौधरी, चांडोर बिस्वा तालुका नांदुरा बुलढाणा महाराष्ट्र से नारायण भाव खट से, रक्षाताई संजना गणेश और कार्तिक खट से, आप सबकी फरमाइश पर लता मंगेशकर को फिल्म राजकुमार में सुनिए। गीत लिखा शैलेंद्र ने और संगीत है शंकर जयकिशन का।

साहिर लुधियानवी के लिखे गीत रवि की बुनाई धुन पर महेंद्र कपूर की आवाज में सुनिए फिल्म गुमराह के इस गीत को सुनना चाहते हैं जरुण वरुण महाराष्ट्र से बाबा साहेब बाड़ोदे मीनाक्षी शर्पे रजनी कानीरे कार्तिक युवराज गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले रेखा कामले राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले परसाटोला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया सिलोचनी तुषारणी और खुमेंद्र मसिया चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन प्रभादेवी सेन लक्की विक्की नानू रविंद्र सेन और खुशी रौनक सेन डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गज भी राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता और डिम्पल सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार योगेश मालाकार सुनीता और मुस्कान मालाकार चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियाना मल अनिता मोटवानी राजेश रेशम अनिल राज मोटवानी झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश कमल सेतपाल भूमिका सुशीला दमतरी से रामचंद्र माखीजा श्रीमती सविता बेबी स्वाति माही पूजा छुटकी शरद और उनका पूरा परिवार तो आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर को फिल्म गुमराह में

आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार का गाया, लिखा और संगीतबद्ध किया गीत फिल्म दूर गगन की छाव में से। इस गीत को सुनाने के लिए हमें पत्र लिखा है सादुर शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश, वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश, रमेश कोड, मोहम्मद शादाब, गौतम नगर नादेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती महाराजा रेडियो श्रोता संघ खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धंजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वेद, रानी महिमा और नीतू वेद, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साविर राही, मेहराज जहां, श्री श्रृंगिरिषि महानदी सियावा पर्वत अंचल ग्राम बेलरगांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, दरसिंहा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता, अर्चना रुणा, अनुराधा, अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया फिल्म जंगली का ये दो गाना, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का, और फरमाइश करते हैं ग्राम बगबुड़ुआ पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार वर्मा, ग्राम दुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार, डेविड साहू, रुस्तम साहू, नेतराम साहू और भूपेंद्र साहू, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप और राशि राजेश, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत और प्रणिता गवाणकर, आकार हेड्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाणकर, श्वेता सुमित और कुमारी ध्वनि गवाणकर, आपके साथ हैं लाडला टुक टुक गवाणकर। तो आइए सुनते हैं फिल्म जंगली का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के गाय फिल्म जंगली के इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। रात्रि के 11 बजकर बजने वाले हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न

0: adopted the rules of implementation for the joint crediting mechanism or JCM under Article 6.2 of the Paris Agreement for enhancing cooperation on climate action, greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran today said that the deal to end the war with the United States would also require Israel to withdraw from Lebanon. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said Israel's continued occupation of southern Lebanon would violate the Memorandum of Understanding reached between the United States and Iran. In the FIFA World Cup 2026, France will take on Senegal in Group 1 clash at New Jersey in the United States tonight. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। अपनी कल की प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में हम सुबह 5:51 पर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।